श्रोताओं नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 4 जून 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2री बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं विचार मंथन। मनुष्य का जीवन एक महानदी की भांति है जो अपने बहाव द्वारा नवीन दिशाओं में अपनी राह बना लेती है, ऐसा कहा था गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। अब प्रस्तुत है

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। चिंतन में सुनिए श्रीमती सुधा शुक्ल का आलेख, वाचन दिनेश नामदेव का।
1: आत्मविश्वास मानव जीवन में सफलता का प्रथम सोपान है। जीवन संघर्ष में विजय पताका वे ही फहराते हैं जो आत्मविश्वास की मशाल थामे हुए अमावसी अंधकार को चीर कर प्रगति पथ पर आगे बढ़ते हैं। आत्मविश्वास पूर्वक सजग और सावधान रहकर निरंतर चलने

0: वाला ही अपने गंतव्य पर पहुंचता है। सफलता के आनंद का अनुभव भी वही कर पाता है जो आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है। आत्मविश्वास मनुष्य के जीवन में सफलता का सूर्योदय है। आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर प्रदत्त अपनी अंतर्निहित शक्तियों में दृढ़ आस्था। परमात्मा का अंश होने के कारण मनुष्य में अनेक दिव्य शक्तियां सन्निहित हैं। इन दिव्य शक्तियों का साक्षात्कार और अनुभव ही आत्मविश्वास है। यही ऊर्जापूर्ण आत्मविश्वास जब मनुष्य के आचरण में प्रतिबिंबित होता है तब उसे विशिष्ट गौरव से दीप्त कर देता है। यही विशिष्टता मनुष्य के आभा मंडल का निर्माण करती है और उसके अस्तित्व को व्यक्तित्व विभूषित करती है। उदात्त व्यक्तित्व के चंदन से चर्चित अस्तित्व ही वंदनीय और अभिनंदनीय होता है। आत्मविश्वास मनुष्य की सर्वतोमुखी उन्नति का आधार है। जिसे अपनी ईश्वर प्रदत्त शक्तियों पर दृढ़ विश्वास होता है उसके प्रगति पथ को कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता। उसकी विवेक समन्वित उत्साहपूर्ण गति के सामने बड़े से बड़े अवरोध भी नतमस्तक हो जाते हैं। वो समस्त अवरोधों को पार करता हुआ अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाता है। साहित्य, शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, कला, राजनीति और उद्योग व्यवसाय आदि के विभिन्न क्षेत्रों में जिन इतिहास प्रसिद्ध महापुरुषों ने सफलता के झंडे गाड़े हैं वे सब दृढ़ आत्मविश्वास के परमधनी थे। साधनों की अल्पता और अभाव के बावजूद वे लक्ष्यनिष्ठ अनवरत साधना में रत रहे और अंततः उन्होंने विजयश्री और कीर्ति अर्जित की। सफलता के तट तक पहुंचने के लिए उन्होंने मल्लाहों की प्रतीक्षा नहीं की, स्वयं तैरकर दरिया पार किया। आत्मविश्वास मनुष्य को संघर्षजयी बनाता है। किसी निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मनुष्य को श्रम तो करना ही पड़ता है, किंतु यदि वो श्रम आत्मविश्वास से समन्वित हो तो उत्साह का अंतहीन स्रोत फूट पड़ता है। उत्साहपूर्ण श्रम मनुष्य को उपलब्धियों के शीर्ष पर पहुंचा देता है। आत्मविश्वास मनुष्य में स्वावलंबन, धैर्य और जागरूकता की भावना उत्पन्न करता है तथा उसे मनस्वी और उदार बनाता है। वो मनुष्य के जीवन उपवन में सद्गुणों के इंद्रधनुषी फूल खिलाता है और अपनी सुवास से सबको आनंदित और प्रफुल्लित करता है। दृढ़ आत्मविश्वास युक्त व्यक्तियों के संपर्क में आकर दूसरों को भी बहुमुखी उन्नति की प्रेरणा मिलती है और वे भी प्रगति पर चल पड़ते हैं। संसार में बहुसंख्य लोग आत्मविश्वास के अभाव से ग्रस्त होते हैं और इसीलिए वे सफलता के द्वार पर दस्तक नहीं दे पाते। उनमें दृढ़ता, साहस और संकल्प की कमी होती है। वे जब भी किसी काम को करने का विचार करते हैं असफलता का भय उन्हें दबोच लेता है। उन्हें यही लगता है कि ये काम मेरे वश का नहीं। इस निराशावादी मनोदशा से मुक्त होकर सफलता के मार्ग पर चलने के लिए ऐसे लोगों को किसी सफल व्यक्ति का सत्संग करना चाहिए और अपनी जीवन शैली को बदलना चाहिए। सत्संग का पारस लोहे को भी सोना बना देता है। दुर्बल चित्त व्यक्ति भी ज्ञान पूर्वक अपने जीवन में परिवर्तन लाकर सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। जो आत्मविश्वास पूर्वक सजग और सावधान होकर चलता है वो अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंचता है। आत्मविश्वास सफलता का मूल मंत्र है। वो स्वावलंबन, सद्विचार और साहस का जय घोष है।
1: ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस का गान, गायक स्वर कविता कृष्णमूर्ति का।

वाल्मीकि ने श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को अपने आश्रम में पाकर स्वयं को धन्य माना। श्री राम ने ऋषिवर से किसी ऐसे ठौर का पता बताने का निवेदन किया जहां वे लोग कुछ समय के लिए निवास कर सकें। ऋषि के उद्गार इन शब्दों में फूट पड़े, जिनके हृदय में काम क्रोध बद मोह लोभ शोभ ना हो, जो राग विराग छल कपट दंभ और माया से परे हों, हे रघुनाथ आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो पराई स्त्री को अपनी माता के समान आदर देते हों, जिन्हें पराया धन विष से भी घातक लगता है, जो दूसरों की संपत्ति देख हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति जिन्हें विशेष रूप से दुखी करती है, उनके हृदय आपके निवास के लिए उपयुक्त भवन स्वरूप हैं। इस विनय के बाद ऋषि वाल्मीकि ने चित्रकूट पर्वत को निवास के सर्वथा योग्य बताया, जहां सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थीं। ये ऐसा मनोरम स्थान है जहां तरह तरह के पशु पक्षी विचरण करते हैं, जहां अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया पतित पावनी गंगा की धारा ले आई थीं, जहां अत्रि समेत अन्य ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। हे राम चित्रकूट को अपना निवास स्थान बनाकर उसे गौरव प्रदान कीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गान। गायक स्वर कविता कृष्णमूर्ति का था। यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। ऋषि सामी की में सुनिए पपीते की खेती संबंधी जानकारी।
1: पपीता वर्ष भर उगाया जाने वाला फल है, फिर भी इसकी पौध प्रायः मई से जून माह में लगा सकते हैं आप। कुल फसल अवधि 18 माह तक

0: सकती है जिसमें नर्सरी 2 माह, पुष्पन काल 4 माह और फलन 3 माह, साथ में पेपेन यदि आप निकालते हैं तो 9 से 18 माह की फसल इसकी हो सकती है। पपीते के प्रवर्धन की क्रिया व्यावसायिक विधि द्वारा ही करना चाहिए। 1 हेक्टेयर भूमि में पपीते की पौध लगाने के लिए लगभग 250 से 450 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। संकर किस्मों के बीज में यह मात्रा 100 ग्राम पर्याप्त होती है। बुआई के पहले बीज को फफूंदनाशक दवा से 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर लें। बीज बुआई करने के लिए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि बीज शैया, जिसे नर्सरी बेड कहा जाता है, इसकी ऊंचाई जमीन से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। नर्सरी बेड का अनुशंसित आकार 10 मीटर × 1 मीटर यानी 10 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। ऐसी लगभग आप 8 से 10 नर्सरियां या बेड तैयार कर लें, जो कि 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पपीता फल उत्पादन के लिए पर्याप्त होती है। अच्छी तरह से तैयार किए गए नर्सरी बेड या क्यारियों में 1 सेंटीमीटर ऊंचा वर्मी कंपोस्ट या फिर भली भांति पकी हुई अच्छी गोबर की खाद बिछाते हैं। कॉपर फंजिसाइड का घोल को बीज शैया या सीड बेड के ऊपर तर करते हुए छिड़काव करते हैं। तैयार की गई बीज शैया में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कतार बनाकर इन्हीं कतारों में 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर और लगभग 1.5 सेंटीमीटर की गहराई में बीज को बोकर मिट्टी या खाद के मिश्रण से पतली तह से ढक देते हैं। इसके बाद हजारा की सहायता से समय समय पर पानी छिड़कते रहें ताकि क्यारियां सूखे ना, इसमें नमी बनी रहे। बीज 8 से 10 दिनों में अंकुरित हो जाता है और 40 से 60 दिनों में पौध रोपण के लिए तैयार हो जाती है। पपीता पौध पॉलिथीन बैग में भी उगाई जा सकती है। इसके लिए 20 बाई 15 सेंटीमीटर आकार का छिद्रित बैग, जिसकी मोटाई 200 गेज की हो, प्रयोग कर सकते हैं आप। इन पॉली बैग को बराबर मात्रा में मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट या पकी हुई गोबर की खाद और रेत के मिश्रण से भरकर प्रति बैग 2 से 3 बीज बुआई करें और हजारे की सहायता से सिंचाई करते रहें। ध्यान रहे कि पॉली बैग में नमी बनी रहनी चाहिए, सूखना नहीं चाहिए। लगभग 15 से 20 दिनों में बीज उगाते हैं। प्रति बैग 2 स्वस्थ पौधे छोड़कर शेष पौधे निकाल दें। 15 सेंटीमीटर ऊंचे होने पर पौधों को 15 सेंटीमीटर के फासले पर बड़ी क्यारी में लगाकर सिंचाई करते रहें। लगभग 1 माह के बाद पौधे मुख्य खेत में लगाने लायक हो जाते हैं। पौधों को मुख्य खेत में लगाने से पहले 1 दिन पहले क्यारियों की हल्की सिंचाई जरूर कर लें। पपीते के बीज 15 से 20 दिनों में अंकुरित होकर 30 से 45 दिनों के बाद पौध रोपने के योग्य हो जाते हैं। मुख्य रूप से पपीते के पौध की रोपण दूरी भूमि, जलवायु, किस्म और उपलब्ध साधनों पर निर्भर करती है और इसी के अनुसार प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या भी निर्भर करती है। पपीता फल बाग ऐसे स्थान पर लगाए जहां पर पानी के निकास की समुचित व्यवस्था हो, नहीं तो पानी के भराव से पौधों को नुकसान हो जाएगा। यदि खेत में जल निकासी का समुचित प्रबंध नहीं है तो मुख्य खेत में ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाकर पौधरोपण करना चाहिए। सामान्यतः पौधरोपण के लिए अगला महीना यानी कि जुलाई अगस्त का समय उचित माना जाता है। पपीता फल बाग लगाने के लिए चयनित भूमि की 3-4 बार अच्छी तरह से जुताई करके उसे समतल बना लें। यह कार्य अभी आपको करना होगा और 45 बाई 45 बाई 45 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे खोद लें, यानी गड्ढों का आकार 45 सेंटीमीटर लंबा, 45 सेंटीमीटर चौड़ा और 45 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए। इन्हें 10 दिनों के लिए खुला छोड़ दें ताकि खुली हुई मिट्टी में अच्छी तरह से धूप लग जाए। इससे कीड़ों और रोगों का प्रकोप कम होता है। इसके बाद गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 15 से 20 किलोग्राम गोबर की अच्छी पकी हुई खाद, 1 किलोग्राम नीम की खली, 1 किलोग्राम बोन मिल मिलाकर गड्ढे को भूमि की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दें। भरे हुए गड्ढों में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 पौधे लगाए जाते हैं, जबकि गायनोडायोसियस किस्मों का प्रति गड्ढा 1 ही पौधा लगाया जाता है। पॉली बैग में तैयार किए गए पौधों को बैग से अलग करके लगाया जाता है। पौधों की रोपाई हमेशा शाम के समय ही करना चाहिए और पौध लगाने के बाद हल्की सिंचाई जरूर कर दें।
1: पपीते की खेती संबंधी जानकारी दे रहे थे विपिन कुमार यादव कृषि सामिकी में। ये प्रसारण आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से किया जा रहा था। 6:50 हुए हैं, वक्त है कार्यक्रम विवरण का।

का समय होगा। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर का वतन का राग, ये प्रायोजित कार्यक्रम सुना जा सकता है 8:30 बजे। 9 बजे लोक रसधार में कलाकार हरिराम भट्ट, मनमोहन शर्मा और साथी। गौरव गान की

1 बजे होगा कार्यक्रम महिला सभा, इसमें आज आप सुनिएगा डॉक्टर अश्विनी कुमार त्रिवेदी से वार्ता, दांतों का रोग, पायरिया, कारण और निवारण।

लोक संगीत का कार्यक्रम होगा 1:33 पर, सुगम संगीत 1:45 पर, 5:02 पर युवाणी में सुनिएगा आज आप। फिल्म संगीत एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा 6:00, नेपाल सिंह राजपूत कलाकार लोक संगीत में 6:30, 6:45 पर सुगम संगीत में सुनिए मनीष चौधरी को।

7:21 पर कृषि जगत के अंतर्गत श्रीमती रेखा तिवारी से बुंदेली कविता पाठ सुना जा सकता है सुर्खियों में रात 8:00।

9:30 पर धारावाहिक हंसना मना है का चौथा भाग, आलेख हेमंत कुलकर्णी का, परिकल्पना विमलकांत येंडे की, प्रस्तुति होगी डॉक्टर बैजनाथ गौतम की। 11 बजे सुनिएगा क्षेत्रीय एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होना चाहते हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: आसनं निर्णयं कृतवत्। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवोचत यत् एतेन विमानन क्षेत्र संबद्धाः प्रायः 77 लक्ष आजीविकाः सुरक्षिताः भविष्यन्ति। सहायता योजनेयं 36 मासपर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते। मंत्रिमण्डलेन दिल्ली निकटवर्ती क्षेत्रे वायु प्रदूषण नियन्त्रणार्थमपि एकस्याः योजनायाः अनुमोदनं कृतम्। द्विवर्षीय योजनायां प्रायः 2 लक्षं ट्रक यानानि 16,000 बस यानानि च प्रतिष्ठापयितुं लक्ष्यं निर्धारितम्। मंत्रिमण्डलीय समित्या ओडिशा राज्ये रामेश्वरात् पारादी पर्यन्तं 63,100 किलोमीटर परिमितस्य नूतन तटीय राजमार्ग निर्माणाय अनुमतिः प्रदत्ता। एतदतिरिच्य समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रिय राजमार्गयोः 31 तथा 31,200 च इत्येतयोः खगड़िया पूर्णिया खण्डस्य चतुर्पथ परियोजना अपि अनुमोदिता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां वेनेजुएला देशस्य राष्ट्रपतिना डेल्जी रोड्रिगेज इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। अस्याम् उच्चस्तरीय चर्चायां भारत वेनेजुएला संबंधानां अशेषेषु पक्षेषु मंथनं भविष्यति। सहैव ऊर्जा सुरक्षा व्यापार निवेश स्वास्थ्य सेवा परिवहनम् नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादिषु क्षेत्रेषु भविष्ये सहयोगस्य नूतन मार्गाणाम् अन्वेषणं च भविष्यति। रोड्रिगेज वर्यः भारतदेशस्य 5-दिवसीय यात्रायां ह्यः नवदिल्लीं समागच्छत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् कृत्स्नेही विश्वे योगस्य लोकप्रियता तीव्रगत्या वर्धमाना वर्तते। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन सन्देशेन प्रधानमन्त्रिणा संसूचितं यत् अद्य प्रथम वैश्विक योगासन प्रतियोगितायां सह आभासीय माध्यमेन सम्मिलितो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य सायंकाले त्रिपुरा राज्यस्य 2-दिवसीय यात्रायाम् अगरतला नगरं प्रति एष्यति। यात्रावधौ श्रीशाहः पुष्पवन्त पैलेस इत्यस्य शिलान्यास समारोहे भागं ग्रहीष्यति। लंकामुरा स्थिते सीमा सुरक्षा बलस्य निरीक्षणं च करिष्यति। सहैव राज्य केन्द्रीय सुरक्षा अधिकारिभिः सह एकं उच्चस्तरीय उपवेशनं करिष्यति। गृहमन्त्रिणः यात्रां वीक्ष्य त्रिपुरा प्रशासनेनापि एका उच्चस्तरीया प्राशासनिक सुरक्षा सीमा सभा आयोजिता। राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीय नगरस्य एकस्मिन् विश्रांति निलये भीषणाग्निकाण्डे 21 जनाः मृत्युमुपगताः, अनेके च जनाः व्रणिताः अभवन्। दक्षिणदिल्ल्यारक्षीविभागस्य उपायुक्तः अनन्त मित्तलः अवोचत् यत् अग्निशमनविभागस्य 8 वाहनैः सह अग्निः नियन्त्रितः। आरक्षिणाम् अग्निशमनस्य तथा अन्य आपत्कालिकसेवानां संयुक्तप्रयत्नैः 40 जनाः सुरक्षितरूपेण उद्धृताः, चिकित्सोपचारार्थं च चिकित्सालयेषु प्रेषिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घटनामुद्दिश्य गहनं दुःखं व्यक्तीकृतवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, गृहमन्त्री अमितशाहः तथा दिल्लीराज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता अपि अस्मिन् दुःखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः। सर्वैः नेतृभिः शोकसन्तप्तपरिवारान् प्रति गहनसंवेदना व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। उनका आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए गए नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना में सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अवैध संपत्तियों, अनाधिकृत गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों तथा भवन उपनियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ पूरे शहर में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. The discussions will involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in areas of energy security, trade and investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. Ms. Rodriguez arrived in New Delhi yesterday on a five-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising of several ministers. The delegation will visit several sites connected with energy, pharmaceuticals and auto sectors to gain insight.

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई

0: दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय प्रवास पर उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश में भी शीघ्र लागू होगी समान नागरिक संहिता, कहा मुख्यमंत्री ने। और प्रदेश के हर जिले में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए फीडर सेंटर स्थापित होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को एक मंच पर लाने का काम किया है। उन्होंने इसे योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि, बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देश में एक निशान, एक विधान और एक कानून लागू हो, इस राष्ट्रीय भावना में कुछ भी गलत नहीं है। समान नागरिक संहिता को देश के 3 राज्यों ने पहले ही लागू कर दिया है। हमारी सरकार भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। शीघ्र ही मध्य प्रदेश भी देश का UCC लागू करने वाला राज्य बन जाएगा। इसके लिए हमने उच्चतम न्यायालय की रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की है। ये समिति जिला स्तर पर सभी वर्गों से उनकी राय ले रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी जनजाति समुदाय को UCC से पृथक रखा जाएगा। उन्हें अपने पारंपरिक रीति रिवाज मानने की स्वतंत्रता होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल नई दिल्ली में आयोजित एक कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की उन योजनाओं की जो देश के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50 से 80% सस्ती सस्ती दरों पर उपलब्ध है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आर्थिक मामलों की समिति ने मध्य प्रदेश में 4,415 करोड़ रुपए की लागत वाली दो सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण सौगात से प्रदेश की जनजातीय बहुल जिले बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी के समग्र विकास को तेज गति मिलेगी, साथ ही हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस परियोजना में खरगोन जिले में एक ग्रीनफील्ड बाईपास भी विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा,
2: राजमार्ग की जो सौगात मिली है मैं उसके लिए उनका आभार भी मानता हूँ और बधाई देता हूँ। बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी ये चारों जिले हमारे करीब करीब महाराष्ट्र से लगे हुए भी हैं और इनके माध्यम से पूरा प्रदेश का विकास का परिपथ बनता है। ऐसे में 4,415 करोड़ से लगभग दो जो सड़कें की सौगात मिली, दो परियोजनाएं, ये भविष्य की दृष्टि से एक अलग प्रकार से हमको आर्थिक रूप से इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने में मदद करेगी।
0: उधर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नई पहल की है। वे अब राजधानी भोपाल में नियमित रूप से ईवी कार से ही यात्रा करेंगे। ये ईवी मुख्यमंत्री सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों पर खरा उतरने, फीचर्स की विधिवत जांच और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं का बारीकी से पालन करने के बाद मुख्यमंत्री के लघु कार किट में कल से शामिल कर ली गई है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत व्यापक पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने 5 जून से शुरू हो रहे विशेष जनकल्याण अभियान के तहत प्रदेश भर में वृहद पौधरोपण के निर्देश दिए हैं। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि प्रदेश के हर जिले में फीडर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इनके माध्यम से खेल प्रतिभाओं की खोज और संवर्धन को नई गति मिलेगी। श्री सारंग कल भोपाल के टीटी नगर स्थित मेजर ध्यानचंद हॉल में टैलेंट सर्च अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों और खेल प्रशिक्षकों को इस संबंध में व्यापक दिशा निर्देश दिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अगले 24 घंटों में भी 20 से अधिक जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बिजली गिरने की भी आशंका है। शिवपुरी में कोलारस की ग्राम पंचायत गोरा टीला में रात्रि चौपाल लगाकर प्रशासन ने ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण किया। खंडवा में आज जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। आगरमालवा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चलाए जा रहे स्वच्छ गांव मेरी जिम्मेदारी थीम के तहत मिशन लाइफ के अंतर्गत पेड़ पौधों की साफ सफाई संरक्षण संबंधी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मंदसौर जिले के आदर्श गांव बालागुड़ा में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में कलेक्टर अदिति गर्ग ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। झाबुआ में कल विश्व क्लब फुट दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निंडौरी में आगामी मानसून और संभावित बाढ़ की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन संबंधी तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। गुना के कुंभराज क्षेत्र के ग्राम बड़ौद में कल कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से संवाद किया। भारतीय पहलवान आज से मंगोलिया में उलान बतार ओपन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में अभियान शुरू करेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार।

शुभम, चलिए बात कुछ हो जाए घरेलू बचत संबंधी। जी हाँ, किसी परिवार या व्यक्ति की उस आय को कहते हैं हम घरेलू बचत, जिसे दैनिक खर्चों जैसे भोजन, किराया और बिल में उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि भविष्य के लिए नगद, बैंक जमा या निवेश के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। यह धन सुरक्षा भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने का मुख्य आधार है। घरेलू बचत को अपन इन श्रेणियों में भी रख सकते हैं। वित्तीय बचत, इसमें बैंक बचत खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट, प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड, शेयर और सरकारी योजनाएं शामिल होती हैं। अब हम चलते हैं भौतिक बचत के बारे में बात करते हैं। ये क्या है? इसके अंतर्गत आवासीय संपत्ति, सोना चांदी और अन्य टिकाऊ उपकरण आते हैं। बचत श्रोताओं जीवन में इसलिए ज़रूरी है कि आपातकालीन स्थिति जैसे चिकित्सा संबंधी आपातकालीन स्थिति या नौकरी छूटने जैसी अनिश्चितताओं से निपटने में ये बचत मदद करती है। भविष्य के लक्ष्य बच्चों की उच्च शिक्षा, घर की खरीदारी या सेवानिवृत्ति के लिए पूंजी जुटाना, ये बचत काम आती है। 50% आय अपने वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए आप इन खंडों में बांट सकते हैं। 50% आय ज़रूरतें, घर का किराया, किराने का सामान और आवश्यक बिल। 30% आय इच्छाएँ, बाहर का खाना, मनोरंजन और छुट्टियाँ। 20% आय बचत के रूप में आपातकालीन कोष और निवेश के रूप में हमें रखना चाहिए।

स्वभाव व्यक्तित्व का आधार उसकी विचार शक्ति विचार होते हैं। मनुष्य का जीवन परिस्थितियों से कम और उसके विचारों से अधिक निर्मित होता है। विचार केवल मानसिक तरंगे नहीं बल्कि चेतना की ऊर्जा व्यक्तित्व की दिशा और नियति का आधार भी हैं। जिस प्रकार बीज में विशाल वृक्ष बनने की संभावना छिपी होती है उसी प्रकार विचारों में जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने और पतन की ओर ढकेलने की शक्ति निहित होती है। विचार ही मन और आत्मा के बीच सेतु का काम करते हैं और हमारे भाव व्यवहार और चरित्र को आकार देते हैं।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

हाँ तो श्रोता, हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व की। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मनुष्य मूलतः प्रकाश, पवित्रता और दिव्यता का स्रोत है, किंतु जब उसके विचार नकारात्मक, भय, क्रोध, ईर्ष्या और स्वार्थ से भर जाते हैं तब उसकी अंतर्निहित ऊर्जा क्षीण होने लगती है। जबकि प्रेम, करुणा, मैत्री, कृतज्ञता और आत्मविश्वास जैसे सकारात्मक विचार नई चेतना का संचार करते हैं। यही विचार मनुष्य की जीवन शक्ति को जागृत कर उसे संघर्षों के बीच भी प्रसन्न और संतुलित बनाए रखता है। यही कारण है कि हमारे मनीषियों ने सदैव विचार शुद्धि को आत्मविकास का प्रथम सोपान माना है। शुभ संकल्प विचारों को दिशा देने का प्रभावी माध्यम है। जब व्यक्ति यह संकल्प करता है कि वह अपने भीतर प्रेम, सहिष्णुता, क्षमा और सद्भाव को विकसित करेगा, तब उसके जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। संकल्प की शक्ति व्यक्ति को दुर्बलता से सामर्थ्य, निराशा से आशा और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है।

0: श्रोताओं, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने विचार जगत को आध्यात्मिक मूल्यों से संपन्न करें। ध्यान, स्वास्थ्य, सत्संग और आत्मचिंतन के माध्यम से विचारों को परिष्कृत किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि विचार ही ऊर्जा है, विचार ही व्यक्तित्व है और विचार ही जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। जिस दिन मनुष्य अपने विचारों को उज्ज्वल बना लेता है, उसी दिन उसके भीतर दिव्यता का सूर्य उदित हो जाता है।
1: हमको नहीं कुछ

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। ये प्रसारण आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से किया जा रहा था। 8 बजना चाहते हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शॉ।
0: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
2: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिससे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए

0: सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
1: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है, लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
0: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
2: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
4: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जाँच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
5: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
3: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक,

0: कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिन्दुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है, तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डेल्सी रोड्रिगेज इन न्यू दिल्ली टुडे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू चेयर 73rd प्लीनरी सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन शिलोंग। U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Keralam and Mahe today. First World Yogasan Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event virtually in the evening. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the acting president of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. Ms. Rodriguez arrived yesterday on a 5-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising the ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, Science and Technology, Communication and Information and Transportation. मिस रॉड्रिगेज

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 23 अगस्त। और सही जवाब भेजने वाले हमारे दो भाग्यशाली श्रोता हैं, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से महेश पाल और जबलपुर से मनीषा साखर दांडे। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

श्रम मिट्टी में छिपे उस बीज की तरह है जो स्वयं को गलाकर दुनिया को हरियाली दे जाता है, और श्रमिक उस बरगद की तरह जो अपने हिस्से में तपती धूप रखता है और दुनिया को छांव बांटता है। किसी भी राष्ट्र की असली शक्ति इन मेहनतकश हाथों में ही होती है जो अपने पसीने से उसके सपनों को आकार देते हैं, और जब इन्हीं हाथों को उनका अधिकार दिलवाने के लिए कोई आवाज उठती है तो इतिहास उसे एक व्यक्ति नहीं, एक आंदोलन की तरह याद रखता है। भारत के श्रमिक आंदोलन को नई चेतना देने वाले एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे नारायण मल्हार जोशी, जिनके लिए मजदूरों की पीड़ा उनकी अपनी संवेदना बनी और उन्होंने श्रम को सम्मान दिलवाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। नारायण मल्हार जोशी का जन्म 5 जून सन 1879 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास स्थित गोरे गांव में हुआ था। ये समय भारत के लिए परिवर्तन की आहटों का समय था। देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और समाज अनेक असमानताओं के बोझ से दबा हुआ था। ऐसे समय में नारायण मल्हार जोशी का जीवन आकार ले रहा था। उनकी आरंभिक शिक्षा पुणे में हुई, जो उस समय राष्ट्रवादी चेतना का प्रमुख केंद्र था। सन 1901 में उन्होंने डेक्कन कॉलेज पुणे से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अहमदनगर, मुंबई और पुणे के विभिन्न विद्यालयों में अध्यापन का कार्य आरंभ किया। इस दौरान वो तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को ध्यान से देख और समझ रहे थे। उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो राष्ट्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए। गोखले जी की विचारधारा ने उन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और सन 1909 में वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सक्रिय सदस्य बन गए। यहाँ उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि उनका जीवन देश और समाज की सेवा हेतु समर्पित होगा। मुंबई के कपड़ा मिल और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की दशा देखकर वो विचलित हो गए। बड़ौदा के महाराजा श्रीमंत सयाजी राव गायकवाड़ और कुछ अन्य लोगों के वित्तीय और नैतिक सहयोग से उन्होंने सन 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की, जिसके माध्यम से मजदूरों के लिए रात्रिकालीन विद्यालय खोले गए, पुस्तकालय बनाए गए, चिकित्सा शिविर लगाए गए तथा सहकारी समितियों का निर्माण हुआ। वो समझ गए थे कि केवल आजादी नहीं बल्कि भारत भूमि के उत्थान के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों का उत्थान आवश्यक है।

समय की नदी आगे बढ़ रही थी और भारत के सामाजिक जीवन में भी अनेक परिवर्तन जन्म ले रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और देश के औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों का असंतोष चरम पर था। नारायण मल्हार जोशी ये जान चुके थे कि जब तक देश के मजदूर संगठित नहीं होंगे, तब तक वो मिल मालिकों और ब्रिटिश सरकार से अपने अधिकार नहीं मांग सकते। इसी सोच के साथ 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का ऐतिहासिक प्रथम अधिवेशन हुआ। नारायण मल्हार जोशी इसके मुख्य शिल्पकार थे। उन्होंने लाला लाजपत राय और जोसेफ बैप्टिस्टा के साथ मिलकर इस संगठन की नींव रखी। लाला जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे और नारायण मल्हार जोशी इस संगठन के प्रथम महासचिव चुने गए और उन्होंने सन 1929 तक इस पद पर रहकर भारतीय श्रमिक आंदोलन को दिशा दी। उस दिन केवल एक संस्था का निर्माण नहीं हुआ था, बल्कि बिखरी हुई आशाओं को एक धड़कन मिली थी। मजदूरों के हितों को कानूनी जामा पहनाने के लिए विधायी शक्ति की आवश्यकता थी। इसे देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सन 1921 में नारायण मल्हार जोशी को केंद्रीय विधानसभा का सदस्य मनोनीत किया। वो सन 1921 से 1947 तक लगभग 26 वर्ष लगातार इस सदन के सदस्य रहे। सदन के भीतर वो श्रमिकों की निर्भीक आवाज बनकर गूंजते रहे। नारायण मल्हार जोशी ने मजदूरों की आवाज को केवल भारत तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने श्रमिकों की आवाज को वैश्विक मंच तक पहुंचाया। सन 1922 में जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सम्मेलन आयोजित हुआ। नारायण मल्हार जोशी इस सम्मेलन में भारतीय श्रमिकों के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। इसके बाद वो कई बार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के सदस्य चुने गए, जिससे भारतीय श्रमिक आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। भारत की सीमाओं से निकलकर

मजदूरों की आवाज अब वैश्विक मंच तक पहुंच रही थी। केंद्रीय विधानसभा में रहते हुए नारायण मल्हार जोशी ने कई ऐतिहासिक कानून पारित करवाए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम 2026। इस कानून से पहले श्रमिकों के द्वारा संगठन बनाया जाना या अपनी मांगों के लिए हड़ताल करना एक अपराध माना जाता था, लेकिन नारायण मल्हार जोशी के अथक प्रयासों ने श्रम संघों को वो कानूनी मान्यता और सुरक्षा दी जिसने भारतीय श्रम इतिहास का भूगोल बदल दिया। इससे पहले सन 1923 में मजदूर मुआवजा अधिनियम को भी पारित करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर मजदूरों को मुआवजे का अधिकार प्राप्त हुआ। उनके प्रयास अद्भुत थे, जैसे किसी ने वर्षों से बंद दरवाजों को खोल दिया हो। सबके हिस्से की रोशनी सब तक पहुंच सके, इसी दृढ़ संकल्प के साथ वो लगातार आगे

समय का चक्र निरंतर घूमता रहा और नारायण मल्हार जोशी की यात्रा नए पड़ावों से होकर गुजरती रही। भारतीय कारखानों, चाय बागानों और कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की वास्तविक स्थिति की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने रॉयल कमीशन ऑन लेबर का गठन किया। नारायण मल्हार जोशी को इस उच्च स्तरीय आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। उन्होंने पूरे भारत का व्यापक दौरा किया और एक ऐतिहासिक रिपोर्ट तैयार करने में मदद की, जिसने आगे चलकर भारत में न्यूनतम मजदूरी और काम के घंटे तय करने की नींव रखी। 1920 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय श्रमिक आंदोलन एक नए मोड़ पर खड़ा था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भीतर एक नई विचारधारा का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। ये लोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हड़ताल का समर्थन किया करते थे, जबकि नारायण मल्हार जोशी का मानना था कि श्रमिक संगठनों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दांवपेच के बजाय शुद्ध रूप से मजदूरों का सामाजिक और आर्थिक कल्याण होना चाहिए। वैचारिक मतभेदों की ये आंधी जब तेज हुई तो वर्ष 1929 के नागपुर अधिवेशन में उन्होंने भारत के भावी राष्ट्रपति वीवी गिरी और दीवान चमन लाल जैसे मनीषियों के साथ मिलकर एक अत्यंत साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने AITUC से अलग होकर 1930 में इंडियन ट्रेड्स यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। उनका लक्ष्य सदैव स्पष्ट था। यही कारण है कि जब मजदूरों की एकजुटता का सवाल आया तो वो अड़े नहीं रहे, बल्कि लचीलापन अपनाते हुए सन 1940 में वो पुनः AITUC में शामिल हुए और इसके महासचिव के रूप में वो फिर से सक्रिय हो गए। कुल मिलाकर अपनी राह पर वो दृढ़ संकल्प के साथ चलते रहे। अपने सिद्धांतों से उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। राजनीति धारा में वो हमेशा निष्पक्ष रहे और जब कभी मजदूरों के हित की बात आई, उनके कल्याण की बात आई, उन्होंने सब कुछ छोड़कर श्रमिक कल्याण का पक्ष लिया। भारत के भावी संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए जब लंदन में प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ तो नारायण मल्हार जोशी ने इसमें भारतीय श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए भाग लिया। यहां उन्होंने महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर वंचित वर्गों के अधिकारों पर गहन विमर्श किया। नारायण मल्हार जोशी ने यहां इस बात की वकालत की कि स्वतंत्र भारत के नए संविधान में प्रत्येक नागरिक को वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए तथा श्रमिकों के अधिकारों को मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। देश की आजादी के बाद देश के नए औद्योगिक और श्रम कानूनों के निर्माण में वो सरकार के सबसे वरिष्ठ मार्गदर्शक और सलाहकार बने। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए 30 मई सन 1955 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि नारायण मल्हार जोशी का जन्म कब हुआ था? सवाल एक बार फिर सुन ले, नारायण मल्हार जोशी का जन्म कब हुआ था? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है wataankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में योगासन को वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पर्यटन, कृषि, बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि समान नागरिक संहिता को देश के 3 राज्यों ने पहले ही लागू कर दिया है। हमारी सरकार भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए हमने उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी है। ये समिति जिला स्तर पर सभी वर्गों से उनकी राय ले रही है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आर्थिक मामलों की समिति ने मध्य प्रदेश में 4,415 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण सौगात से प्रदेश की जनजातीय बहुल जिले बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी के समग्र विकास को तेज गति मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अब भोपाल में ईवी कार से ही यात्रा करेंगे। ये ईवी मुख्यमंत्री सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों पर खरा उतरने के बाद मुख्यमंत्री के लघु कार किट में कल से शामिल कर ली गई है। और पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में प्री मॉनसून की गतिविधियां जारी हैं। अगले 24 घंटों में भी 20 से अधिक जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बिजली गिरने की संभावना भी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लोक रसधार प्रारंभ में सुनिए हरिराम भट्ट और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत।

लोक रसधार में भी आप सुन रहे थे मनमोहन शर्मा और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। ये प्रसारण आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 9:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए नाटक रणधीर पहलवान। लेखक सआदत हसन मंटो और प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंढियाल।
1: प्रस्तुत है नाटक रणधीर पहलवान। लेखक सआदत हसन मंटो, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंढियाल।

0: ए सीधी चल। अरे उधर कहाँ, अरे कहाँ कुश्ती चली जा रही है। तुझे सांप काटे तेरी टांग टूट जाए। अरे सीधी चल रे सीधी।
1: अभी तक आई क्यों नहीं, कहीं नजर नहीं आती।
0: ए तुझे सांप काटे सीधी होकर चल मुर्दार, फिर वहीं चली गई। अरे चलना सीधी। ये इश्क बुरी बला है, कहां मैं गरीब मजदूर, कहां वो गांव के जमींदार की बिटिया। बहुत बुरा फंसा है शामू बेटा इस प्रेम के चक्कर में।
1: कौन सावित्री?
2: बहुत बुरा फंसा है शामू तू इस प्रेम के चक्कर में।
1: नहीं सावित्री, वो तो मैं ना।
2: तू साफ कह क्यों नहीं देता कि तेरी मेरी टूट गई? मैं तो पहले ही जानती थी कि तू ऐसा ही करेगा।
1: अरे आज तू किस बात पर बिगड़ बैठी है? अरे मैं तो नसीब की बात कर रहा था। क्या ये झूठ है कि तू हमारे जमींदार की बेटी है? और क्या ये सच नहीं कि मैं गरीब मजदूर हूँ? अरे छोड़ तू इन बातों को, आ चलें।
2: आ चलें।

0: तुझे पता भी है कि यहाँ 2 घंटे से तेरी राह देख रही हूँ। सचमुच मर्द बड़े वो होते हैं। हाँ
1: क्या होते हैं?
0: मैं नहीं चलूंगी तुम्हारे साथ। ये भी कोई बात हुई कि तेरे लिए हर रोज मुझे बापू से झिड़कियां सहनी पड़े और तू तो चुपचाप अपने घर निकल जाता है।
1: अरे सावित्री, जितनी झिड़कियां तुझे अब तक मिली हैं सब की सब मुझे दे दे। चल ना।
0: नहीं श्यामू, अब मैं चलती हूँ। बहुत देर हो गई और फिर घटा छा रही है। अगर रास्ते में बरखा शुरू हो गई तो क्या होगा? तुझे देख लिया है, बस आज यही काफी है।
1: तो सचमुच
0: जाने को जी तो नहीं चाहता, पर क्या करूं, बापू का डर भी तो है ना। उनको पता चल गया तो मार

0: अजी हटाओ, तुम पासा फेंको पासा।
1: अरे फेंकता हूं लो, ये 25 धरे पड़े हैं।
0: माधो यहां 10 और 25 फेंकते हैं, लो ये 25 देख लो, और लो ये 10। सदके जाइए, राजा नल के ही आए।
1: उस्ताद, राजा नल को तुमने सिद्ध कर लिया, पर वो लौंडिया सावित्री तुमसे काबू में नहीं
0: अबे
1: आई।
0: चुप है, कई बार कह चुका हूं तुमसे मैं, तुम मुझे छेड़ा ना करो वरना किसी रोज ताव में आकर कुछ कर बैठूंगा, पर तुम टलते ही रही। अरे पहलवान आदमी हूं, दंड पेलता हूं, मुकद्दर घुमाता हूं, मुझे इश्क से क्या काम, शराबी कबाबी हूं, सरकार मुझे 10 नंबरियों में गिनती है, कई बार जेल हो चुकी है। अबे इश्क क्या खाक करूंगा, है सोचने की बात है।
1: तो छोड़ो इस किस्से को, चलो एक दो बाजी चौसर की ओर हो जाए।
0: अरे भाई अब मैं अखाड़े की तरफ जाऊंगा, है आना हो तो उधर आ जाइयो। अरे दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा न।

0: तो दीवार है दीनू काका।
1: सरकार
0: लस्सी बनाई है?
1: अभी बना देता हूँ।
0: नहीं मैं आज नहीं पीऊंगा।
1: ठीक है सरकार, इधर दुकान की तरफ तो आइए पहलवान साहब।
0: अरे दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे।
2: पहले तो यूं कभी गाना इस पहलवान पर सवार नहीं हुआ था।

0: सावित्री।
1: कौन?
0: मैं हूँ शामू की माँ। डर मत बेटा।
1: जी माता जी।
0: इधर आ, इधर आ मेरे पास।
1: हाँ?
0: घबरा नहीं, मुझे सारी बातों की खबर है।
1: सारी बातों की? किन बातों की माता जी?
0: इसीलिए तो तेरे पास आई हूँ। देख सावित्री, तेरा और शामू का कोई जोड़ नहीं। तू एक धनवान की बेटी है और वो एक गरीब मजदूर।
1: तो
0: इसमें तेरी ही बदनामी है बिटिया। उसको समझाती हूँ, बहुत समझाती हूँ, पर वो तो परों पर पानी ही नहीं पड़ने देता। मुझे कोई बात नहीं करने देता। इसी वास्ते तेरे पास आई हूँ। तू समझदार है?
1: पर माता जी, मैं...
0: देख सावित्री, मैं कहती हूँ, अगर तुम दोनों ना मानोगे तो जरूर कोई आफत खड़ी हो जाएगी।
1: मतलब?
0: उसका तो सिर फिर गया है। मैंने सुना है कुछ दिनों से उसने किसानों को जमींदार के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। सावित्री, जब से ये बात सुनी है, मेरा दिल बतासे की तरह बैठा जा रहा है। मेरा कहा मान और उसे मिलना छोड़ दे।
1: पर माता जी,
0: सावित्री,
1: ये कैसे हो सकता है? मैं श्यामू से मिलना कैसे छोड़ सकती हूँ?
0: मेरी बात तो सुन।
1: आप मुझसे ऐसा क्यों कहती हैं?
0: सावित्री,
1: मैं तो...
0: सावित्री, अरे तूने तो रोना शुरू कर दिया। अरे मेरी बात सुन।

0: आओ पहलवान आओ, इधर मेरे पास बैठ जाओ।
1: आपने मुझे बुलाया, क्या काम है?
0: अरे भाई जरा आराम तो कर लो, काम तो जब तक जिंदगी है होते ही रहेंगे। मुनीम जी,
2: जी क्या हुक्म है सरकार?
0: रणधीर पहलवान की पिछले महीने की और इस महीने की तनख्वाह अभी तक क्यों नहीं दी? ये बहुत बुरी बात है। देखो आइंदा ऐसी गड़बड़ ना हो।
2: जी
0: हाँ, तो अभी रुपए लाकर पहलवान साहब को दे दो।
2: बहुत अच्छा सरकार, अभी लाता हूँ।
1: आप क्यों तकलीफ करते हैं, अभी का तो खाता हूँ फिर ले लूंगा।
0: नहीं पहलवान, यहाँ कौड़ी कौड़ी का हिसाब किया जाता है। बोतल मंगवाऊं? अरे मुनीम जी, वो कल 4 बोतलें आई थी, उनमें से 2 पहलवान साहब की हैं, कोई और उड़ा कर ना ले जाए। ले आओ।
1: अपने लिए खिंचवाई है?
0: हाँ हाँ, खास तौर पर मैंने अपने लिए खिंचवाई थी। हाँ भाई पहलवान, तो किस्सा ये है कि इस श्यामू ने कुछ दिनों से मुझे तंग करना शुरू कर दिया है, किसानों को मेरे खिलाफ उकसा रहा है, जिससे लगान वसूल करने में मुश्किल पैदा हो गई है। है तो बड़ी मामूली सी बात, पर तुम जानते ही हो अगर मैं खामोश रहा तो शह पकड़ जाएंगे। कल मुनीम से बातें हो रही थी, मैंने कहा हमारा पहलवान जो है वो शामू को यूं चुटकियों में ठीक कर देगा। क्यों पहलवान?
1: क्यों नहीं।
0: लो पहलवान
1: जी,
0: ये थोड़ी सी नमूने के तौर पर पियो।
1: अरे
0: इत्तेफाक से बाहरी पड़ी थी। ये लो। देखो पहलवान, बात ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए, रुपए पैसे की तो तुम फिक्र ना करो। अगर कोई ऐसी बात हो गई तो मैं सब बंदोबस्त कर दूंगा। अब 500 रुपए मैंने इस काम के लिए अलग रख छोड़ा है। मेरा मतलब यह है कि अगर चुपके से ये कांटा निकाल ही दिया जाए तो क्या बुरा है।
3: अरे आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा।
4: भाइयों, मैं जमींदार की आंखों में कांटे की तरह खटक रहा हूं, अगर उसका बस चले तो वो मुझे फांसी पर लटकवा दे, मगर वो पापी मुझसे डरता है क्योंकि मैं उसके सारे भेद जानता हूं, इसलिए वो मेरी परछाई से भी डरता है। भाइयों मेरी बात याद रखो, जालिम कभी बहादुर नहीं होता। तुम बिल्कुल ना घबराओ, वो तुम्हारा बाल भी बाका ना कर सकेगा। हम उससे वही चीज मांगते हैं जो वो हमसे छीन चुका है। उसकी डांट डपट में बिल्कुल ना आओ और ऐसे ही डटे रहो। सरकार के कानों तक ये बात पहुंच गई तो समझो हमारा बेड़ा पार है, उसके ढोल की पोल खुल जाएगी।
5: श्यामू भैया, तुमको ये भी पता है कि उसने रणधीर पहलवान को रुपए पैसे का लालच देकर हमारे खिलाफ कर दिया है। कल शराब पीकर वो तुम्हें गालियां दे रहा था।
4: मैं जानता हूँ, पर वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है। उस कुत्ते की कोई परवाह ना करो, वो जमींदार से भी ज्यादा पापी है। उसका नाम ला लो मेरे सामने, मेरा खून खोलने लगता है।
6: उसने मुझे कुत्ता कहा?
7: हाँ हाँ उस्ताद, मैंने इन कानों से सुना है।
6: उसने मुझे कुत्ता कहा, उसने रणधीर पहलवान को कुत्ता कहा। अब अगर वो पर लगाकर आसमान पर उड़ जाए तो भी मैं उसे जिंदा ना छोड़ूंगा। अबे माधव
7: उस्ताद,
6: वो तेरे उस्ताद को गालियां देता गया और तू खामोश खड़ा रहा।
7: वो
6: अरे तूने उसकी जबान क्यों ना खींच ली? लेकिन ये क्या हुआ, मैं अभी जाकर उसको मजा चखाता हूँ। उसने रणधीर पहलवान को समझा क्या है? क्यों बे, तू यहाँ खड़ा क्या डर रहा है?
8: ओ रणधीर पहलवान, क्यों?
6: अबे मैं पूछता हूँ, यहाँ झाड़ियों के पीछे तू अकेला खड़ा क्या कर रहा है?
8: गा रहा था, अब तेरा मुंह देख रहा हूँ।
6: तू खत्री का लड़का है ना, मरने मारने से बिल्कुल नहीं डरता।
8: जा अपना रास्ता पकड़, बहुत बातें कर चुका।
6: ये मेरे हाथ में तुझे लाठी नजर नहीं आ रही क्या?
8: तू लड़ना चाहता है तो लड़।
6: अबे तुझसे क्या लड़ूंगा, एक लाठी तेरे सिर पर मारू तो तू जमीन में घुटनों तक गड़ जाए।
8: तेरी लाठी उठने से पहले ही अगर
6: संभाल।
7: कौन? सावित्री।
8: सावित्री तू?
9: श्यामू, श्यामू, ये मैंने क्या कर दिया, अब क्या होगा?
7: सावित्री, तूने मेरा माथा लहूलुहान कर दिया। अरे याद रख, इसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। श्यामू, तुझसे मैं फिर निपट लूंगा। अगर सावित्री बीच में ना आ गई होती तो मैंने तेरा कचू मन निकाल दिया हो।
4: जाजान निकल।
9: श्यामू, मैं झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी।
1: हाँ?
9: और जब उसने तुम पर वार करने के लिए लाठी उठाई तो बाल्टी अपने आप मेरे हाथ से निकल गई।
1: कोई बात नहीं
9: श्यामू, श्यामू, उसको उसको बहुत गहरी चोट आई है, वो मुझसे जरूर बदला लेगा। हाय, अब क्या होगा?
4: कुछ नहीं होगा सावित्री, तू चिंता मत कर, तू चल चुपचाप मेरे साथ।
0: आओ आओ पहलवान आओ। अब मुनीम जी,
2: जी
0: ये ढेरे उठा लो।
2: हाँ।
0: बाकी हिसाब फिर करेंगे।
2: जी जी जी, बहुत अच्छा।
0: आओ पहलवान। अरे आओ। ये तुम्हारे माथे को क्या हुआ?
1: कुछ नहीं।
0: तो फिर ये पट्टी क्यों बांध रखी?
1: चोट लग गई थी।
0: हैं? चोट कैसे?
1: वो कल शामू से जरा चकचक हो गई थी यूं ही।
0: क्या?
2: और उसने तुम्हें घायल कर दिया? हमें क्यों बना रहे हो पहलवान?
1: अरे उसने मुझे घायल नहीं किया।
0: तो फिर किसने किया? तुम मुझे बताओ वो कौन था पहलवान?
1: अब मैं आपसे क्या कहूँ, बात यह है कि चूक मुझसे हुई, मैं अपने ध्यान में रहा और उसने वार कर दिया।
2: किसने?
1: नहीं, वो शामू ने। लेकिन क्या हुआ, आज फिर दो दो हाथ हो जाएंगे?
0: अरे लेकिन भाई रणधीर, लोग बाग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि पहलवान ने उस कल के लौंडे से।
2: पर जमींदार जी, अब पहलवान बच्चा थोड़ी ही है, अरे उसने सब बंदोबस्त कर लिया होगा।
0: मजा तो तब है कि रणधीर बदनामी से पहले ही उसका सफाया कर दे।
2: हाँ।
0: ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्यों मुनीम?
2: 52 तोला पाव रत्ती की बात कही है हुजूर ने।
0: ये 500 देता हूँ, चुपके से अपना काम करे और किसी दूसरे शहर चला जाए,
2: और जब मामला ठंडा हो जाए तो फिर वापस चला आए।
1: रुपए पैसे की बात छोड़िए जमींदार साहब, मैं आपका काम कर दूंगा और बहुत जल्द कर दूंगा। अरे एक आदमी मारना कोई कठिन काम नहीं, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। यह अब फैसला कर लिया है कि शामू जिंदा ना रहेगा।
0: पर रणधीर, काम ऐसे हो कि किसी को कानों कान खबर ना हो।
1: सावित्री।
9: कौन?
1: मैं रणधीर पहलवान, जिसका माथा कल तूने घायल किया था, याद है ना? मैंने उस वक्त क्या कहा था?
9: मुझे माफ कर दो रणधीर।
1: माफ कर दूं तुझे? हाँ। क्यों डर गई? अरे ठहर जा, जाती कहाँ है, बदला लिए बिना तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे तूने समझा क्या था मुझे? रणधीर पहलवान हूँ, रणधीर पहलवान, खून ही पी जाया करता हूँ मैं।
9: मुझे माफ कर दो रणधीर।
1: अरे क्यों माफ कर दूं तुझे? क्या तूने मेरा माथा जख्मी नहीं किया? मैं बदला लिए बगैर तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जिन हाथों ने मेरा माथा जख्मी किया वही इस पर पट्टी बांधेंगे। बोल, बांधेगी पट्टी?
9: हाँ।
1: तो तू अपनी ओढ़नी से कपड़ा फाड़ और पट्टी बनाकर मेरे माथे पर जल्दी बांध, वरना चल चल बांध, खड़ी सोचती क्या है, चल।
9: तुम बैठो तो मैं बांधूं पट्टी।
1: बैठूं?
9: यूं मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा।
1: अच्छा, ले ले, बैठ गया मैं, बांध बांध बांध।
9: पट्टी बांध दी मैंने, मैं जाऊं?
1: नहीं, पहले फूंक भी मारो, फूंक मारो।
9: हाँ
1: हाँ,
9: अब जाऊं मैं?
1: अरे भागती कहाँ है, ठहर ठहर ठहर, भागती कहाँ है, ठहर जाओ।
9: रणधीर छोड़ दे, छोड़ दे मेरी कलाई रणधीर, मेरी चूड़ियां टूट जाएंगी।
1: छोड़ दूं? अरे कहाँ गई तेरी वो चुलबुलाहट, दूं एक मरोड़ा और मैं?
9: रणधीर मेरी कलाई छोड़ दे,
1: छोड़ दे।
9: रणधीर मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कीड़े चले तेरे तन बदन में, खड़े का खड़ा जमीन में समा जाए तू।
1: सावित्री, सावित्री, सावित्री,
9: परमात्मा करे तुझ पर बिजली गिर जाए, परमात्मा करे तेरी गर्दन मरोड़ी जाए, आज तू जैसे मेरी कलाई मरोड़ रहा है।
1: ना रो सावित्री, ना रो, तू रोती है तो मेरे दिल को बड़ा दुख होता है। मैंने तुझसे मजाक किया था, मैं भला तुझे तकलीफ पहुंचाकर खुश हुआ हूं क्या? ना रो, ना रो सावित्री, ना रो,
7: ले, ए, ए, सुन, मुझे मार ले, ले ले ये पत्थर ले ले, मेरे सिर पर दे मार, सिर पर मार दे मेरे, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ सावित्री।
9: क्या कहा? प्रेम? तुझे से भाभी को प्रेम करने का कोई अधिकार नहीं रणधीर।
7: नहीं नहीं सावित्री, मैं तुझसे प्रेम नहीं करता हूँ। मैं तुझसे कैसे प्रेम कर सकता हूँ? मैं बड़ा जालिम, बड़ा पापी हूँ। तू ठीक कहती है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे सावित्री, मुझे माफ कर दे।

0: माधव, जहाँ तेरा पसीना गिरे ना वहाँ मैं अपना खून बहाने को तैयार।
1: क्या बात
2: है। किशोरी माल एक हदिया और भेज दे।
1: आजकल उस्ताद कहीं दिखाई नहीं देते हैं, कहाँ रहते हैं आजकल?
3: मैं बताऊं आजकल वो क्या करता है।
4: क्या सुनाऊं माजराए दर्द दिल।
5: भाई बहुत बड़ी उम्र है हमारे उस्ताद की। आओ आओ उस्ताद, आओ
2: उस्ताद, आओ उस्ताद बैठो। अभी तुम्हारी बात हो रही थी उस्ताद।
5: माधो कह रहा था कि उस्ताद इश्क लगा रहा है। इश्क?
6: उस्ताद क्या इश्क करेगा। माधो मैं बड़ा पापी और बड़ा जालिम हूं, मैं प्रेम नहीं कर सकता। तूने एक बार कहा था ना, और सच ही कहा था कि उस्ताद तेरे पहलू में दिल नहीं पत्थर है।
2: मैंने तो वो ऐसे ही कहा था उस्ताद, वरना सच्ची बात तो ये है तुम्हारे पहलू में बड़ा ही नर्म दिल है।
6: नहीं तू झूठ कहता है, मेरे पहलू में दिल नहीं पत्थर है। एक बार फिर कह, उस्ताद तेरे पहलू में दिल नहीं पत्थर है। पत्थर पत्थर पत्थर ही तो है। अब लेकिन कोई प्रेम करता है तो इसमें मेरे बाबा का क्या जाता है। मैं उसको नहीं मारूंगा, जमींदार जाने और उसका काम जाने।
2: अरे अरे कहां चले उस्ताद, मैंने अभी अधिया मंगाई है।
6: मैं जमींदार से मिलने जा रहा हूं, एक जरूरी काम है, अभी आता हूं।
7: मुनीम
8: जी,
7: तुमने बात तो ठीक कही है।
8: सरकार मैं तो ठीक ही कहता हूँ, मैंने ये बाल धूप में थोड़े ही सफेद किए हैं। सोचने की बात है सरकार, रणधीर अगर पकड़ा जाए और थाने में ये कह दे कि जमींदार साहब ने मुझे सामू का कत्ल करने के लिए कहा था, तो बैठे बिठाए एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी कसम से।
7: तो इसका इलाज बड़ा आसान सा है।
8: अब वो क्या,
7: श्यामू को रणधीर मारे। हाँ। और रणधीर को कोई और साफ कर दे।
8: हाँ।
7: या फिर ये हो सकता है कि उसको ज्यादा शराब पिला दी जाए।
8: हाँ।
7: और जब वो बेहोश हो जाए तो उसे उठाकर रेल की पटरी पर रख दिया जाए।
8: हाँ।
7: मुनीम मुनीम, ये आवाज सुनी तुमने?
8: नहीं तो।
7: अरे मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि बाहर दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था।
8: जी नहीं, आपको ऐसे ही वहम हुआ है।
7: नहीं भाई, लेकिन लेकिन डर लगता है।
8: Huh?

0: भैया, रामू भैया, तुमने सुना जमींदार जी का खून हो गया।
1: खून? जमींदार जी का खून?
0: श्यामू को पकड़कर थाने ले गए।
2: मैं ना कहता था कि श्यामू का गुस्सा इतने जरूर रंग लाएगा।
0: चलो चलो, अरे उठो ना, थाने में चलते हैं, श्यामू को पकड़कर वहीं ले गए हैं।
3: अरे भैया, लाश बाहर खेतों में पड़ी थी और श्यामू उसके सिरहाने खड़ा था, और इधर से थानेदार साहब जो दौरे से वापस आ रहे थे उधर ही आ निकले।
2: अब जरूर फांसी हो जाएगी उसे।
3: पर श्यामू तो कहता है कि मैं निर्दोष हूँ।

0: बापू को नहीं मारा चावू, तुम मेरे बापू को कैसे मार सकते हो? शामू निर्दोष है थानेदार जी, शामू निर्दोष है।
1: शामू बेटा मैं तुझे रोकती नहीं बेटा, पर तूने मेरी एक न सुनी।
2: मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ माँ।
3: फिर जमींदार जी का खून किसने किया है?

0: चल, दुनिया से एक पापी कम हुआ, उसकी नीयत ही खराब थी, जिसका फल उसको मिल गया। अरे रेल के नीचे अगर उसकी लाश कुचली जाती तो मजा आ जाता। बड़ा चालाक बना फिरता बस। लाला किशोरी लाल, लाला
1: आया पहलवान आया। क्या हुक्म है?
0: अरे आज तुम्हारी शराब को क्या हो गया है? मालूम होता है बीच में ही पानी मिला देते हो।
1: अरे नहीं उस्ताद,
0: आज ठेका खाली खाली क्यों नजर आता है?
1: अरे वो जमींदार जी का कत्ल हो गया है ना, सारा गांव तो थाने में बैठा है, शामू पकड़ लिया गया है।
0: 500 रुपए देता था दूसरे को मारने के लिए। वाह रणधीर पहलवान, तुम्हारे क्या कहने।
2: रणधीर कहाँ है?
0: कौन?
2: रणधीर पहलवान, मैं
0: सावित्री। अरे सावित्री तू यहाँ क्या करने आई है? जा चली जा यहाँ से। अरे क्या हुआ, क्या हुआ सावित्री, तू रोती क्यों है? तू
2: वो शामू को ताने ले गए और कहते हैं कि उसने मेरे बापू को मारा है।
0: अरे
2: ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है रणधीर। शामू ने मेरे बापू को नहीं मारा, वो बिल्कुल निर्दोष है। वो तो मुझसे मिलने के लिए खेतों में जा रहा था कि रास्ते में उसे लाश पड़ी दिखाई दी। बस बस उसका इतना ही दोष है रणधीर। मैं मर जाऊंगी रणधीर, मैं मर जाऊंगी।
0: ये कैसी बात मुंह से निकालती है सावित्री?
2: मैं जहर खाकर मर जाऊंगी अगर शामू को कुछ हो गया तो।
0: नहीं, ना रो सावित्री, ना रो, मत रो। मैं जाकर देखता हूं थाने में कि क्या बात है। ए, अरे सचमुच तू पगली है, मत रो ना, बेकार अपनी जान हलाकान कर रही है। चल चल सावित्री चल।
3: शामू की माँ, रणधीर।
2: रणधीर
1: दारू पी रखी है,
4: थानेदार की तरफ जा रहा है।
5: रणधीर, ए रणधीर, बाहर खड़े रहो। अब्दुल रहमान, तुम इसको रोकते क्यों नहीं?
0: खबरदार जो मुझे किसी ने हाथ लगाया।
5: ए, आने दो इसे, आने दो। हाँ बोलो, क्या कहना है?
0: कुछ नहीं, मैं ये देखने आया था कि जमींदार जी को किसने कत्ल किया।
5: ये मेरा हाकिम बनाकर तुम्हें किसने भेजा है? खैर, कातिल को देखना है ना, लो देख लो, वो तुम्हारे सामने खड़ा है।
0: ये शामू। शामू ने जमींदार को मारा है।
5: हाँ।
0: अरे थानेदार साहब, आपने गलत आदमी को पकड़ लिया।
5: रणधीर, ज्यादा बकवास ना करो, चलो डॉप भागो यहाँ से, निकल जाओ।
0: अरे मैं कहता हूँ थानेदार साहब, जिस आदमी ने कभी चिड़िया तक नहीं मारी, वो एक आदमी को जान से कैसे मार सकता है?
6: उड़ा ले मेरी हंसी। हाँ हाँ, उड़ा ले मेरी हंसी।
0: थानेदार साहब, अरे ये मुर्दार किसी को क्या मारेगा?
7: थानेदार साहब, इससे पूछिए, जमींदार को अगर शामू ने नहीं मारा तो किसने मारा है?
0: तो मुझसे पूछ, थानेदार से पूछने को क्यों कहता है? थानेदार क्या मेरा खुदा है? सुन ले।

0: जमींदार को मैंने मारा है।
1: देखा सावित्री, मेरा बच्चा सामो निर्दोष है। देखा सावित्री, मेरा बच्चा निर्दोष है, निर्दोष है।
2: रणधीर, रणधीर तुम
0: सावित्री, मैंने तुझसे कहा नहीं था कि घर चल के बैठ? तू यहां क्या करने आई है? जा, चली जा यहां से।
2: रणधीर, रणधीर तुम बहुत अच्छे आदमी हो।
0: नहीं नहीं सावित्री, मैं बड़ा जालिम हूं, बड़ा पापी हूं। मुझे तो ना प्रेम करने का कोई अधिकार ही नहीं है। हाँ, मेरे पहलू में ना दिल नहीं है, पत्थर है, पत्थर।

0: अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो का लिखा नाटक रणधीर पहलवान। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है: शामू अमित रिछारिया, सावित्री कंचन राजानी, माधव कमल जैन, दीनू अरुण गीते, दरबारी मल देशबंधु शुक्ल, शामू की मां अनुराधा चतुर्वेदी, जमींदार नजीर कुरैशी, मुनीम मांगीलाल शर्मा, थानेदार अरशद इकबाल और रणधीर पहलवान की भूमिका निभा रहे थे संजय मेहता। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल।
1: अभी आप सुन रहे थे नाटक रणधीर पहलवान। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कटनी जिले की चिट्ठी।
0: प्रस्तुत है
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कटनी जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश चतुर्वेदी, वाचन स्वर दीपा सिंह। कटनी जिले में इन दिनों बदले मौसम के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे में तेज हवा और आंधी के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। जिले में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जून माह को मलेरिया निरोधक माह के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मलेरिया संक्रमण काल प्रारंभ होने से पूर्व जन समुदाय में मलेरिया से बचाव रोकथाम संबंधी व्यापक जन जागरूकता फैलाना है, ताकि मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन में आमजन की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए मलेरिया जागरूकता रथ भी चलाया जा रहा है। कटनी में भी पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को आधुनिक प्रभावी तकनीक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त टैबलेट जिले के विभिन्न थानों में पदस्थ विवेचना अधिकारियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे अनुसंधान कार्यों में तेजी, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। कटनी में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हितग्राहियों की ई केवाईसी किए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा जारी नवीन निर्देश द्वारा पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रति वर्ष बायोमेट्रिक के माध्यम से ई केवाईसी की कार्यवाही सभी हितग्राहियों द्वारा कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कटनी में महिला और बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पुलिस सीधी अभियान चलाया गया। पिछले दिनों पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन और महिला थाना प्रभारी वर्षा सोनकर के मार्गदर्शन में गठित पुलिस सीधी की विशेष टीम ने शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों का दौरा किया। टीम ने चौपाटी, मनोरंजन मेला सहित अन्य भारी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में सघन भ्रमण कर महिलाओं और बालिकाओं से सीधा संवाद स्थापित किया। पिछले दिनों कटनी में मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक शासकीय तिलक महाविद्यालय कटनी में आयोजित की गई। बैठक में समान नागरिक संहिता के संबंध में अध्ययन और परीक्षण के लिए

बनाए गए उच्च स्तरीय समिति के सदस्य और प्रख्यात कानूनविद अनूप नायर उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित जनों ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के बारे में खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। कटनी जिले में नागरिक सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर जिले भर में संचालित पटाखा फैक्ट्रियों, विस्फोटक भंडारण मैगजीनों और अमोनियम नाइट्रेट फैक्ट्रियों तथा स्टोर हाउसों की व्यापक जांच और भौतिक सत्यापन अभियान चलाया गया। जिले में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और आमजन को स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करने हेतु 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व 40 दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये पहल भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार संचालित की जा रही है। जिला आयुष अधिकारी डॉ आशीष रेजा ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 मई से प्रारंभ होकर जिले के 18 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। प्रतिदिन 8 बजे से 9 बजे तक पंडित खुशीलाल आयुर्वेद चिकित्सालय से योग आयोग के विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से योग सत्र संचालित किए जा रहे हैं। कटनी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आह्वान और कलेक्टर आशीष तिवारी के मार्गदर्शन में 19 मार्च से जिले में जल स्तर को सुधारने और पारंपरिक जल स्रोतों को सहेजने के लिए चलाया जा रहा जलगंगा संवर्धन अभियान 2026 में जिले ने उत्कृष्ट कार्य किया है। बलराम तालाब की श्रेणी में जलगंगा संवर्धन अभियान के मामले में कटनी प्रदेश के 4 अग्रणी जिलों में शामिल है। जिला प्रशासन और ग्रामीणों के साझा प्रयासों से अब तक जिले में 3,284 जल संरक्षण संबंधी कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं, जिससे पानी को सहेजने और उसके संरक्षण तथा संवर्धन में मदद मिलेगी। कटनी में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत संचालित मकान सूचीकरण मकान गणना कार्य पूरा हो गया है। इसमें कटनी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कीर्तिमान स्थापित किया है। अब प्रगणकों द्वारा बनाए गए नजरी नक्शे को ट्रेस का काम किया जा रहा है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे कटनी जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश चतुर्वेदी का था, वाचन स्वर दीपा सिंह का।
1: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 10:05 हुए हैं। वंदे मातरम गौरव गान की 150वीं।

श्रोताओं, हम जब बात करते हैं देशभक्ति की, तो सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि देशभक्ति का अर्थ क्या है। देशभक्ति का अर्थ अपने देश, उसकी संस्कृति और नागरिकों के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना है। इसकी तुलना अक्सर राष्ट्रवाद से की जाती है। देशभक्ति जहां प्रेम और रचनात्मक कार्यों पर आधारित होती है, वहीं राष्ट्रवाद अक्सर श्रेष्ठता और राजनीतिक पहचान से जुड़ा होता है। देशभक्ति में मूल भावना अपने देश और लोगों के प्रति प्रेम और भलाई की भावना होता है, जबकि राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र को अन्य सभी राष्ट्रों से श्रेष्ठ मानने की भावना रखता है। इसकी प्रकृति समावेशी और शांतिपूर्ण होती है, जो सभी मानवता का सम्मान करती है। राष्ट्रवाद में आक्रामकता अलगाववादी हो सकती है, जो अक्सर एक अलग प्रकार का माहौल पैदा करती है। कार्यप्रणाली देशभक्ति में अपने देश को बेहतर बनाने के लिए ईमानदारी से काम करना होता है, जबकि राष्ट्रवाद राजनीतिक स्वतंत्रता, सत्ता के विस्तार या राष्ट्रीय पहचान के लिए संघर्ष करता है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने से रोकने का प्रस्ताव पारित किया। बांग्लादेश में खसरे के प्रकोप से मृतकों की संख्या बढ़कर 601 हुई। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में, और भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थीं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है। वो इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 25 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधि मंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद नज़दीक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में लागू हो सकता है। अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान रूबियो ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हाल में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा भी हुई है। रूबियो ने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग तथा कई व्यापक परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
2: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकना है। यह प्रस्ताव 208 मतों से पारित हुआ। 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट सांसदों का साथ दिया। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को कांग्रेस की मंजूरी नहीं मिली है। हालांकि प्रस्ताव को अभी रिपब्लिकन बहुमत वाली सीनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। यदि सीनेट इसे मंजूरी भी देती है तब भी राष्ट्रपति ट्रंप इसे वीटो कर सकते हैं। इस बीच डेमोक्रेट और कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने कहा है कि सैन्य कार्रवाई से जुड़े फैसलों में कांग्रेस की भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसराइल और लेबनान में संघर्ष विराम को फिर से लागू करने तथा लेबनान के अंदर कुछ विशेष सुरक्षा क्षेत्र बनाने पर सहमति व्यक्त की है, जहां हिजबुल्ला लड़ाकों की मौजूदगी नहीं होगी। अमेरिका की मध्यस्थता में हुई चौथे दौर की वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि संघर्ष विराम तभी प्रभावी रहेगा जब हिजबुल्ला पूरी तरह से गोलीबारी बंद करे और लितानी नदी के दक्षिण के क्षेत्रों से अपने सभी लड़ाकों को हटाए। समझौते के अनुसार इन क्षेत्रों की सुरक्षा और नियंत्रण की जिम्मेदारी लेबनान की सेना संभालेगी। दोनों पक्षों ने कहा है कि ये कदम व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करेगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप लगातार गंभीर होता जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार खसरे से मृतकों की संख्या बढ़कर 601 हो गई है। इन मौतों की पुष्टि खसरे से हुई है, जबकि 511 मौतों को संदिग्ध खसरा मामलों के रूप में दर्ज किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला बीमारी का प्रकोप तेजी से फैल रहा है और इसे रोकने के प्रयास अभी पर्याप्त नहीं हैं। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेसिस ने बीमारी पर काबू पाने के लिए और तेज कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि इबोला वायरस अब उत्तर और दक्षिण कीवू प्रांतों के साथ साथ पड़ोसी देश युगांडा तक पहुंच चुका है। मई के मध्य से अब तक 344 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और 60 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा जिम्बाब्वे को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना है। इन देशों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। वे 1 जनवरी 2027 से परिषद में अपना कार्यभार संभालेंगे और 31 दिसंबर 2028 तक सदस्य बने रहेंगे। नवनिर्वाचित देश डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया का स्थान लेंगे। इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। नासा ने मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहे अपने मेवेन अंतरिक्ष यान के मिशन के समाप्त होने की घोषणा की है। लगभग 6 महीने तक कोई संपर्क न होने के बाद नासा ने पुष्टि की कि 1 दशक से अधिक समय तक चले इस मिशन का अंत हो गया है। वर्ष 2013 में प्रक्षेपित मेवेन का उद्देश्य मंगल ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करना था। पिछले वर्ष दिसंबर में मंगल ग्रह के पीछे जाने के बाद यान से संपर्क टूट गया था। श्रीलंका के अगुरुथावोटा के बाटाकोटा स्थित एक वृद्धाश्रम में आग लगने से 8 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। घायल हुए 8 अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वृद्धाश्रम से 51 निवासियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। घटना की जांच जारी है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करना है।
1: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार की विजेता भारतीय टीम फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से खेलेगी। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने से रोकने का प्रस्ताव पारित किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में और भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 10:20 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सारंगा। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। पहला गाना प्रणाम सिटी खंडवा से शिवांश कुमार खंडियाले, सुभाष मंदा, राजेश कुमार अंजलि, संदीप माधुरी, पिंटू जयश्री। खरवों से ध्रुवास, सुनीता, खुशी, प्रियांश, आशीष, इनके परिवार के सदस्य। सतना कल्पा से चांद मोहम्मद और इनके परिवार के सदस्य। खोहमंडी जबलपुर से जिनेन्द्र जैन, महेंद्र, अरुण चौरसिया। खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका गुनगुन, सनप्रीत, हेमंत, सनमति। आप सभी सुनना चाह रहे हैं फिल्म कर्जे से किशोर कुमार और साथियों को।

आपने सुने अलग अलग फिल्म और आखिर क्यों से ये दो फिल्मों के गाने। सुनना चाह रहे थे कासगंज से एम असलम शैफी, अकरम आबाद इनके परिवार के सदस्य, परगी नगर जबलपुर से रविंद्र गद्रे, सुभाष दिगंबर, राजेश शिवम, शुभांग सृष्टि गद्रे, लक्ष्मण रैकवार, विनीता रैकवार, ऋषि वैशाली वैष्णवी, आप सभी बैली बंडा से, बेड़ी से राजेश सोनी, कंचन गायत्री, वैष्णवी चंचल, धीरज। अगला गाना हमने लिया है फिल्म द ग्रेट गैम्बलर से। सुनना चाह रहे हैं बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा, कमलकांत इनके परिवार के सदस्य, किशनपुर से शबाना रिजवाना, आलम शबाना, चांदनी नाज, गणेशपुर से हिना कैसर, वकील फिरोज़।

0: अमोरे मियो दोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना प्राची नेमा, खंडवा से रामगंज से विजय महोबिया, संजय कविता विशाल, सपना शिवी, श्री तुलजा भवानी माता वार्ड खंडवा से अनिल, मंगला शोभित विंचूरकर, नर्मदा नगर से प्रोफेसर सियाचरण ज्योतिषी इनके परिवार के सदस्य, उदयनगर से मोहित रत्न पारखी, स्वाति मिष्टी मनस्वी, रत्ना पारखी आप सभी सुनना चाह रहे हैं फिल्म शक्ति से लता मंगेशकर किशोर कुमार को।

0: के मेले।
1: फिल्म में डिस्को डांसर का गाना सुनना चाह रही थी मानपुर से विजय वैद्य, रानी महिमा। लोहारी से राजेश कुमार, इनके परिवार के सदस्य। रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर। रियांश, इनके परिवार के सदस्य। अमरावती से आयशा खान, सालिया। अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, ऋषिका रॉबिन।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सारंगा। ये प्रसारण आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से किया जा रहा था। थोड़ी देर में आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस।

आज का गीत। अगली मुलाकात तक खुश रहिए, बदलते मौसम।

0: टपाल केंद्र है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के लिए दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ये परियोजनाएं बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। इनके माध्यम से राज्य में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज राज्य संग्रहालय में भोपाल मेट्रो परियोजना और उच्च शिक्षा विभाग के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। भारत भवन में भारतीय नृत्य की विविध शैलियों पर केंद्रित नृत्य समारोह 5 जून से प्रारंभ होगा। 3 दिवसीय इस आयोजन में प्रतिदिन शाम 6 बजे से कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे, जिसमें प्रवेश निःशुल्क है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां जारी हैं। अगले 24 घंटों के लिए 20 से अधिक जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार कहीं कहीं बिजली गिरने की भी संभावना है। और भारत ने सेफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का शनिवार को फाइनल में बांग्लादेश से सामना होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे।
2: श्रोताओं नमस्ते, मैं हूँ नीतिका वर्मा, लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम बात आपकी, गीत हमारे। जब से मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया है, उसकी प्रगति थमी नहीं है। ये पहिया ऐसा चला कि आज तक नहीं थमा है। इसने जीवन के कई नए आयाम को खोज और आविष्कार के माध्यम से सुलभ बनाया है। तो श्रोताओं, आज बात करेंगे साइकिल की। ये आपके जीवन में क्या परिचय देती है और आपके जीवन में इसका क्या महत्व है? शुरू करते हैं हमारे पहले श्रोता के साथ जुड़कर।
3: प्रणाम मैम, नमस्कार आपको करता हूँ। मैं संतोष कुमार राव बात कर रहा था, उमरिया मध्य प्रदेश से।
2: जी संतोष जी, कैसे हैं?
3: मैडम बहुत अच्छे हैं, लगातार आपके प्रसारण सुनते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के। बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर के आप आते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है मैडम आपसे बातें करते हुए हमें।
2: और हमें भी बहुत खुशी होती है जब हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, है ना?
3: तो
2: संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहला फोन कॉल आपका है और जानना चाहते हैं कि साइकिल जो है वो आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है।
3: बिल्कुल, उमंगों का खास एक सुकून भरा एहसास जो दिलाता है वो साइकिल होती है। हम लोग बचपन से लेकर के अभी तक जो शौक रहा है हमारा, अब तो चल खास करके टू व्हीलर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो साइकिलें होती है उससे हमारी शारीरिक मानसिक जो ऊर्जा शक्ति होती है उसका निर्माण होता है। और साइकिल चलाने से हमारी जो पैर की कसरत है वो भी पूरी होती है और इसे बहुत ज्यादा हमें सुकून भी मिलता है। मैडम जी,
2: तो आप साइकिल को सुकून का एक जरिया मानते हैं?
3: बिल्कुल मैम, खास करके हम जब युवा रहे हैं, बताएं आपसे, अभी भी हम युवा ही हैं और हम लोग जब स्कूले जाते हैं साइकिलों से तो बहुत ही अच्छा लगता है।
2: चलिए साइकिल चलाते रहिए, तो आपके जो युवावस्था है ये एक लंबे समय तक तो जरूर बरकरार रहेगी। संतोष जी, इसी उम्मीद के साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद करते हैं और आपने बहुत अच्छी बातें की, इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया।
3: बिल्कुल मैम, और आपके प्रसारण लगातार हम तक पहुँच रहे हैं। न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के साथ साथ DTH पर भी आपका जो कार्यक्रम जाता है ना आकाशवाणी मध्य प्रदेश का, बहुत ही अच्छा लगता है मैडम जी ऐसे कार्यक्रम को।
2: जी जी जी जी, साथ में वेव्स OTT ऐप जो है उसके भी 2 वर्ष हो गए हैं हमारे, और इस पे भी आप प्रसारण सुनिए तो आपको भी बहुत आनंद आएगा।
3: बिल्कुल मैम, और साथ में फेसबुक पर भी जो कमेंट मतलब जाते हैं आकाशवाणी भोपाल के, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं मैडम जी।
2: आप बहुत सक्रिय श्रोता लग रहे हैं हमारे संतोष जी।
3: बिल्कुल मैम, लगातार पत्रचार भी हम लोग करते थे, आकाशवाणी पदाधिकारी हैं, चाहे उनके निर्देशन में बहुत सारे कार्यक्रमों का निर्माण होता रहा है और बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का संचालन भी अभी किया जाता है।
2: अच्छा, तो एक चीज ये बताइए कि आपने कहा कि आप पत्र लिखा करते थे, तो वो लिखा करते थे को लिखा करूंगा बोलिए और लिखना शुरू कीजिए।
3: आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश तक जरूर पहुंचेगा कार्यक्रम मन भावन और कार्यक्रमों के लिए। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, नमस्कार।
2: जी जी नमस्कार।

0: हेलो,
1: जी नमस्कार,
0: नमस्कार।
1: आपका परिचय दीजिए।
0: हम रजनी सोनी बोल रहे हैं दीदी। हम बालाघाट जिला से बोल रहे थे। नहीं
1: जी, साइकिल चलाना जानती हैं?
0: नहीं नहीं
1: लेकिन साइकिल का महत्व है आपके जीवन में, साइकिल आपके लिए कितनी उपयोगी है ये बताएं।
0: अब देखो दीदी, अब हम बच्चे वाले हो गए। पहले हम पढ़ते थे तो चलाते थे, अब क्या है हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं।
1: तो बच्चों को साइकिल इनाम में दी कभी?
0: अरे अब देखो, बच्चे अपने पढ़ रहे हैं तो अपन तो उनके लिए लेते थे ना साइकिल। स्कूल जाते थे, प्राइवेट स्कूल, तो पहले क्या है बस का साधन नहीं, तो 4-5 किलोमीटर में बच्चे चलाते जाते थे।

0: हमारे तीनों बच्चे ने पढ़े हैं।
1: हाँ तो देखिए, जब हम वाहन चलाना सीखते हैं ना, तो सबसे पहले
0: अभी
1: हमें
0: तो
1: साइकिल
0: हमारा
1: सीखनी
0: बड़ा वाला
1: पड़ती है।
0: बेटा, हमारे यहाँ गाड़ी वाड़ी सब है, बाकी वो कहता है साइकिल चलाने से स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि वो साइकिल चलाने और शौक लगती है उसको, तो ऐसे व्यायाम टाइप का। हाँ तो इसलिए वो गाड़ी भी है, पर वो कहता है साइकिल से बहुत स्वस्थ रहते हैं करके, वो साइकिल भी फिर अब से फिर से खरीदे हैं। साइकिल के बच्चों ने पढ़े तो हमने उनको बेच दिया जब उन बड़े बड़े हो गए थे।
1: तो अभी दोबारा साइकिल खरीदी उन्होंने।
0: जी अब वो क्या है, थोड़ा सा बोलते हैं गाड़ी गाड़ी में अच्छा नहीं लगता है, तो साइकिल में थोड़ा सा अपना इधर उधर आसपास घर के थोड़ा सा घूम लेते हैं।
1: हाँ चलिए, तो साइकिल वो अपने व्यायाम के तौर पर ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी नमस्ते।

0: हेलो आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: आपका परिचय बता दीजिए।
0: मुन्ना सोनी गुरु नानक स्कूल के पास दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम।
1: जी बहुत स्वागत है आपका।
0: नमस्कार मैडम, कैसी हैं आप मैडम?
1: जी हम बहुत अच्छे हैं। मुन्ना सोनी जी, हम जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से साइकिल आपके लिए कितनी उपयोगी है, बताएं।
0: मैडम कम से कम 33 साल हो गए मुझे साइकिल चलाते हुए।
1: जी।
0: और आज भी जो है मैं साइकिल चलाता हूँ। तो सबसे बड़ी चीज, साइकिल चलाने से बहुत से फायदे हैं।
1: हाँ हाँ।
0: जैसे हाथ पैर में आपके लिए कभी दर्द नहीं रहेगा।
1: हाँ।
0: कमर में दर्द नहीं रहेगा।
1: हाँ।
0: और स्वास्थ्य भी अपना बहुत बढ़िया रहेगा।
1: हाँ।
0: और दूसरी चीज क्या है कि आजकल क्या है कि जरा जरा से काम के लिए बच्चे जो है बाइक से या मोटरसाइकिल से मार्केट चले जाते हैं, तो अपने लिए जो है साइकिल से आसपास के अपने काम निपटाना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल सही,
0: उसमें स्वास्थ्य भी अपना बढ़िया रहेगा।
1: जी जी जी, इसमें काफी कुछ आपकी, देखिए सांस भी आपकी अच्छी हो जाती होगी इससे, क्योंकि इसमें काफी बल लगता है।
0: बढ़िया फिट रहते हैं।
1: हाँ शारीरिक बल लगता है तो बहुत अच्छी बात है। और पैरों की कमर की तो आप बता ही रहे हैं कि इससे आपको काफी
0: पूरा दिन तरोताजा महसूस करते हैं अपने लिए हम।
1: चलिए बहुत अच्छा लगा मुन्ना सोनी जी, आपने साइकिल के इतने इतने अच्छे फायदे गिनवाए।
0: जी मैडम नमस्कार। थैंक यू मैडम।
1: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार
1: हाँ, आप कौन बोल रही मैम?
0: जी। मैं नीतिका वर्मा बोल रही हूँ।
1: हम जानकी गुप्ता हूँ, ग्राम भगवंत नगर मजला जिला टीकमगढ़।
0: जी
1: बंदे से तो राई कर रहे, 10 मिनट हो गए राई खेत के
0: हाँ
1: बंदे।
0: हाँ हो जाता है, बहुत लोग बातें करते हैं, 10:30 का इसका वक्त होता है। तो जानकी गुप्ता जी, आज हम बात करना चाहते हैं साइकिल पर। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से साइकिल आपके लिए कितनी उपयोगी है।
1: मैडम बहुत उपयोगी है, ना पेट्रोल लगना, ना डीजल लगना है, ना उसका धुआं आने, कुछ भी नहीं आने। अगर चला ले तो अपन कहीं जाते
0: अच्छा।
1: हैं साइकिल से।
0: तो आपके
1: हम
0: घर
1: स्कूल जब हम स्कूल जाते थे तो साइकिल ही से जाते थे, जब इतनी गाड़ी गाड़ी तो चलती नहीं थी।
0: हाँ, सही बात है, अधिकतम लोग तो साइकिल से ही स्कूल जाया करते थे।
1: हाँ, अब तो ऐसी गाड़ी चल गई थी, अभी स्कूटी चल गई, बच्चा स्कूटी से जाते हैं, लेकिन हम लोग तो साइकिल से जाते थे, कम से कम 6 किलोमीटर दूर। अगर साइकिल खराब भी है तो पैदल भी जाते।
0: सही बात है। तो जानकी गुप्ता जी, आज भी आपके यहाँ साइकिल है या नहीं?
1: हाँ है मैम, हमारे यहाँ साइकिल साइकिल भी है, मोटरसाइकिल भी।
0: और उसका उपयोग कौन करता है?
1: मेरे पति तो है नहीं, मेरे बच्चा है और बच्ची है।
0: अच्छा, साइकिल चलाते हैं वो लोग।
1: हाँ साइकिल, ऐसे कहीं जाते हैं साइकिल से चली जाते। लड़की पहले चलाती, 9वां में पढ़ती थी तो साइकिल से जाती थी स्कूल। हम गांव में रह रहा इस समय, तो
0: हाँ,
1: वो कम से कम काफी दिन से उसने साइकिल चलाई, तो थोड़ी बहुत चला जी, भूल सी गई भी। अब कल लगती मम्मी हम भूल गए साइकिल चला। मंदिर गई थी, हमारे साथ तो चलाती गई थी, एक लड़की के साथ गई थी, उससे दोनों जने चला के गई थी।
0: जानकी गुप्ता जी, आप अपनी बेटिया से कहिए कि वो साइकिल का अभ्यास करे, क्योंकि साइकिल चलाना, तैरना, ये कुछ ऐसी विधाएं हैं जो इंसान एक बार सीख ले तो वो भूलता नहीं है, है ना? तो बस थोड़ा सा अभ्यास करेगी तो उसको आत्मविश्वास आ जाएगा उसमें कि मैं साइकिल चला रही हूँ और मेरे से बनती है। तो
1: सही है मैम।
0: चलिए, पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत उपयोगी है साइकिल आज, क्योंकि देखिए बिना गाड़ी के तो हमारा काम हो नहीं रहा है, और पर्यावरण की मांग भी है ना? अभी 5 जून को हम पर्यावरण दिवस भी मनाएंगे। जाहिर बात है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण जो होता है वो धुएं से हो रहा
1: धुएं से होता
0: है
1: है।
0: ना? तो जहाँ संभव हो सके वहाँ हमें बचत करनी चाहिए, धुएं कम निकलें इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो सबका एक प्रयास जो है वो रहेगा, तभी ये काम सार्थक हो पाएगा।
1: हाँ मैम,
0: जी जानकी गुप्ता जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। नमस्कार।

0: हाँ नमस्ते मैडम, मैं पिंडरी जिला मंडला से सुमत रिटायर शिक्षक सुमत कुमार जैन बोल रहा हूँ मैडम।
1: आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम देख रहे हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ पर ईंधन की कमी हो रही है और वैसे भी जीवाश्म ईंधन जो है वो एक न एक दिन तो खत्म होगा ही
0: होगा, वो तो निश्चित है।
1: हाँ, तो ऐसे में जब संकट की
0: उपयोगी मैडम साइकिल से, तो बताए ना मैं कि साइकिल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। आपको अगर शुगर है या बीपी है तो साइकिल आपको बहुत रोकथाम कर देती है, और साइकिल आपकी सस्ती भी है, और साइकिल आपकी कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बढ़िया है, साइकिल से अपना स्वास्थ्य भी सुधरता है और मेंटेनेंस की भी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी प्रकार की कोई परेशानी रख रखाव से लेकर हर चीज की पूरी समस्याएं हल कर देती है मैडम।

0: जी
1: 20 साल साइकिल चलाया हूँ मैडम मैं, ऐसा था।
0: हाँ हाँ
1: और नदी पहाड़ सब थे, साइकिल सब जगह चल जाती है, नदी पहाड़ कहीं भी चला लूँ, साइकिल बहुत सुलभ है।
0: हाँ और छोटे मोटे नाले पड़े हैं तो हाथ में उठा करके भी साइकिल पार
1: हाँ
0: कर
1: हाथ में कंधे में रख
0: लेते
1: करके ले जा लूँ, चल जाती है।
0: चाह रहे थे, क्योंकि देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ ईंधन बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, तो ऐसे
1: जी
0: में
1: मेरा
0: ये
1: मेरा नाती है मैडम, ये भी बहुत साइकिल चलाता है, लीजिए इससे थोड़ा बात कर लीजिए।
0: बिल्कुल।
2: नमस्ते मैम,
0: नमस्ते, आपका नाम क्या है
2: मेरा नाम कबीर जैन है। हाँ
0: और कबीर के साइकिल चलाते हैं आप,
2: यस मैम,
0: और कैसा लगता है साइकिल चलाना?
2: अच्छा लगता है।
0: अच्छा, तो साइकिल से आप कहाँ कहाँ जाते हैं?
2: स्कूल, शॉप और साइकिलिंग पे चल जाता हूँ दोस्तों के घर।
0: और मम्मी कोई सामान लाने के लिए कहती हैं तो साइकिल से जाके जल्दी से ला के देते हैं,
2: हाँ
0: है ना? चलिए, बहुत अच्छा लगा कबीर, ये शौक हमेशा बनाए रखिए।

0: कुमार बोल रहा हूँ, मंदसौर से। हाँ भैया।
1: सुरेश जी,
0: हाँ
1: हम ये जानना चाहते थे कि भाई जो छोटे बच्चे होते हैं है ना,
0: हाँ
1: स्कूल में जो 10वीं 11वीं कर लेते हैं या फिर जब जैसे ही कॉलेज में जाते हैं तो वो जिद करने लगते हैं घर में कि हमें गाड़ी खरीद के दी जाए। देखिए, ज़रूरत के लिए अगर हम खरीद रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन एक स्टेटस की बात जब बच्चे करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग गाड़ी से आते हैं तो हम साइकिल से क्यों जाएं, भले ही उनके घर से 2-3 किलोमीटर पे ही विद्यालय है या कॉलेज है, लेकिन तब भी वो कहते हैं कि नहीं हमें गाड़ी चाहिए क्योंकि बाकी लोगों के पास गाड़ी है। तो वो तुलनात्मक दृष्टि से जब वो बोलते हैं तो वो कितना सही बोलते हैं।
0: और तुलना नहीं कर रही, अगर पास में स्कूल है तो अपन को भाई पापा पैदल चले जाओ, साइकिल से चला जाओ, मतलब
1: हाँ,
0: उनका कहना मानना चाहिए। आजकल बच्चों को भी, माता पिता का भी भाई।
1: बिल्कुल सही।
0: मेरा सुझाव ये आपसे मतलब है,
1: हाँ
0: बच्चों को माता पिता जगह कहना मानना चाहिए। पास में अगर स्कूल को बोले पैदल चले जाओ, साइकिल पे चले जाओ, साइकिल क्या है तो मतलब।
1: हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। ऐसा है ना कि साइकिल अगर आप चलाएंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, पेट्रोल से पैसे
0: स्वस्थ
1: भी
0: भी रहेंगे,
1: बचेंगे।
0: अपना खून का दौरा भी चलेगा और कसरत हो जाएगी, सुस्ती नहीं आएगी शरीर में। एक
1: और सही बात तो ये भी है ना सुरेश कुमार जी, कि आर्थिक दृष्टि से भी इस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है ना। एक हाँ, बड़ी धनराशि जो है वो घर से खर्च करनी पड़ती है
0: खर्च
1: उसे
0: करनी
1: लेने
0: पड़ती
1: के
0: है
1: लिए।
0: मतलब, और पेट्रोल अगर जहाँ गाड़ी पेट्रोल नहीं, गाड़ी वो रखनी पड़ती है। साइकिल तो अपन कहा भी पैदल भी ले आ सकते, चला भी सकते, मतलब उसका कोई चार्ज भी नहीं लगता है।
1: हाँ, चलिए
0: मेरा विचार ये दीदी क्या।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने इतने अच्छे विचार हमें दिए हैं सुरेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया।
0: हाँ धन्यवाद मैडम।

0: मैं जिला सागर तहसील बंडा से भोले लोधी बात कर रहा हूँ।
1: जी जी बहुत स्वागत है भोले लोधी जी आपका। कि बच्चे जो हैं वो आज साइकिल जब चलाते हैं तो उनकी खुशी जो है इनाम के तौर पर जब हम उन्हें देते हैं तो वो बड़े खुश रहते हैं, और लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं है ना, तो वो उनको ये लगता है कि अब हमें गाड़ी चलानी चाहिए, साइकिल नहीं चलानी चाहिए। वो देखा देखी में भी ऐसा कहते हैं। तो ये देखा देखी वाली जो बात है साइकिल ना चलाने की, वो कहाँ तक उचित है ना। तो लेकिन साइकिल जो है वो एक स्टेटस सिंबल लोग बाग बना लेते हैं कि इस हम अगर गाड़ी चला रहे हैं तो हम बहुत संपन्न और इस प्रकार से अपने आप को समझते हैं, और साइकिल चलाने को आज कई लोग जो है हीन भावना से देखते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है।
0: मैंने से साइकिल तो ठीक है, वैसे पर्यावरण से भी बच्चे माने बचा है, पेट्रोल बचता है, सही है।
1: जी
0: साइकिल का उपयोग ज्यादातर करने चाहिए। साइकिल तो बहुत अच्छी है, पहले आदमी बोलते थे साइकिल से काम होता था, बहुत अच्छा लगता था, जहाँ जहाँ जाती थी। साइकिल तो सही है मैम, लेकिन बच्चों को नहीं देना चाहिए, छोटे बच्चे हैं उनको नहीं देना चाहिए, रोड पे सड़क पे चलाना चाहिए।
1: नहीं नहीं गाड़ी नहीं देना चाहिए, साइकिल तो खैर ऐसा है कि जब बहुत छोटे रहते हैं तो वो अपने घर के सामने आसपास चलाते हैं, तो
0: हाँ।
1: नहीं हमारा तो प्रश्न खाली ये था कि जो बनावटी दिखावटी जो दुनिया है उस पे दिखाने के लिए जो बच्चे जिद करते हैं ना कि नहीं अब हम साइकिल नहीं चलाएंगे, ज़रूरत नहीं है उन्हें बड़े वाहन की, लेकिन तब भी वो जिद करके जो है वो स्कूटी और मोटरसाइकिल वगैरह खरीदने की जिद करने लगते हैं, उसकी हम बात कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भोले लोधी जी, और आप जैसे सक्रिय श्रोता जो हैं, सुधी श्रोता जो हैं।

कृतज्ञ हैं कि वो हमारे लिए इतनी अच्छे विचार देते हैं और हमारे रेडियो के साथ में हमेशा जुड़े रहना पसंद करते हैं, ये हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने बात की।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम
0: नमस्ते, परिचय दे दीजिए।
1: जी। लक्ष्मण सिंह चंदेल, ग्राम बोतराई, तहसील पथंडिया, जिला दमोह से बात कर रहा मैं। अच्छा
0: आज विश्व साइकिल दिवस है, इसी पर आज हम बात कर रहे हैं
1: मैम
0: जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि
1: जी,
0: इनाम के तौर पर कभी साइकिल मिली है, या आपने किसी को दी है, या साइकिल जब हमें कभी कोई मिल जाए कभी बतौर इनाम, है ना। कभी कभी दोस्त भी आपस में एक दूसरे से कहते थे, जब छोटे छोटे होते हैं ना, तो एक साइकिल चला रहा है, दूसरे के पास नहीं है, तो वो कहता है अच्छा मैं एक राउंड मारने के लिए मुझे दे दे, है ना। फिर वो जो खुशी मिलती है ना जब उसे मिल जाती है साइकिल, तो वो
1: देखिए मैम, ऐसा है, साइकिल तो मैम हम अभी भी चलाते
0: हाँ
1: हैं।
0: हाँ
1: जी जी बिल्कुल, और खेत पे जाते हैं तो साइकिल से ही जाते हैं मैम। और कई बार ऐसा होता है, जैसे आप बता रही हैं मैम, कुछ
0: हाँ
1: मित्र लोग भी मांग लेते, क्या बताया हमें एक राउंड लगा के आ रहे हैं,
0: हाँ हाँ
1: बाद में आपकी वापस कर दे।
0: तो वही हम कह रहे हैं कि इनाम के तौर पर भी कभी कभी हमें जब साइकिल मिलती है ना, या पहली बार जब कभी आपको साइकिल मिली होगी, तो आप कितने प्रसन्न हुए थे और क्या आपका अनुभव रहा था, ये बताइए,
1: प्रसन्न क्या
0: कुछ
1: क्या
0: याद है
1: पहली
0: तो।
1: बात तो है, जब हम मतलब सीख रहे थे चलावो मैम, तो
0: हाँ
1: हम यही विनती करते भगवान से कि हम पे साइकिल बनने लगे, हम नारियल फोड़ रहे जो बहुत बहुत मतलब बनने लगी थी। फिर कैची, पहले कैची सीख रहे थे मैम, तो
0: हाँ
1: कैची के बाद में फिर डंडा, फिर सीख सीख पे मतलब ऐसे सीख पाए थे।
0: हाँ हाँ क्योंकि

0: छोटी साइकिलें बहुत कम बनती थी, बड़ी साइकिल होती थी तो कैंची चलानी पड़ती थी क्योंकि सीट तक
1: बिल्कुल
0: तो
1: मैम बिल्कुल।
0: हाँ पैर नहीं
1: और
0: पहुंचते
1: कहीं
0: थे।
1: भी जैसे अब जगदीश रथ यात्रा हो अभी आ रही है जो मैम,
0: हाँ
1: इसके लिए हम लोग पथरिया जा रहे थे, कोई चलो कोई तीन जना चलेंगे, आपको टेबल चलाएंगे, कहीं आधी रास्ता में तुम चलाना आधे में हम चलाएंगे, बहुत
0: हाँ
1: मजा आ रहा था मैम।
0: चलिए, कितना अच्छा लगता है ना, साइकिल के पुराने दिन भी याद कर लो तो बड़ी खुशी होती है ना।
1: बिल्कुल मैम
0: चलिए लक्ष्मण सिंह चंदेल जी, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई,
1: बिल्कुल
0: और साइकिल चला करके आप यूं ही खुश रहा कीजिए।
1: मैम,
0: चलिए नमस्कार।
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी नमस्कार,
0: जी, नमस्कार
1: परिचय दे दीजिए आपका।
0: जी। मेरा नाम है देवेंद्र कुमार साहू।
1: जी
0: मैं कटनी से बोल रहा हूँ,
1: जी
0: मध्य
1: जी
0: प्रदेश कटनी से।
1: जी जी जी बहुत स्वागत है आपका।
0: मैं एक्चुअली मैम आर्मी से हूँ
1: आर्मी में हैं तो आप लोग क्या साइकिल चलाते हैं?
0: जी। साइकिलिंग करते हैं मैम।
1: अच्छा, तो साइकिल का कितना महत्व है आर्मी में?
0: साइकिलिंग एक्चुअली मैम हम लोग क्या है, जैसे ड्यूटी एरिया थोड़ा सा दूर है तो क्या है, हम लोग या तो बाइक रखते हैं या तो साइकिल वगैरह रख लेते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ
1: जी, तो देवेंद्र कुमार साहू जी ये जानना चाहेंगे कि आजकल तो बहुत एडवांस साइकिलें आने लगी हैं, तो अच्छी साइकिलें भी आ चुकी हैं, लेकिन तब भी लोगों का रुझान जो है वो साइकिल की तरफ नहीं है। तो साइकिल की
0: हाँ
1: तरफ रुझान जो लोगों का बढ़े, इसके लिए आप क्या कहेंगे?
0: आजकल क्या है, रूटीन भी लोगों का ऐसा हो गया है कि पैदल चलना नहीं चाहते, है ना।
1: जी।
0: तो अगर साइकिल से अगर जाते हैं तो बहुत ही पेसिंग करना है, थोड़ा सा दूर है 2-3 किलोमीटर, तो साइकिल से अपना काम हो
1: हाँ
0: जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। और

0: साथ साथ में हम तो ये कहते हैं कि साइकिल के प्रति रुझान यदि वो बढ़ा लें तो
1: हाँ बिल्कुल
0: व्यायाम भी होगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो बहुत अच्छा होगा।
1: व्यायाम से क्या बॉडी में फिट रहेगा,
0: हाँ, और पेट्रोल बचेगा,
1: शरीर
0: पर्यावरण की दृष्टि से
1: थोड़ा
0: बहुत अच्छा
1: एक्सरसाइज
0: है।
1: बहुत हो गई तो ये सब में कंट्रोल होगा।
0: जी, बहुत धन्यवाद देवेंद्र कुमार।

0: तो श्रोताओं, साइकिल कितनी उपयोगी है इस विषय पर श्रोताओं ने अपने विचार दिए। आज साइकिल चलाना कई लोग पसंद नहीं करते, वक्त की कमी की बात कहते हैं तो कभी दूरी की। लेकिन मित्रों, पर्यावरण की दृष्टि से आज के परिप्रेक्ष्य में साइकिल को अपनाना ज़रूरत बन गई है। आज एडवांस साइकिल मार्केट में उपलब्ध है, गियर होते हैं, उसमें बैटरी भी होती है। ये सारी सुविधाओं को यदि आप अपनाएंगे तो आपको आसानी भी रहेगी और आज के परिपेक्ष में साइकिल देश हित में साबित होगी। चाहते थे लोगों में साइकिल के प्रति जागरूकता बढ़े, तो आप कार्यक्रम समेटने की अनुमति दीजिए नीतिका वर्मा को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है इस घंटे की खास खबरों का।

0: ब्रिटेन के विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों के मंत्री यवेद कपूर दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कपूर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वो आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली, औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी सूरत में 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित की जा रही है। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि समान नागरिक संहिता को देश के 3 राज्यों ने पहले ही लागू कर दिया है। हमारी सरकार भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए गठित एक उच्च स्तरीय समिति जिला स्तर पर सभी वर्गों से उनकी राय ले रही है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां जारी है। अगले 24 घंटों के लिए 20 से अधिक जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार कहीं कहीं बिजली गिरने की भी आशंका है। और भारतीय पहलवान आज से मंगोलिया में शुरू हो रही 4 दिवसीय ओपन रैंकिंग सीरीज प्रतियोगिता में पुरुष फ्री स्टाइल, महिला कुश्ती और ग्रीको रोमन कुश्ती स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सबसे पहले सुनते हैं प्यार का मौसम फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत आरडी वर्मन का है और इस गीत को सुनना चाहा है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप बेबी आरजू जाजोरिया, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति और बाबू रेयांश ठाकुर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा। और इसी गीत को सुनना चाहा है डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन ने।

अगले गीत की फरमाइश हमें मिली है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार की। नाम है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। इसी गीत को पसंद किया है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधड़े, आरती जोंधड़े, नेपाल पैलेस सागर से ये हमारे श्रोता हैं, तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका, रॉबिन और सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा हदिया, अस्मा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुस्तावा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई और गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं बरसात की एक रात फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत आर डी बर्मन का है।

तेरे मेरे सपने इस फिल्म का गीत अब आपके लिए पेश कर रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत लिखा है नीरज ने और धुन तैयार की है SD वर्मन ने, और इस गीत को सुनना चाहा है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, और इसी गीत को पसंद किया है हुलास राम कटरे, नानेश्वरी कटरे। ये हमारे श्रोता है करियादंड बालाघाट के, और सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने लिख भेजी है हमें इस गीत की फरमाइश। तो सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद तेरे मेरे सपने फिल्म से।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आनंद बख्शी का लिखा ये गीत, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के साथ साथियों की आवाज़ है। फिल्म का नाम है जीने की राह और इस गीत को पसंद किया है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, सरोजनी और कुंती साहू। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय और दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय ने। जयबराज प्लॉट राजकोट से ये पत्र हमारे पास आया है मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मीन और प्रयागराज भट्ट का। और देवरी भाटापारा से ही इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता है गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विन वर्मा और गणेश मिस्त्री।

और कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं हम दोनों फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत साहिर लुधियानवी ने लिखा है और संगीत जयदेव का है। इस गीत को पसंद किया है बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता, बेबी रचाती और पूरा माखीजा परिवार। साथ ही साथ इसे पसंद किया है इस्लामपुर सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। और बेरड़ी से ये हमारे श्रोता ने पत्र भेजा है हुकुम करम कर, सुनीता करम कर, हार्दिक करम कर, प्राची और तनु करम कर ने। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं हम दोनों फिल्म का ये गीत।

0: पत्र द्वारा भेजी गई फरमाइश के आधार पर आज अभी श्रोता सुन रहे थे अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। आज सुनिए इसकी 9वीं कड़ी।
3: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

पिछली कड़ी में आपने सुना कि सारे का निकाह रसूल से हो जाता है। सारे और रसूल के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगती है। अपनी बेटी को नाखुश देखकर हसन बट एक दिन फाता पर बरस पड़ते हैं। इसके बाद हसन बट घर छोड़कर पास ही एक कोठरी में रहने लगते हैं। एक दिन मुश्ताक हसन बट से मिलने आता है, जहां सारे से मुलाकात के बाद उन दोनों के बीच की गलत फहमियां दूर हो जाती हैं और वे अक्सर मिलने लगते हैं। अब आगे।

0: आगे मुश्ताक, आ बड़ी देर कर दी।
1: बहुत सारे कुछ लोग मिल गए थे।
0: मुश्ताक, मुझे एक जरूरी बात करनी है।
1: हाँ हाँ बोलो, क्या बात है?
0: अब हम यहाँ नहीं मिल पाएंगे। गांव वालों को हमारे मिलने की भनक लग गई है और वे लोग हमें अलग करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
1: सारे तुम फिक्र ना करो, गांव वाले हमारा कुछ ना

0: बिगाड़ पाएंगे। जब हम एक हैं तो हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा।
1: पर मुझे बहुत डर लग रहा है मुश्ताक, अगर ये बात गांव में फैली और रसूल को पता चला तो वो तो कुछ भी कर सकता है। हमें कुछ करना चाहिए मुश्ताक।
0: अरे तुम इतनी परेशान ना हो, मैं तलाक के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रसूल के आने के बाद ही कुछ हो सकता है।
1: ठीक है, पर तब तक हमें एहतियात से काम लेना होगा ताकि गांव वाले हमारे लिए कोई परेशानी खड़ी ना कर सकें।
0: सारे, डरने की कोई बात नहीं, रसूल के आते ही हम तलाक की बात कर लेंगे। और जहां तक गांव वालों की बात है तो कुछ दिन हम नहीं मिलेंगे।
1: हाँ, यही ठीक रहेगा।
0: ठीक है सारे, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना।
1: आप भी अपना ख्याल रखना।

0: Assalamualaikum bhai.
1: Waalaikum assalam. Waalaikum assalam bhai.
0: Kya baatein ho rahi thi?
1: Are wo kuch bhi nahi, bas yun hi idhar udhar ki baatein ho rahi thi.
0: Are idhar udhar ki baatein, pata nahi chala kuch. अरे मिल की कोठी में जो हसन भट रहता है ना।
1: अरे हाँ हाँ, पर क्या हुआ हसन भट को?
0: अरे उसकी बेटी जो सारे है ना।
1: हाँ हाँ जानता हूँ उसे, बोलो तो सही।
0: अरे मुश्ताक के साथ उसका चक्कर है।
1: लाहौल विलाव कुवत। अरे मियाँ ये क्या कह रहे हो?
0: अरे सही कह रहा हूँ, वो लोग हसन भट की कोठी में मिलते हैं।
2: सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है भैया।
1: लेकिन सारे का निकाह तो रसूल के साथ हुआ है ना, अब फिर ये?
2: अरे पहले तो उसी मुश्ताक के साथ हुआ था, फिर तलाक हो गया था ना।
0: इसका मतलब है तो रसूल की बीवी ना। फिर एक औरत अपने मर्द की गैर हाजिरी में गैर मर्द से मिले, ये तो उसूल के खिलाफ है।
1: हाँ हाँ भैया बिल्कुल, अरे इससे तो हमारी बहु बेटियाँ भी बिगड़ सकती हैं।
0: हाँ, हमें कुछ करना चाहिए।
1: अरे बेगैरत औरतों को जो मर्द के रहते दूसरे मर्द को देखे उसे भी तो सजा मिलनी चाहिए।
2: हाँ लेकिन सारे ऐसा क्यों करेगी?
1: अरे जिस औरत को मर्द की हवस हो वो कुछ भी कर सकती है मियाँ।
2: हाँ लेकिन मुश्ताक उसका पहचान वाला है, उससे मिलने में क्या बुराई है? अरे हो सकता है वो लोग यूं ही मिलते रहते हो।
0: लाहौल विलाकवत। अरे मैंने तो सुना है रसूल को धोखा देकर सारे मुश्ताक के साथ नाजायज ताल्लुकात रखती है।
2: अरे तो रसूल कौन सा भला आदमी है, है कि आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं?
1: अरे मर्द चार चार निकाह करे ये जायज है, हमारे मजहब में इसे जायज बताया गया है। पर औरत के लिए अपने शोहर को छोड़ दूसरे मर्द को छूना भी गुनाह है, और अगर कोई इस पाक असूल को तोड़ता है तो उसे सजा का भागीदार होना ही पड़ेगा।
0: इस मामले में फाता व हसन भट्ट को हम सब लोगों को मिलकर समझाना चाहिए ताकि वो सारे पर लगाम कसे।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप तो बिल्कुल सही कहते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो सारे को पूरे गांव के सामने सजा दी जाएगी ताकि हमारी बहू बेटियां सबक ले सकें।
0: और भाई दूसरे गांव का आदमी हमारे गांव की बेटी के साथ रंग रैलियां मनाए, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
2: अरे पहले उसके अम्मी और अबू से तो बात करो, अगर बात सुलझ जाए तो अच्छी है, अरे बदनामी से तो बचेंगे।
1: हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक है, हम हसन भट्ट और फाता से बात करेंगे। हाँ। नहीं माने तो गांव में पंचायत बुलवाएंगे। एक औरत हमारे मजहब को नकारे ये हम नहीं सहेंगे मियाँ। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ चलो, चलो, चलो ये नहीं सहेंगे हम।

0: सुन ली ना अपनी बेटी की दास्तान, सारे गांव में थू थू हो रही है हमारी।
1: पाता, शांत रहो। लोग क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं हमारे लिए ये मायने नहीं रखता।
0: तो और क्या करोगे?

0: बेटी मिलकर।
1: तुम कुछ देर चुप नहीं रह सकती क्या? अरे हमें सोचने तो दो।
0: मेरी बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। सहरे अब मुश्ताक से कभी नहीं मिलेगी।
1: सहरे और मुश्ताक मिलते हैं या नहीं, अगर मिलते ही हैं तो वो हमारा रिश्तेदार ही है, कोई गैर तो नहीं। और तुम किन लोगों की बातों में आकर ये सब तमाशा कर रही हो?
0: तमाशा? अरे तमाशा मैं नहीं कर रही, तमाशा तुम और सारे कर रहे हो, सारा गांव हमारे नाम पर।
2: अब रहने भी दो अम्मी।
0: क्यों रहने दूं? के तू सारे गांव में मुंह काला कर आए इसलिए?
2: मैं मुश्ताक से प्यार करती हूँ।
0: सारे सारे कमबख्त लड़की, बंद कर अपनी जुबान वरना हलक से खींच कर बाहर कर लूंगी। मुझसे जुबान लड़ाती है, तेरा निकाह रसूल से हुआ है और तू अब मुश्ताक से प्यार करती है? जुबान न काट दूं तेरी।
1: ये क्या कह रही है फाता?
0: मैं जो कह रही हूँ वही सही है।
1: तो क्या गांव वाले सच बोल रहे हैं?
0: नहीं तो क्या झूठ बोलेंगे?
2: ये सच है अबू कि मैं मुश्ताक से मिलती हूँ, पर गांव वाले जैसा कह रहे हैं वो सच नहीं है।
0: हाय किस्मत फूटी मेरी जो तुझे जना बदनामी करा कर जुबान लड़ाती है।
2: जो बात है वही कह रही हूँ।
1: सारे अब तेरा निकाह रसूल से हो चुका है, पर ऐसे में तू रसूल के सिवा किसी और से मेल जोल रखे तो ये हमारे मजहब के खिलाफ है बेटा, और इससे हमारी बदनामी होगी। अगर हो सके तो तू मुश्ताक से ना मिल।
2: मुझे और मुश्ताक को मिलने से कोई नहीं रोक सकता।
1: सारे क्या तुझे अपने बूढ़े बाप पर तरस नहीं आता? अब मैं सारे गांव वालों को क्या जवाब दूं? क्या कहूं मैं उनसे कि मेरी बेटी हमारे सामने हमारे उसूलों को खाक में मिला रही है और हम कुछ भी नहीं कर सकते?
2: अब्बू अब्बू अब्बू आप परेशान मत होइए, जो होगा उसे मैं संभालूंगी।
0: अरे नामाकूल, तू तो हमें मार कर ही खुश होगी।
2: कौन किसे मार रहा है अम्मी, ये तो खूब जानती है।
0: मुझसे जुबान ना लड़ा, आखिर तू कहना क्या चाहती है? मैं बुरी हूँ और तू जो कर रही है वो सही है।
2: मुश्ताक से तलाक किसने दिलवाया मुझे? मैं आज भी मुश्ताक से प्यार करती हूँ, और जहाँ तक बात रसूल की है तो मुझे बदनामी का कोई डर नहीं। रसूल से मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती।
0: कुछ भी हो अब रसूल तेरा शौहर है।
2: रसूल को मेरी जिंदगी में जबरदस्ती धकेला गया है, और अम्मी ये सब तेरा किया धरा है, मैं रसूल को शौहर नहीं मानती।
0: अरे एक बार जो रिश्ता बन जाए वो कभी नहीं टूटता।
2: मेरा रिश्ता सिर्फ मुश्ताक से था, है और रहेगा।
1: सारे एक बार और सोच ले बेटा, अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में सोच। हम जिस समाज में रहते हैं हमें उसे जवाब देना होता है, और अगर तू रसूल के रहते मुश्ताक से अपने ताल्लुकात रखती है तो हम क्या जवाब देंगे? बोलो।
2: किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है अब्बू।
0: तुम्हें नहीं है शायद, पर समाज इन रिश्तों को नहीं मानता, और हमें तो जवाब देना ही होगा। हम इस समाज की मर्यादा को नहीं तोड़ सकते।
2: किस जवाब और किस मर्यादा की बात कर रही है अम्मी? आज जो लोग तुमसे, अप्पू से या मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मुश्ताक से रिश्ता क्यों रखती हो, तो क्या तुम्हारा समाज मेरे सवालों का जवाब देगा कि रसूल से नूरी का तलाक क्यों हुआ? मेरी इच्छा

0: के बगैर रसूल से मेरा निकाह क्यों पढ़वाया गया? मुश्ताक से मेरा तलाक धोखे से क्यों करवाया गया? रसूल जो मेरा शौहर है वो मुझे छोड़कर शहर में दूसरी औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात क्यों रखता है?
1: अरे जा, अपनी जुबान न चला। तू औरत है और औरत की मर्यादा में रह। मर्दों की बातों में दखल अंदाजी न दे। औरतों को सवाल पूछने का हक नहीं।
0: जो इंसाफ करते वक्त दोनों तरफ की बातें ना सुने उनके सामने मुझे दलील देने की कोई जरूरत नहीं है।
2: सहरे, रसूल से तेरा निकाह हुआ है, क्या तू इस रिश्ते को नहीं मानती? क्या तुझे हम पर भरोसा नहीं है? आखिर तू चाहती क्या है बेटा?
0: अबू, मैं कुछ नहीं चाहती, कुछ भी नहीं। रसूल से मेरा निकाह हुआ है, पर रसूल के लिए मैं सिर्फ एक देह हूँ, बीवी नहीं। क्योंकि रसूल के लिए तो औरत सिर्फ एक गुलाम है। मैंने मुश्ताक से प्यार किया था अबू, और आज भी मुश्ताक से ही प्यार करती हूँ।
1: तेरा तलाक हो चुका है।
0: हमारा तलाक एक धोखा था।
1: मजहब तलाक मानता है।
0: मैं उस मजहब को नहीं मानती जो इंसानी रिश्तों को भूल जाए।
1: तू औरत है और तुझसे जो कहा जाए वो ही करेगी।
0: मैं औरत हूँ इसलिए किसी मर्द की जूती बनकर रहूंगी, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी इच्छा से मुश्ताक के साथ रहूंगी, और रसूल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा।
1: सारे देख, ये अच्छा ना होगा। तेरा निकाह रसूल से करने में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा था, ये शायद तू नहीं जानती।
0: तकलीफ?
1: तू ऐसे नहीं मानेगी। रसूल को आने दे, वही समझाएगा तुझे।
0: हाँ हाँ, आने दो रसूल को, मुझे अब डर नहीं है किसी का। अब मैं जान गई हूँ कि औरों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश करती रही है तू।
1: मेरे घर में रहकर मुझे ही धौंस दिखाती है।
2: फाता, बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। हमें इस मसले पर सोच विचार करना चाहिए। अगर सारे नहीं चाहती कि वो रसूल के साथ रहे, तो हमें भी उस पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। पहले भी एक बार हम सारे के साथ गलती कर चुके हैं। अब
1: अम्मा, तुम चुप रहो। आज तक किसी का भला चाहा है तुमने? तुम्हारी बेटी सारे गांव में मुंह काला किए फिर रही है। शौहर रहते मुश्ताक से मिलती जुलती है, और तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। हाय,
2: मैं तरफदारी नहीं कर रहा। अगर सारे चाहती है कि वो मुश्ताक के साथ रहे, तो उसे...
1: या खुदा, मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा, और इस घर में तो कभी नहीं। मैं ऐसा हरगिज ना होने दूंगी।
0: तो मैं ये घर छोड़ दूंगी।
1: धमकी देती है मुझे, अपनी माँ को।
0: अम्मी, अगर तू यही चाहती है तो यही सही, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जब कहो तब मैं ये घर छोड़ सकती हूँ।
2: सारे, अंदर जा, हमें सोचने दे कि हम क्या करें।
1: जरा देखो इस बदजात लड़की की हिम्मत तो देखो।
2: सारे, तू अंदर जा। फाता, ये ना समझ कि वो अभी भी बच्ची है। अच्छे बुरे की पहचान है उसे। हमने उसकी जिंदगी में पहले ही जहर घोल रखा है। हमें ही संभालना होगा उसे।
1: खुदा, तुम बाप बेटी पागल हो गए हो। बेटी की जिद के सामने तुम झुक सकते हो, मैं नहीं।
2: अरे, हमें सारे की खुशी के बारे में सोचना है, उसके भले के लिए सोचना है। समाज अपनी जगह है और वो
1: और क्या।

0: अपनी बेटी को उस मुश्ताक के पास भेज दोगे क्या? रसूल को क्या जवाब दोगे?
1: आने दो रसूल को, फिर बात करते हैं। अरे अभी तो तसल्ली से रहना होगा हमें।

0: आ गए रसूल, आओ बैठो यहाँ।
1: फाता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
0: क्या सुन रहा है?
1: सारे के बारे में लोग जो कह रहे हैं, क्या वो सच है?
0: अब तुमसे क्या छुपाना बेटा?
1: फाता, साफ साफ कहो, क्या ये सच है?
0: हाँ, तुम्हारे जाने के बाद ही सारे मुश्ताक से मिलती रही है।
1: तो तुमने उसे रोका नहीं?
0: रोका था, पर पहले तो मुझे इधर उधर की सुना देती थी, पर जब बात बढ़ गई और पूरे गांव को पता चल गया तो फिर
1: क्या? अरे, ऐसी औरत के हाथ पैर तोड़कर घर में बंद कर देना चाहिए।
0: सही कहते हो रसूल, पर मैं तो लाचार हो गई हूँ। अब तुम आ गए हो तो अब तुम ही संभालो उसे।
1: ठीक है, सारे कहाँ हैं? जरा बुलाओ उसे।
0: घर में ही है, पर बेटा जरा समझा उसे कि इस तरह की हरकत ना करे, और तू भी ध्यान दिया कर उसकी तरफ।
1: ठीक है।
0: औरत को एक बार प्यार से देखेगा ना तो तेरी गुलामी को तैयार हो जाएगी।
1: फाता, मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, दो पैसे जोड़ता हूँ, अपने मन से खर्च करता हूँ। अरे, सारे जैसी कई लड़कियां मेरे जूतों में पड़ी रहती हैं। अरे, वो तो तुम्हारी बातों में आकर निकाह को हाँ कर दी थी, वरना मुझे क्या पड़ी थी सारे से निकाह करने की। पर जब निकाह हो ही गया तो उसे वही करना होगा जो मैं कहूंगा, और जब मैं नहीं रहता तो तू क्या करती है? अरे, मेरे से इतने पैसे लेती है किस लिए? अरे, तुझसे अपनी बेटी भी नहीं संभलती?
0: अरे समझाया था, पर
1: अरे, तुम पर जितने पैसे खर्चे हैं मैंने, उतने में 10 साराय को अपने साथ घुमा चुका होता। पर तुझ पर तरस आ जाता है सो मन मार लेता हूँ, पर अब पानी सर से ऊंचा जा चुका है। सारे मेरी बीबी है और उसे मेरे कहे पर चलना होगा।
0: हाँ, वही तो मैं समझाती हूँ उसे, पर मेरी सुने तब ना।
1: बुला उसे, मैं समझाता हूँ।
0: सारे
2: आई अम्मी।
1: क्योरी, मेरे जाते ही तेरे चेहरे पर रौनक आ जाती है और मेरे सामने ये मनहूस चेहरा लेकर आ जाती है।
2: हुआ क्या है?
1: जो बात पूरे गांव को पता है, जो बात अभी अभी फाता ने बताई है, क्या वो बात तुझे मालूम नहीं? हाँ, बोल, बोलती क्यों नहीं? मैं ही बताता हूँ तुझे।
2: रसूल, तू अब ऐसा नहीं कर सकता।
1: तो तू मुझे समझेगी कि क्या करना है और क्या नहीं है? अभी बताता हूँ तुझे। औरत का मजहब होता है शोहर की सेवा करना, उसके कहे को मानना। अगर मर्द घर से बाहर रहे तो उसका इंतजार करना, और तू मेरे ना रहने पर उस मुश्ताक के साथ ऐश करती थी।
0: अरे सारे बेहोश हो गई। अभी छोड़ दे, अब अकल ठिकाने आ जाएगी।
3: अरे, ये शोर कैसा है? अरे, सारे को क्या हुआ है? क्या हुआ सारे बेटा?
1: अरे कुछ नहीं, अब इसकी अकल ठिकाने आ गई।
3: सारे, उठ मेरी बच्ची, सारे।
0: अरे रहने दो, बड़े बाप बनते हो, तुम्हारी नाक के तले ही हमारी बदनामी करती रही और अब प्यार जता रहे हो।
3: अरे, तुम लोगों ने मिलकर मारा है सारे को। फाता, तू माँ नहीं है। सारे बेहोश हो गई और तुम देखती रही।
1: अरे, अब तुम भी अपना रोना

0: सारे
1: अबू
0: सारे बेटा तुम ठीक तो हो?
1: हाँ अबू, अबू मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है?
0: बेटा वक्त के हाथों में हम सब कठपुतलियां हैं, वक्त जो करेगा हमें वही देखना है।
1: पर वक्त को बदला तो जा सकता है अब्बू।
0: नहीं मेरी बच्ची, नहीं, वक्त हमारी नियति बनाता है और उसे बदलना नामुमकिन है।
1: तो क्या मुश्ताक से मेरी मुलाकात अब कभी नहीं हो सकेगी?
0: वक्त ने चाहा तो मुश्ताक से कोई अलग नहीं कर सकता तुझे।
1: अब्बू आप तो मेरे साथ है ना?
0: हाँ सारे बेटे, अगर तेरी खुशी इसी में है तो यही सही, मैं तेरे साथ हूँ।
1: रसूल के साथ तलाक हो जाने के बाद ही मैं मुश्ताक के साथ रह सकती हूँ अब्बू।
0: वक्त ने चाहा तो ऐसा ही होगा, पर पहले तू ठीक हो जा, उसके बाद सोचा जाएगा।
1: अब्बू, अब्बू हमें तलाक के बारे में मुश्ताक से बात करनी होगी।
0: तू आराम कर, हम बात कर लेंगे, और खुदा ने चाहा तो तुम्हारी मुराद जरूर पूरी होगी।
1: अब्बू मेरी वजह से आपको भी परेशानी हो रही है ना?
0: अरे पगली, औलाद की खुशी तो माँ बाप की खुशी होती है, उसमें तकलीफ कैसी उठानी? तू ऐसा ना सोच कि तेरी मदद करने में मुझे तकलीफ होगी। तू फिक्र मत कर बेटी, अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। मुश्ताक तलाक के लिए जरूरी बातें पता कर रहा है।
1: पर अब्बू क्या रसूल मानेगा?

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकियां की नौवीं कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीत दिया था मोहनलाल ने, गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जितेंद्र, लेखक अक्रम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे नीलम, लोकेश, सुप्रिया, हरीश और ललित। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति से मुलाकात की। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। शशि कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपये से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और सूरत में 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की खोज और संवर्धन को नई गति देने के उद्देश्य से हर जिले में फीडर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कल एक बैठक के दौरान अधिकारियों एवं खेल प्रशिक्षकों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं मौसम की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां जारी हैं। अगले 24 घंटों के लिए 20 से अधिक जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। और खेलों की खबर में सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

नमस्कार बहनो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम महिला सभा में। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी सखी अमृत। बहनों, हमें पता है कि आप इस वक्त इस गर्मी में घर में कूलर एसी की ठंडक में रहना ही पसंद करते हैं, तो आप इस वक्त घर पर ही आ जाइए अपने रेडियो सेट के नज़दीक, क्योंकि हम आ गए हैं आपका अपना कार्यक्रम महिला सभा लेकर। बहनों, गर्मी की छुट्टियाँ आपके साथ इस वक्त थोड़ी सी व्यस्तता भरी हो सकती हैं। बच्चों की घर में धमा चौकड़ी तो चल ही रही होगी और साथ ही आप व्यस्त होंगी उनके ठंडक भरे पेय बनाने में। साथ ही उनको समझाइश भी चल रही होगी कि तेज़ गर्मी से एकदम ठंडक में ना आएं और ना ही बाहर से एकदम ठंडा पानी भी ना पिएं। जहाँ तक हो सके तेज़ धूप में बाहर निकलने से बचें। बाहर जाने से पहले लू से बचने के लिए दादी नानी का नुस्खा ज़रूर अपना लें, यानी निकलने से पहले पेट भर कर पानी पीकर निकलें और फिर अपना मुंह कान बांध कर निकलें। ऐसे छोटे छोटे उपाय हमें लू से बचा सकते हैं। बहनों, वैसे जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो अपनों के साथ रिश्ते मजबूत करने का भी सबसे सही समय होता है, क्योंकि बाकी पूरे समय कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी कोचिंग, तो कभी हमारे कुछ ज़रूरी काम होते ही हैं। पहले हम लोग नानी के घर जाने के लिए छुट्टियों का इंतज़ार करते थे और अब ज़्यादातर एकल परिवार होने से बच्चे अपनों से ही दूर हो जाते हैं, तो कुछ समय ऐसा ज़रूर निर्धारित करें कि हमें अपनों का साथ मिल सके। इसके अलावा कई लोग घूमने भी जाते हैं, वहाँ की जानकारी लेते हैं और बेहतर समय परिवार के साथ बिताते हैं, तो कुछ लोग अपनी रुचि, अपने हुनर को और अधिक अच्छे तरीके से सीखने में समय बिताते हैं जो भविष्य में काम आ सके। कुछ रत्नात्मक शौक पूरे करके अपने समय का सदुपयोग भी करते हैं। बहनों, बातें आपसे और भी करेंगे, उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

बहनों, ये तो आप भी मानती ही होंगी कि छोटे बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं। हम उन्हें जिस रूप में, जिस आकार में ढाल दें, वही रूप बस ले लेते हैं। हम चाहें तो उन्हें बचपन से ही सुसंस्कार से सज्जित कर दें, या फिर उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दें। उनके सामने लड़ाई झगड़ा करके या फिर अपशब्दों का उपयोग करके उनके मन में कुंठा भर दें। जब घर में, समाज में बच्चे अगर इस तरह का व्यवहार देखते हैं, तो ही उनके मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब देशों में युद्ध की स्थिति निर्मित होती है, तो इसका प्रभाव देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति पर तो पड़ता ही है, साथ ही जनहानि भी होती है। जाने कितने ही लोग बेघर हो जाते हैं, कई लोगों का अपनों का साथ भी छूट जाता है। इस स्थिति में सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं छोटे निर्दोष मासूम बच्चे, जो इन सभी बातों से बेखबर होते हैं। जो उम्र उनके माता पिता पर निर्भर रहने की होती है,

उम्र में वो बेघर हो जाते हैं। तो इस समस्या के समाधान के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। इसकी स्थापना 19 अगस्त 1982 को हुई थी। अपनी 31वीं पूर्ण बैठक में अपने पुनः शुरू हुए 7वें आपातकालीन विशेष सत्र में फिलिस्तीन के मुद्दे पर विचार करते हुए इसराइल के आक्रामक कृत्यों के शिकार निर्दोष फिलिस्तीनी और लेबनानी बच्चों की बड़ी संख्या से स्तब्ध होकर हर साल 4 जून को आक्रामकता के निर्दोष बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार बच्चों द्वारा झेली गई पीड़ा को स्वीकार करना है। ये दिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। आखिर उन्हें भी तो एक स्वस्थ अच्छा जीवन मिल सके, इसके लिए एकजुट होकर उन्हें आगे बढ़ाने का एक प्रयास ही तो है ये। बहनों, ये आखिर ये मासूम बच्चे अपनों से जब दूर होते हैं तो उनकी याद उनके जहन में ज़रूर होती है। उस समय, खासकर युद्ध के समय, कुछ भयानक दृश्य उनके मानसिक पटल पर गहरी छाप भी छोड़ देते हैं, जिससे उनका व्यवहार भी प्रभावित हो सकता है। और बहनों, मानसिक रूप से प्रभावित ये बच्चे छोटी छोटी चीज़ों से या कुछ भी युद्ध जैसी स्थिति निर्मित होने पर मानसिक रोग से भी पीड़ित हो सकते हैं। इस स्थिति में दवा के साथ उन्हें भावनात्मक सुरक्षा की भी ज़रूरत होती है। ऐसी ही स्थितियों से निपटने के लिए कई सामाजिक संस्थाएं आगे आती हैं और उन्हें न केवल आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देती हैं, बल्कि उसके साथ साथ भावनात्मक रूप से भी उन्हें मजबूत बनाती हैं। इस दिशा में ये आक्रमण से पीड़ित बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आखिर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, थोड़ा सा सहारा, भावनात्मक लगाव उन्हें संभाल लेता है और आगे बढ़ने में मदद करता है, ताकि उनका शारीरिक, मानसिक विकास हो सके और आर्थिक रूप से भी ये सक्षम हो सकें। आखिर मासूम बच्चे मन के तो सच्चे होते ही हैं, जल्द ही संभल भी जाते हैं।

0: बहनों, हम सभी की चाहत होती है कि मन प्रसन्न रहे, हम आप सदा मुस्कुराते रहें। कभी कभी हमें किसी की मुस्कान बहुत ही प्यारी लगती है। अगर हमारे दांत स्वस्थ हों, सुंदर हों, तो हम खुलकर हंसते भी हैं। कई बार हम दांतों के रोग को नज़रअंदाज कर देते हैं और तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है। दांतों का ही एक रोग है पायरिया। आज हम स्वास्थ्य भेंटवार्ता में जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए, दांतों में होने वाले रोग पायरिया, इस विषय पर विस्तृत जानकारी दी है डॉक्टर अश्विनी कुमार त्रिवेदी ने और उनसे बातचीत की है हमारी सखी संयोगिता ने।
1: श्रोता बहनों, मुस्कुराता चेहरा हर किसी की चाहत होती है। उस मुस्कुराहट के पीछे मोती जैसे दांत सोने पे सुहागा जैसा काम करते हैं, पर हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी ये चाहत पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि उनके दांतों में किसी न किसी तरह की समस्या होती है, पीलापन होता है या किसी प्रकार का रोग होता है। दांतों में होने वाले रोग पायरिया के बारे में आज हम जानकारी लेकर आए हैं। हमारे साथ हैं दंत चिकित्सक डॉक्टर अश्विनी कुमार त्रिवेदी, जो हमें दांतों में होने वाले रोग पायरिया के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दांतों में होने वाला पायरिया रोग है क्या?
2: देखिए, पायरिया रोग तो जो है ये मुख्यतः जो दांतों में गंदगी रहती है, जिसे कि हम माने अपने डेंटिस्ट्री की भाषा में प्लाक सरफेस या टाटर या कैलकुलस कहते हैं, और आम भाषा में इसको अपन पपड़ी का बोल देते हैं, कि जो अन्य के कण हैं बारीक बारीक, ये दांत और मसूड़े के बीच में जमा हो जाते हैं, जिसके कारण कि ये रोग होता है
1: जी।
2: इस रोग में पहले तो हल्की फुल्की तकलीफ होती है, पेशेंट को ब्रश करने पर खून आता है, और थोड़ा सा अगर ये रोग बढ़ जाता है तो मुँह से बास आने लगती है, ठीक है, और लेट स्टेज में पूरे मसूड़े पिलपिले टाइप के हो जाते हैं, और इससे मवाद निकलने लगता है, और ये मवाद पूरा अपने मुंह के द्वारा पेट में जाता है, पेट के द्वारा अपने पूरे शरीर में फैलता है, जिससे कि अपना जो शरीर है ये डल टाइप का हो जाता है, और अन्य फुर्तीला जिसे बोलते हैं कि शरीर में फुर्ती नहीं रहती है, आलस बना रहता है, आदमी चिड़चिड़ापन रहता है, तो इसलिए ये रोग का इलाज होना अति आवश्यक है।
1: मतलब दांतों का जो पायरिया रोग है केवल दांतों तक ही सीमित नहीं है, ये दांतों के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल
2: बिल्कुल
1: सकता है।
2: जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं कि जैसे कई लोगों को डायबिटीज रहती है
1: जी।
2: अगर डायबिटीज किसी के उन डायबिटिक पेशेंट को अगर पायरिया रोग है
1: जी।
2: तो उनकी डायबिटीज भी दवाई लेने के बाद भी कंट्रोल में नहीं रहती। तो जैसे कई मरीज बोलते हैं, साहब हम तो दवाई लेते हैं, पैदल रोज चलते हैं, खान पान का परहेज रखते हैं, फिर भी हमारी शुगर कंट्रोल नहीं है। उसके लिए अगर किसी को पायरिया रोग है तो उसका इलाज कराना अति आवश्यक है, तभी उसकी डायबिटीज भी कंट्रोल हो पाएगी।
1: मतलब साधारण रूप से हम दांतों की इस समस्या को ना ले,
2: हाँ,
1: जिस तरह से आप बता
2: रहे
1: हैं
2: बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या है कि इससे देखिए, एक तो पेट की बीमारी हो सकती है, डायबिटीज का भी फर्क पड़ सकता है, और कोई भी खराब चीज अगर शरीर में जा रही है, पस अगर शरीर में जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो कोई ना कोई तो रोग उत्पन्न करेगा शरीर में अंदर।
1: शुरुआती लक्षण के बारे में अगर हम जानना चाहें तो किस तरह
2: शुरुआती लक्षण, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रश करने पे खून आना, मुंह से बास आना, मवाद निकलना
1: जी,
2: ये सब लक्षण है पायरिया रोग के।
1: तो कई बार ये होता है डॉक्टर साहब कि हम जैसे ब्रश कर रहे हैं तो एक आध बार मतलब दांतों से ब्लड हमें दिखाई देता है, फिर वो बंद हो जाता है, फिर हम करते हैं तो फिर कभी दांत में दर्द होता है, तो क्या ये भी पायरिया के अंतर्गत आता है?
2: पायरिया, क्योंकि जब ब्रश करने में ब्लड जो आना, ये पायरिया रोग का ही लक्षण है। ये
1: मतलब हमें चिकित्सक के पास जाना,
2: जाके इसका इलाज कराना चाहिए। इसका जो इलाज है, अब मैं आपको वो बताता हूँ कि इलाज के लिए जैसे कि हम लोग सिंपल जो है, पहले अगर कम स्टेज में रोग है, जैसे सपोज करिए कि ब्रश करने पे खून बह रहा है, तो उस अवस्था में सिर्फ दांतों के अल्ट्रासोनिक स्केलर्स के द्वारा सफाई करके इस रोग को ठीक किया जा सकता है। और थोड़ा सा अगर ये रोग बढ़ गया है, जिसमें कि मवाद आने लगी है, मुंह से बास आने लगी है, तो उसमें हम लोग मसूड़ों की सर्जरी करते हैं, फ्लैप सर्जरी है, जिंजाइबोप्लास्टी है, जिंजिवेक्टमी है, मसूड़ों के अलग अलग प्रकार की सर्जरी रहती है, वो करते हैं। और जो आजकल लेटेस्ट कर रहे हैं वो मैं जो करता हूँ वो डेंटल लेजर के द्वारा इस रोग को खत्म करता हूँ। जो मसूड़ों की सर्जरी मैनुअली करते थे, तो वो आजकल लेजर के द्वारा हम करने लगे।
1: मतलब ये सुविधा आज हमारे पास उपलब्ध है,
2: जबलपुर शहर में है उपलब्ध, ये
1: कि लेजर के माध्यम से भी पायरिया का इलाज,
2: उसका जो रिजल्ट है इतना अच्छा है कि ये रोग बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है।
1: मतलब लेजर के माध्यम से भी आजकल पायरिया का इलाज हो सकता है।
2: जी,
1: तो ये किसी तरह की घबराहट हमारे सुनने वाले अपने मन में ना रखें कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं।
2: लेजर का एडवांटेज भी बता देता हूँ मैं आपको कि जैसे मैनुअल सर्जरी करते हैं, उसमें इंजेक्शन लगा के शून्य करा जाता है, मसूड़ों को खोल के टांके लगाए जाते हैं, हैवी दवाइयाँ दी जाती हैं। लेज़र में ये फ़ायदा है कि शून्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पेशेंट को करते समय कोई तकलीफ़ नहीं होती है, बाद में बहुत हैवी मेडिसिंस की भी आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये थोड़े से फायदे हैं लेज़र के,
1: ये बेनिफिट हम लेकर चलते हैं अपने साथ में। अच्छा, ये पायरिया रोग क्या उम्र का भी इस पर कोई फर्क पड़ता है? जैसे छोटे बच्चे हैं क्या उनको भी हो सकता है, या एक उम्र पार करने के बाद ही पायरिया के लक्षण पाए जाते हैं?
2: देखिए, ये रोग तो किसी को भी हो सकता है। बाकी जो उम्र की जहाँ तक आपने बात करी, तो ये जो रोग है ये 12-13 साल के बाद ही डेवलप होता है। जब पूरे बच्चों के पक्के दांत आ जाते हैं तभी ये रोग डेवलप होता है और लेट स्टेज में, अन्य 40-45 के बाद में ये इसके लक्षण ज्यादा देखने को मिलते हैं मरीजों में।
1: जी जी, तो मतलब उम्र का भी फर्क पड़ता है, मतलब छोटे बच्चों में ही नहीं होता है, 12-18 जैसे आपने बताया।
2: हाँ, 18 मतलब 14-15 साल के बाद से लेके 40-45 साल की एज में ज्यादा मिलते हैं। और ये जो रोग है गाँव वालों में, जो गांव के ग्रामीण क्षेत्र के पेशेंट हैं उनमें ज़्यादा रहता है, शहर के जो पेशेंट्स हैं उनमें ये अपेक्षाकृत कम रहता है ये रोग। ये
1: अच्छा, एक बात हम और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये रोग ज़्यादा देखा गया है, तो किस वजह से ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा शिकार होते हैं? क्या वो जो परंपरागत दातून करते हैं उस वजह से है, या शहरी लोग हम जो करते हैं वो ब्रश लेते हैं इस तरह से?
2: दातून करना बहुत अच्छा है काम, दातून के लिए तो बिल्कुल भी, दातून तो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है।
1: जी,
2: बाकी ये जो शहरी लोग को जैसे मैंने बताया कम होता है, क्योंकि अपन पेस्ट और ब्रश करते हैं, तो जो अन्य के कण हैं वो दांत और मसूड़े के बीच में नहीं जम पाते हैं। गांव वाले जो है सिर्फ दतून करते हैं और ये और अंगुली से मंजन कर लेते हैं।
1: जी जी,
2: अगर वो ब्रश का उपयोग करें साथ में, तो फिर ये उनका जो मैल जो जमता है, जो अन्य के कण जमा हो जाते हैं, वो जमा नहीं होंगे।
1: नहीं, तो धारणा तो ये भी है सर कि हम अगर ब्रश करते हैं तो दांतों में होल ज्यादा होता है ब्रश से।
2: नहीं, होल नहीं होते दांत, क्या है कि किसी भी चीज को अपन ज्यादा घिसेंगे तो स्वाभाविक है कि वो चीज घिसेगी। ब्रश ऐसा होना चाहिए कि जो अन्य के कण फंसे हैं वो दांत और मसूड़े साफ हो जाए। ब्रश ऐसा नहीं होना चाहिए कि दांत मोती समान चमकते रहे अपने चमकाने के उद्देश्य से,
1: तो नुकसान नहीं हो दांतों को इस तरह।
2: 2-4 मिनट तक ब्रश करें वो ज्यादा अच्छा है अपने लिए।
1: किस तरह की सावधानियां रखें कि दांतों में पायरिया रोग ना हो?
2: सावधानी जो है, जो मुख्य है सावधानी, वो साफ सफाई है। जैसे कि अपन सोचते हैं कि सुबह और शाम को ब्रश कर लिए तो अपने दांत स्वच्छ रहेंगे, अपन को रोग नहीं होगा मुंह का, ये बिल्कुल धारणा गलत है। मेरा ये कहना है कि अगर अपन कुछ भी चीज खाते हैं, दिन में अपन 10 बार कोई भी चीज खाते हैं या पीते हैं, उसके बाद सादे पानी से कुल्ला बहुत अच्छे से होना चाहिए, जिससे कि जो अन्य के कण जो फंसे हैं दांत और मसूड़े के बीच में, या कोई चीज पिए तो उसकी जो लेयर अपने मुंह के अंदर या दांतों के मसूड़ों के ऊपर जम गई है वो पूरी धुल जाना चाहिए, और सुबह और रात को अच्छे से ब्रश करके सोएं, और कुछ भी चीज खाएं पिएं उसके बाद कुल्ला बहुत अच्छे से करें, हरी सब्जी फल इनका उपयोग करें, जो मीठी चीजें हैं चॉकलेट्स वगैरह हैं इनका उपयोग ना करें, जिससे कि इस रोग से बचा जा सकता है। और जो बैड हैबिट्स हैं बीड़ी तम्बाकू सिगरेट, इसका भी उपयोग नहीं करना चाहिए,
1: ये भी मतलब खतरनाक
2: सब कारण है, ये रोग के कारण है ये सब।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैंने अभी सुन रही थी स्वास्थ्य भेंट वार्ता, दांतों में होने वाला रोग पायरिया, इस विषय पर डॉक्टर अश्विनी कुमार त्रिवेदी से संयोगिता की बातचीत। बहनों, एक बार फिर हम गर्मी की छुट्टी पर आते हैं, तो क्यों ना एक बार कुछ अपनों से और

बच्चों से अलग करवाया जाए तो बच्चों की पूरी छुट्टी व्यस्त रखना भी ज़रूरी है, और व्यस्तता भी ऐसी कि छुट्टियां सार्थक हो जाएं। वो जो भी सीख रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जहां भी घूमने गए हैं या घर पर ही हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया है अपनी पूरी छुट्टी में, उसके लिए उन्हें एक डायरी दे दी जाए और उनसे कहें कि हर दिन अपना अनुभव इसमें लिखें, भले ही 4 लाइन में लिखें या 6 लाइन में। इससे आजकल जो बच्चे कॉपी किताबों से पढ़ने के शौक को खत्म हो रहा है वो विकसित होगा, और उन्हें बताएं अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके थोड़ा सा लिखें, और हर रोज़ हम उन्हें कुछ नए शब्दों का प्रयोग भी बताएं, जिससे उनका भाषा सुधार होगा, शब्दकोश में वृद्धि होगी और उनकी राइटिंग में भी सुधार होगा, लेखन में छोटी छोटी गलतियों का पता भी चलेगा। और अंत में उन्हें अपनी छुट्टियों का सार लिखने को भी कहें। निश्चित रूप से हम उसे हर दिन देखते भी रहें, इससे उनके विचार, उनके भाव हमें पता चलेंगे। इस बारे में आप हमें भी ज़रूर बताएं। तो बहनों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, और दीजिए अनुमति आपकी अपनी सखी अमृत को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: हेमंत देवलेकर,
1: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक हैं, समाचार हैं, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से देश में समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाए। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है। कलाकार हैं संगीता उपाध्याय। पहले सुनते हैं इनसे ईसुरी चौघड़िया।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे संगीता उपाध्याय के गाए लोकगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति है। कलाकार हैं नंद कुमार जैन। पहले सुनते हैं इनका गाया ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये वक्त है छोटे से अंतराल का। आपको एक सूचना दे दें, आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर या कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। ये कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। यह सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों अथवा आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी, उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल bhopal@prasarbharti.gov.in एवं hopair@gmail.com पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।

एक आवाज जिसने बदल दिया वक्त का सफर, एक सुर जिसने जोड़े हर दिल से रिश्ते, और अब पूरा कर चुका है अपना गौरवशाली 90 साल का सफर। हाँ श्रोताओं, यह है आपका अपना आकाशवाणी। 90 वर्षों से हर दिल की आवाज।

आप सुन रहे हैं आपकी आकाशवाणी, ये प्रसारण हो रहा है आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत अनपढ़ फिल्म से हमने लिया है, जिसे गाया लता मंगेशकर ने।

कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने गाया है, साहिल लुधियानवी की शब्द रचना संगीत जयदेव का। इस गीत को हमने लिया हम दोनों फिल्म से।

हम दोनों फिल्में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को। गीत लिखा था साहिल लुधियानवी ने, संगीत जयदेव का था। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम कुछ और फिल्मी नगमे आपको सुनवाएंगे आज दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश, सुनना ना भूलें।

0: मीडियम वेव 180.32 मीटर्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 2:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक।

0: यार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। 5 दिन की भारत यात्रा पर आई रोड्रिगेज के साथ विदेश, अर्थव्यवस्था और विज्ञान मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी है। इस बातचीत में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, फार्मास्यूटिकल और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। भारतीय सार्वजनिक उपक्रम पहले से ही वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी शाम को दमन में करीब 3,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें स्वास्थ्य, पर्यटन और हवाई संपर्क से जुड़ी योजनाएँ शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को पश्चिम बंगाल जाएंगे और रुकी हुई रेल परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। वे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबान सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर रायसेन जिले की प्रेमा मेहरा ने अपनी कहानी साझा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि
1: मैं सन 2017 से ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी। आजीविका मिशन से जुड़ने से पहले मेरे घर की परिस्थिति बहुत ही बेकार थी, मगर आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद मैंने अपनी बचत जमा करना सीखा। इसके अलावा ग्रामीण आजीविका मिशन ने मुझे भी काम दिया, मैंने सीआरपी का काम करा। इसके अलावा मैं बैंक सखी का काम भी करती थी और आज मैं प्रधान एनजीओ में बाड़ी ब्लॉक में आजीविका सहायक के रूप में कार्य कर रही हूँ। मेरी मासिक आय 18,000 रुपये है और मैं खुश होकर कह सकती हूँ कि मैं एक लखपति दीदी हूँ।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल कर लिया है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक पहली बार ईवी से यात्रा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के संदेश को अमल में लाते हुए वे अब भोपाल में नियमित रूप से इलेक्ट्रिक वाहन से ही चलेंगे। उन्होंने कहा कि ईवी से वायु प्रदूषण नहीं होता, रख रखाव सस्ता है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ भविष्य की दिशा में एक अहम कदम है। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के पंजीयन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया है। 3,800 करोड़ रुपये का यह पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। प्रदेश में अब तक 68 लाख से अधिक अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं और लगभग 98% ड्रोन सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वागदेवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने की तैयारी एक कदम और आगे बढ़ गई है। कल विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब यह राज्यपाल मंगूभाई पटेल के पास भेज दिया गया है। हालांकि कार्य परिषद सदस्य डॉक्टर ताहिरा अब्बासी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह नाम स्वतंत्रता सेनानी बरकतुल्ला भोपाली की स्मृति से जुड़ा है और इसे बदला जाना उचित नहीं है। नाम परिवर्तन के लिए अभी विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित कराना और राज्यपाल की मंजूरी लेना जरूरी होगा। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। आज सुबह भोपाल, रायसेन, सीहोर और नर्मदापुरम में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 39 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि नीमच, श्योपुर, मुरैना, टीकमगढ़ और छतरपुर में ओलावृष्टि की चेतावनी भी है। वहीं कल रतलाम 42 डिग्री के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। मानसून इस बार सामान्य से देरी से यानी 20 जून के बाद प्रदेश में दाखिल हो सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच के ग्राम खातीखेड़ा में आयोजित जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में कलेक्टर ने ग्रामीणों से रूबरू होकर समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को मुख्य आयोजन गैरिसन ग्राउंड ग्वारीघाट स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज मैदान पर किया जाएगा। शिवपुरी में इफको कंपनी की डीएपी रैक के माध्यम से 1,370 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध हुई है, जिसका ई विकास प्रणाली से वितरण किया जाएगा। आगरमालवा में कल 2 नवीन वाहनों को पुलिस के बेड़े में शामिल किया गया। इस मौके पर एसपी दिलीप कुमार सोनी ने कहा कि इससे जिले में नियमित गश्त, विशेष अभियान एवं आपात स्थितियों में पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत होगी। झाबुआ में जलगंगा संवर्धन अभियान के दूसरे चरण में जल स्रोत सेवा समागम के तहत प्रस्फुटन ग्राम भोयरा में सुरक्षित जल समृद्ध कल विषय पर जल चौपाल का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
2: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जाँच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरल में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरल और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरल से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
3: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहुखेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
4: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 23,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का नमस्कार। आपकी पसंद का पहला गीत हम लेकर हाजिर हैं हीरो पंती फिल्म से। मुस्तफा जहीद ने इस फिल्म को गाया है। कौशर मुनीर की शब्द रचना, संगीत मुस्तफा जहीद का। सुना चाहा है बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने। पटेल नगर मलोट पंजाब से पत्राया रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया का।

अगला गीत हमने लिया सत्यमेव जयते फिल्म से। इसे सुनना चाहा है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी दुबिहा नेवादा गाजीपुर से पतराया प्रतीक राय, रोशनी प्रांजल का। इसी गीत की फरमाइश भेजी आनंद कुमार कामले, रेखा राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले ने। सत्यमेव जयते के इस फिल्म के इस गीत को गाया है जरा के खान ने, तनिष्क बागची का गीत और संगीत है। तो आइए सुनते हैं ये गाना।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश कार्यक्रम का अगला गीत सुना जा है ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब साविर राही महराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये फरमाइश करता है आनंद कुमार कामले रेखा कामले राखी और करिश्मा गौरी नगर इंदौर से सपना संगीता रोड इंदौर से ही पत्रा है लाल फतेह चंदानी लीला फतेह चंदानी संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन और तानिया का इन सभी श्रोताओं ने सुना चाहा है उदित नारायण और पूर्णिमा का गाया हुआ समीर का लिखा आनंद बख्शी का संगीतबद्ध किया माफ कीजिए आनंद मिलिंद का संगीतबद्ध किया हीरो नंबर 1 फिल्म का गीत

गीत संगीत और गायक कलाकार हैं करण औजला। फिल्म का नाम बैड न्यूज़। इस गीत को सुनना चाहा बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा का, फिर शंकरलाल राहुल कुमार सविता स्वाति एवं पूरा माखीजा परिवार। औरंगाबाद से पत्राया राजेश साबले, राजदीप राजेश राजी राशि और शीतल राजेश का।

0: एक लड़की थी दीवानी सी,
1: एक लड़के पे वो मरती थी। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आपकी फरमाइश का मोहब्बतें फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों ने। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत जतिन ललित का है। सुनना चाहा है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका, रॉबिन। आदर्श नगर मलोट पंजाब से पत्र आया राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश और सौरभ शर्मा का। तो आइए आपको सुनवाते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद का मोहब्बतें फिल्म का गाना।

कार्यक्रम का अंतिम गीत तुम मिले फिल्म से है, आवाज़ है के की। सईद कादरी के बोल हैं, संगीत प्रीतम का है। सुना चाहा है प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने। भाटापारा दत्तरेंगी छत्तीसगढ़ से पत्राया द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक, झावेंद्र कुमार। यहीं से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, सूरज, ज्योति और रियांश का।

0: के की आवाज़ में गाए तुम मिले फिल्म के इस गाने के साथ ही आपकी फरमाइश यहीं समाप्त करने की छाया पाठक को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। 5 दिन की भारत यात्रा पर आई रॉड्रिगेज के साथ विदेश, अर्थव्यवस्था और विज्ञान मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को पश्चिम बंगाल जाएंगे और रुकी हुई रेल परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। वे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबान सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल कर लिया है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक पहली बार EV से यात्रा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के संदेश को अमल में लाते हुए वे अब भोपाल में नियमित रूप से इलेक्ट्रिक वाहन से ही चलेंगे। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के पंजीयन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया है। 3,800 करोड़ रुपये का यह पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। आज सुबह भोपाल, रायसेन, सीहोर और नर्मदापुरम में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 39 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए आपको जानकारी दे दें आज शाम प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत का आनंद आप उठा सकते हैं आज शाम 5:33 और शाम 6:30 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 6:00। आकाशवाणी भोपाल से ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम होगा 7:21 पर, जिसमें आज आप सुन सकते हैं ग्रीष्मकालीन अवकाश में बच्चों के समय का सदुपयोग, इस पर सामयिक चर्चा। इसके अलावा बुंदेली

0: समाचारों लोकगीत समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा, इसका प्रसारण होगा आज रात 8 बजे। कुछ और फिल्मी लग में हम आपको सुनाएंगे 8:35 पर और रात 9:30 बजे। प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10 बजे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। ये थे आज शाम प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 3:01 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारा ट्रांसमिशन कुछ देर के लिए बंद होता है।
1: चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
2: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: जी हाँ श्रोताओ, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है। तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
2: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है NCERT की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
1: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
2: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओ, आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
2: अजीत जी, इसका कारण ये है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है। इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
2: जी, वहाँ पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
1: जी,
2: पहले वहाँ के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आए।
1: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है।
2: जी,
1: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
2: जी,
1: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
2: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की। खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओं, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन है स्कू और थुकपा।
2: जी,
1: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है। यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं ताकि घरों में गर्मी बनी रहे। जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
2: अजीत जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
1: हाँ जरूर कीजिए।
2: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है जिसे विलो कहा जाता है।
1: जी,
2: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
1: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहाँ गए थे मैग्नेटिक हिल?
2: बिल्कुल याद है।
1: जहाँ यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो वो खिसकने लगते हैं।
2: बिल्कुल।
1: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
2: जी जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था। लोग अक्सर सोचते हैं कि वहाँ पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहां अपने आप नहीं चलते, ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
1: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहाँ की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती है। इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सड़क रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
2: श्रोताओ, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओ, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
1: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
2: जी,
1: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
2: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
2: जी,
1: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
2: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
2: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
1: भारत अर्थात इंडिया।
2: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।
3: भारत अर्थात इंडिया।
4: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच।
5: वंडरफुल शॉट, द स्कूप शॉट, इट गेट्स थ्रू, द बिग वन, इट्स अ ह्यूज बाउंड्री। Goes wide through the offside. He's got him. That's it. India wins.
4: Anushka भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
6: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
4: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
7: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
8: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा, तुम दोनों आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ।
7: क्या अभी आपके पास समय होगा?
8: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
7: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
8: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का?
7: जी वही।
9: जी वही।
7: सर, उस दिन लोग

0: वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
1: अच्छा
0: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
1: और
0: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
1: हाँ बोलो बोलो
0: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन सर दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही है। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
0: 5000 वर्ष पहले?
1: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
0: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
1: अच्छा ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
0: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
1: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
0: अच्छा।
1: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
0: जैसे?
1: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
0: वैदिक समूह?
1: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
0: भरत? भरत नाम तो हमने सुना है।
1: अच्छा भाई, भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
0: ओह भरत, अच्छा तो ये बात है।
1: हाँ।
0: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
0: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
1: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
0: वो क्या सर?
1: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिदू या हिंदू कहा है।
0: फारसियों ने सिंधु को हिदू या हिंदू कहा है, भला ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
0: है ही नहीं?
1: हाँ।
0: ऐसा कैसे?
1: ऐसा है, स की जगह उन्होंने ह का प्रयोग किया।
0: ओह।
1: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
0: हिंदू।
1: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
0: तो फिर?
1: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
1: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
0: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
1: अच्छा, कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ?
0: सर, ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
1: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ।
0: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
1: बिल्कुल।
0: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
1: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
0: अच्छा।
1: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारत वर्ष भी कहा गया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
0: वो क्या?
1: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
0: जम्बूद्वीप?
1: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारत वर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
0: जम्बूद्वीप?
1: हाँ।
0: ये नाम भला क्यों?
1: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
0: अच्छा।
1: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
0: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
1: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है। उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
0: इतने सारे देश?
1: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
0: अच्छा। सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: ये नाम कैसे आए?
1: लगता है सब कुछ जानकारी मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
0: जी सर।
1: हाँ, तो अभी अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
0: अच्छा।
1: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
0: ओ।
1: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
0: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
1: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी। हाँ।
0: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
1: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं, और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
0: अच्छा। इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
1: हाँ।
0: और हिंदुस्तान?
1: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
0: अफगानिस्तान।
1: बिल्कुल सही।
0: बलूचिस्तान।
1: सही।
0: तुर्किस्तान।
1: बिल्कुल। और उज़्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों, शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
0: सर, अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
1: अच्छा?
0: हाँ, बिल्कुल।
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: सर, आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
1: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है इंडिया जो कि भारत है।
0: अच्छा।
1: हाँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
0: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
1: बहुत अच्छे। तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
0: जी सर।
1: शाबाश। अच्छा, आज जो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
0: सबके साथ?
1: हाँ, सबके साथ।
2: तो साथियों, कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
4: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।

0: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ? आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
1: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
2: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
3: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
2: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
3: हाँ पूछो बेटा।
2: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
3: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
2: लेकिन माँ,
3: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा जोसेफ
2: जी,
3: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
2: अच्छा माँ, ये लो माँ।
3: ला।
1: ओहो, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
2: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे, मिल गया मुझे।
3: क्या मिल गया
2: मुझे? माँ माँ ओ माँ,
3: क्या मिल गया? क्या मिल गया
2: मुझे? मिल गया,
3: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया? सब क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
2: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
1: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
2: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ इस कमरे के धुएं को देखो, इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ? बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
3: कुछ भी तो नहीं।
1: कुछ भी तो नहीं है।
2: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना?
1: वो तो है मगर
2: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
1: हाँ हाँ हाँ, कहते तो तुम ठीक हो,
2: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें है?
1: हाँ
2: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
2: ठीक है, आओ मेरे साथ।
3: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ। स्टीफन जोसेफ सुनो तो।
0: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई, उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
4: अरे गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
5: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
6: हाँ भाई भीड़ तो है,
5: लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार, भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
6: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
5: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
6: आओ, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
5: आ गए यहाँ से, हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं। अरे अरे वो देखो, वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
7: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं।
5: वो देखो टोकरे में, हाँ अरे अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
7: हाँ,
5: क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
7: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है।
5: अरे अरे अरे, अरे वो देखो, हाँ स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
7: हाँ, और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
5: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है।
7: ये क्या हो रहा है? कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है?
5: अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
7: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
5: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया।
7: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो

0: साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं, ये हुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हां, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा। शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। यह गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ओलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान और अभी इसी के साथ हमारा
2: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। लीजिए, वक्त हुआ है कार्यक्रम उर्दू मजलिस का।

0: महसूस की और यही ज़रूरत आगे चलकर ज़राए इब्लाग की सूरत में सामने आई। अखबारात, टेलीविज़न और दीगर मीडिया ज़राए ने मुआशरे में बड़ी तब्दीलियाँ पैदा कीं, लेकिन इन सब के दरमियान रेडियो आज भी अपनी मुनफरिद शनाख्त बरकरार रखे हुए है। रेडियो एक ऐसा मौसर ज़रिया इब्लाग है जो कम वसाइल में भी मालूमात, तालीम और तफरीह आम लोगों तक पहुँचाता है। यही वजह है कि रेडियो ने शहरों से लेकर दूर दराज देहात तक आवाम के दिलों में अपनी जगह बनाई। हिंदुस्तान में रेडियो नशरियात का बाकायदा आगाज 1936 में ऑल इंडिया रेडियो के क़याम के साथ हुआ और आज रेडियो अपने 9 दहाइयों पर मुश्तमिल शानदार सफ़र की तकमील का जश्न मना रहा है। सामीन, ऑल इंडिया रेडियो ने उर्दू ज़बान व अदब की तरवीज और फ़रोग में नहायत अहम किरदार अदा किया है। उर्दू के मुमताज़ अदीबों, शायरों और सहाफ़ियों ने रेडियो के लिए ड्रामे, फीचर, मुज़ाकरे, टॉक्स और अदबी प्रोग्राम तैयार किए, जिन्होंने न सिर्फ सामीन की अदबी तरबियत की बल्कि उर्दू ज़बान को एक नई ताजगी और वसअत भी अता की। बहरहाल, ऑल इंडिया रेडियो ने उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग और इसके अदबी सरमाए को वसअत देने में जो नुमाया किरदार अदा किया है, इसी पर गुफ्तगू करने के लिए आज आकाशवाणी के स्टूडियो में एक खसूसी मुज़ाकरे का अहतमाम किया गया है। उन्वान है, रेडियो सहाफ़त और उर्दू। आज के इस खसूसी मुज़ाकरे में उर्दू सहाफ़त और अदब से वाबस्ता कई मुमताज़ और मारूफ शख्सियात शरीक हैं। उन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में सीनियर सहाफ़ी और तज़िया निगार जनाब क़ुरबान अली, मारूफ कॉलम निगार और अदबी शख्सियत जनाब मासूम मुरादाबादी, मुमताज़ सहाफ़ी और मुबस्सिर जनाब शकील अख्तर और उर्दू सहाफ़त का मोतबर नाम जावेद रहमानी शामिल हैं।
1: पूरी आपने मेंटेन कर ली, तो बच्चों को वो बचपन वाली बात तो याद नहीं रहती, वो बड़े होने के बाद याद रहती है, तो बच्चे भी वही सीख रहे हैं। तो इसलिए जो आपके घर में जो माहौल होता है कि अगर पति पत्नी आपस में एक दूसरे से दूरी मेंटेन रखते हैं या सास बहू के बीच एक दीवार खड़ी है, ननद भाभी के बीच, भाई बहन के बीच एक दीवार खड़ी है, तो बच्चे भी वही सीखते हैं, फिर बच्चे भी वो नहीं कर पाते हैं जो आप उम्मीद करते हैं जिसकी।
2: और एक साथी ने लिखा है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद शांत हो जाता है, जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा। स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी कोई आधुनिक आविष्कार नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय और वैदिक परम्परा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान भी यही बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव जीवन में ऊर्जा प्रभावित होती है, ये केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। स्पर्श थेरेपी का जादू इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति ने हमारे हाथों में ही इलाज की शक्ति दी है। व्यस्त दिनचर्या में अपनों को गले लगाना है, छोटी सी मालिश देना आपके जीवन को सेहतमंद और खुशहाल बना सकता है।
1: क्या बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। अमूमन क्या होता है कि कुछ व्यस्तता के कारण, कुछ टकराव के और कुछ ईगो के कारण भी हम छोड़ते हैं। घर में जब कई बार तकरार होती है, जहाँ पे 10-4 बर्तन होते हैं तो खटखट की आवाज होती है, टकराहट होती है, तो ऐसे रिश्तों में भी टकराव होते हैं। तो आजकल क्या होता है कि सबके सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो का रूप ले लेता है, अहम का, तो वहाँ पे टकराव ज़्यादा होते हैं। अहम छोड़कर अगर एक स्पर्श से कह दिया जाए कि हाँ छोड़ो, जाने दो, हो गया, जो बीत गई सो बात गई, तो बस इतने में झगड़ा खत्म हो जाता है। लेकिन 2-3 लोग जब घर में होते हैं तो अपने अपने ईगो को लेके बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि अरे हाथ बढ़ाते हैं, हमने तो अभी फिल्मों में ये सीन भी दिखाया जाता है कि हाथ बढ़ लिया और फिर पीछे ले लिया। तो ऐसे ही घरों में भी होता है कि आपका मन करता है कि हम जाए अपने बच्चे को गले लगाएं, लेकिन अरे उसने तो पलट के जवाब दे दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे,
2: हम नहीं बोलेंगे, तो वो पहले शुरुआत करें, हम क्यों करें।
1: तो ऐसे में टकराव और बढ़ता है और दूरी और बढ़ती जाती है।
2: एक साथी ने लिखा है ममता जी कि मेरे विचार से माता पिता को अपने बच्चों को स्नेहिल स्पर्श से वंचित नहीं रखना चाहिए। हम अभी भी अपने बेटे बेटियों को उनके किसी भी अचीवमेंट पर स्नेहिल स्पर्श भी करते हैं और प्यार की झप्पी भी देते हैं, चाहे बेटे अभी पढ़ रहे हैं, बेटियां जॉब में हैं। हाँ, मेरे से ज्यादा मेरी धर्म पत्नी इस मामले में 2 कदम आगे हैं।
1: क्या बात है भाई,
2: महिलाएं हर क्षेत्र में आगे
1: जी। तो वैसे भी ये कहा जाता है महिलाओं के हिस्से में, ये जोड़ दिया जाता है कि सहनशीलता आपके हिस्से में है, सहनशील बनो। तो ये दोनों तरफ होना चाहिए। अब जमाना बदल चुका है कि अब सिर्फ सहनशील सहनशीलता महिलाओं के हिस्से में नहीं, पुरुषों को भी उतना ही सहनशील होना चाहिए।
2: और जैसे आपने कहा ईगो की बात है, तो उस ईगो को झाड़ दीजिए, जैसे हम घर में झाड़ू लगाते हैं वैसे ही हमारे ऊपर से झाड़ू फेरा के उस ईगो को फेंक दीजिए, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना उसकी मिठास ही कुछ और ही होती है और अपने अपने ही होते हैं, बस ये अहंकार को हमें आड़े नहीं आने देना चाहिए।
1: बिल्कुल, और अपने रिश्तों को छोड़कर कई बार बाहर प्यार जब तलाशा जाए, प्यार तलाशा जाने लगता है तो स्थिति और बिगड़ जाती है। तो इसलिए ये जो स्पर्श वाली चिकित्सा है इसको मेंटेन रखें। एक श्रोता ने एक अनुभव साझा किया है, लिखा है कि वैसे स्पर्श बहुत फायदेमंद होता है, खासकर बुजुर्गों की सेवा और बच्चों, जानवर वगैरह। एक बार पिताजी की बुरी हालत थी, उनकी निरंतर सेवा कर स्पर्श ध्यान द्वारा भी जल्दी ठीक हो गए थे। और अन्य ध्यान आप करते हैं जिसमें जिससे मन शांत होता है, ये स्पर्श के बहुत अच्छा होता है। स्पर्श से बच्चों का दिमाग और उनका स्पर्श हमेशा फायदेमंद होता है। मतलब ये कहना चाहते हैं बच्चों के साथ अगर आप उन्हें टच करके छू कर बात करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि ये बीच में एक दौर आया था जहाँ पर एक दूरी मेंटेन कर दी गई थी, वो था कोरोना समय कि छूना नहीं है, कितनी विपरीत और विषम स्थिति थी। तो ये घर में तो ठीक है अपनों को छू कर बात करना अच्छी बात है, लेकिन कई लोगों की आदत इतनी ज्यादा होती है टच करके बात करने की, बाहर अजनबियों से टच करके बात करते हैं तो वहां पे हालत स्थिति बिगड़ भी सकती है, इसका भी ध्यान रखे आप।
2: बस हमें संतुलन बनाए रखना है उस स्पर्श में भी कि कहाँ जरूरी है और कहाँ नहीं है।
1: बिल्कुल,
2: कहाँ हद से ज्यादा नहीं आगे बढ़ना है और कहाँ हमें गले लगाना।
1: खासतौर से अगर कोई लड़की चली जा रही है और कोई लड़का आकर उसे छू कर बात करे कि हाँ एक्सक्यूज मी मुझे कुछ कहना तो निश्चित रूप से थप्पड़ पड़ जाएगा। और इस समय आप गाना सुनवा दें,
2: सुनते हैं गीत।

0: तो सोनाली जी, मुझे लगा कि आम खाने की तैयारी में लग गई आप।
1: आम अभी पढ़ना है ममता जी
0: आम,
1: आज।
0: आम बहुत खास है कहने
1: आम
0: को।
1: आज
0: आम
1: खास हो गए।
0: बिल्कुल, क्योंकि आम जब आम की बहार आती है गर्मी के मौसम में तो वो खास हो जाता है। फिर सबसे पहला सवाल ये होता है कि आम है कि नहीं खाने में,
1: हाँ
0: फिर नाश्ते में, खाने में, दोनों टाइम, मतलब लंच डिनर सब जगह आम शामिल हो जाता है। और उसको कभी आम का रस बना के पूड़ी के साथ, और आम का
1: कभी
0: रस
1: मैंगो
0: पराठे के
1: शेक
0: साथ,
1: बना
0: मैंगो
1: के।
0: शेक बना के, कभी काट के। तो आप बताइए, आप को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, मतलब काट के?
1: मुझे तो वैसे ही पसंद है ममता जी, बस मैं काट के खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि ना जो आम रस होता है ना वो थोड़ा पचने में भारी होता है, क्योंकि हमने उसे बनाया फिर ऐसा लगा कि अरे ये तो थोड़ा सा फीका लग रहा है, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल
0: शक्कर
1: दो,
0: डाल दी।
1: फिर
0: हाँ
1: माँ बोलेगी कि भाई वो थोड़ा गरिष्ठ होता है उसमें थोड़ा दूध डाल दो, फिर उसमें इलायची डाल दो, ऐसे करते करते करते फिर
0: ज्यादा
1: उसमें
0: हो
1: थोड़ी
0: जाता।
1: बादाम की कतरन डाल दो, ऐसे करते करते वो थोड़ा भारी हो जाता है, और फिर है ना खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक कटोरी से समाधान नहीं होता तो ऐसा लगे और थोड़ा सा ले ले। फिर खाने में दूसरे भी आइटम होते हैं, सब्जी भी है, दाल चावल है, रोटी है, और भी है, सलाद है, पापड़ है, फिर वो बहुत भारी हो जाता है, तो मैंने अभी शुरू कर दिया है कि बस दो तीन फाक खा लो।
0: बस,
1: हाँ
0: मतलब एक आम जैसे
1: हाँ
0: तैसे,
1: हाँ खा
0: उससे
1: लिया,
0: ज्यादा नहीं खाना
1: और
0: है
1: फिर अगर
0: तो
1: जब
0: ये।
1: आम जी भर के खाना है तो फिर थोड़ा सा खाने को कम कर दो, कि जैसे रात में थोड़ा सा हल्का सा कुछ लिया, और उसके साथ में फिर अगर मैंगो शेक लिया है या फिर घर में बनी हुई मैंगो की आइसक्रीम ली है, तो फिर हम इस तरह से अगर करें ना तो फिर आम का भी आनंद ले सकते हैं और हमारी सेहत का भी ध्यान रख
0: अच्छा, तो
1: सकते।
0: मतलब सत्तू के पराठे के साथ और पूरी के साथ आम का रस नहीं खा सकते?
1: खा सकते हैं ना, बिल्कुल
0: हाँ,
1: खा सकते हैं।
0: लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो इनके शौकीन होंगे, क्योंकि
1: हाँ
0: अमूमन ये कहा जाता है, अरे क्या बना है, आम का रस और पूड़ी,
1: पूरी।
0: तो ये तो बहुत, और साथ में आलू की भुजिया।
1: हाँ
0: तो हमारे श्रोता बता सकते हैं कि कौन कौन लोग अभी इन दिनों में कितनी बार आम का रस पूड़ी खा चुके हैं।
1: और लोग बुलाते भी हैं, चलो हमारे घर आज आमरस पूरी का आयोजन है तो आप आइए खाने के लिए, उसके साथ में सूखी आलू की सब्जी भी रख देते हैं, तो
0: बिल्कुल।
1: बहुत बहुत आनंद आता है सब खाने में।
0: तो हमारे कौन से श्रोता हैं जिन्होंने बाग में जाकर आम तोड़कर खाया है, और कौन कौन से आम? हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमने तो ये देसी आम बहुत सारे खाए हैं, और तोता परी एक ने लिखा है चौसा, लंगड़ा, ये आम हमने खाए हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमने तो रत्नागिरी आम खाया है बहुत सारा, इधर महाराष्ट्र में और कोंकण साइड में
1: जी
0: खास तौर से। ये अल्फांसो जो आम होता है, हापुस आम, ये बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन जो लोग लंगड़ा और चौसा खा चुके हैं उन्हें इनमें स्वाद नहीं आता है। उनको तो फिर लंगड़ा आम तो ऐसे है कि कच्चा आम भी आपको मीठा ही लगता है।
1: बहुत अच्छा लगता है वो आम,
0: तो
1: चौसा
0: उसमें
1: आम भी
0: जो,
1: बहुत अच्छा लगता है,
0: हाँ, तो उसमें जो शक्कर मिलाने वाली बात है ना, ज़रूरत
1: बिल्कुल
0: नहीं है।
1: जरूरत ही नहीं है उसमें, और वो तो हम लोग ना बारिश होती है ना उसके बाद भी खाते हैं, यानी रक्षाबंधन आता तब तक वो आम आता
0: अभी
1: है।
0: लेकिन महाराष्ट्र में, मुंबई में खासतौर से केसर आम
1: हाँ
0: बहुत मीठा आ रहा।
1: केसर आम है, फिर उसके बाद में जो बैगन फली आम जो आता है वो जो साउथ का आम है वो भी खाते हैं। एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी, हमारी तो गर्मियों की छुट्टियां नहीं होती तो क्या हम आम खाने का आनंद ना उठाएं? वैसे तो आम खाने का आनंद उठाएंगे, आम का नाम सुनते ही हरे पीले रसीले आम आंखों के आगे घूमने लगते हैं, मार्केट जाओ तो हर तरफ आम ही आम दिखते हैं, घर घर में आम के चर्चे, किसने कितने बॉक्स आम के मंगवाया, पर मेरा तो कुछ खास ही अनुभव रहता है, घर का बगीचा है, आम का पेड़ है, सच मानिए एक आम का पेड़ ही कितने सारे आम दे देता है कि आपने जान पहचान के लोगों को खिलाने के बाद भी काफी सारा आम रह जाता है, बिल्कुल शुद्ध बिना रसायन वाला आम, आम के अचार बनाए, आम रस बनाए, मिल्क शेक, आम लस्सी, स्मूदी, सब कुछ, और गर्मियों का आनंद आम के साथ ले रही हूं।
0: बिल्कुल। और यहाँ आम के बगीचे से याद आया कि हमने भी बचपन में आम का बगीचा, बड़े बड़े बाग देखे हैं,
1: जी
0: और वहाँ पेड़ से तोड़कर आम खाए हैं और गिरे हुए आम बटोरे हैं। भले खाए नहीं, लेकिन वो अजीब सा शौक होता था। तो वो जो पिता और दादा के लगाए हुए बाग हैं
1: जी
0: उनको बढ़ाने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए आपको नए नए आम के पेड़ भी लगाना चाहिए। वो चाहे कलमी आम हो, लंगड़ा, चौसा या
1: जी
0: रत्नागिरी, जो भी आम लगाया जाता है, वो सीख कर आपको आम के पेड़ जरूर लगाने चाहिए। और बड़ा आसान होता है, कई कई कुछ आम तो गुठलियों से ही
1: अपने आप उग
0: पनप
1: जाते
0: जाते हैं, उग जाते हैं।
1: हैं।
0: जैसे यहाँ विविध भारती के परिसर में भी हमने कुछ गुठलियों से आम
1: हम
0: लगाए
1: लगाए
0: हैं,
1: हैं।
0: और वो बड़ा पेड़ हो गया, तो हमें देखकर बड़ा अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में आम खाने का आनंद, आहा हा, बस पूछिए मत। एक दो हो तो तो कुछ बाद भी बने, मगर इतनी वैरायटी के आम की पूछो मत। जहाँ गए वहीं खा लिया, यदि नहीं गए तो अपना लंगड़ा आम तो है ही है, फिर दशहरी का क्या कहना। हापुस, वाह वाह, ये तो इधर मिलता ही नहीं है, जबकि दक्षिण का तोता परी, अरे यही तो दक्षिण भारत से इधर सबसे पहले आता है। मगर हापुस, जी हाँ, सब खाया जाता है और जी भर के खाया जाता है। अब रोग भी लगाए तो कैसे भाई, स्वाद का मामला है। और भी बहुत सारा इन्होंने लिखा है, तो इनकी बात से हमें याद आ गया कि गांव में बाल्टी में आम भिगो दिया जाता था,
1: हाँ,
0: और लोग बाल्टी पूरी की पूरी बाल्टी आम खा
1: और वो
0: लेते थे।
1: छोटे छोटे चूसने वाले आम थे ममता
0: हाँ
1: जी, वो
0: हाँ
1: आते
0: और
1: थे।
0: आप तो कह रही कि एक आम दो फाक वो तो
1: ओ ममता जी, वो जमाने में तो 10 आम भी खा लो तो कुछ नहीं होता था, पर
0: उसमें
1: अब एक आम भी खाया तो भारीपन लगता है ना।
0: और उसमें केमिकल नहीं होता था कोई
1: हाँ,
0: भी,
1: केमिकल नहीं
0: कोई
1: होते
0: दवा
1: थे।
0: मिला के नहीं, वो सीधे देसी
1: और
0: आम
1: खेलते
0: मिलता
1: कितने
0: था।
1: थे ममता जी हम उस वक्त, कि आम खाए और फिर खेलने चले गए, दिन भर वो बाल्टी में भिगोए हुए आम, आते जाते 20 भी खा लिए, 25 भी खा लिए तो पता नहीं चलता था। अभी तो एक आम खाते खाते परेशान हो जाते। एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी, कि गर्मियों की चिलचिलाती धूप में जब फ्रिज से निकला हुआ ठंडा ठंडा आम खाने को मिलता है तो मन और तन दोनों तृप्त हो जाते हैं। पारिवारिक जुड़ाव, आम खाने का असली मजा अकेले नहीं बल्कि परिवार के साथ बैठकर हाथ सरो सरो कर आम निकाल कर खाना और रस निकालना, परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। और बहुत सारी किस्में हैं भारत में आम की, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, हाफुस, केसर, हर किसी को पसंद होते हैं। और इसके व्यंजन भी, जैसे आम रस है, मैंगो शेक है, आइसक्रीम और अचार भी थालियों की शान बढ़ाते हैं।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम गांव जाते थे तो पेड़ से आम टूट के आते थे, तो पहले उसे अनाज की भूसी में रखा जाता था, जब पक जाते थे तो उसे निकाला जाता था और बड़ी बड़ी बाल्टी में मिट्टी के नाद में उसे पानी में डाल दिया जाता था, और फिर उसे बाल्टी में ही रख कर खाते थे। तब होड़ लगता था कि किसके सामने गुठलियों की ढेर ज्यादा होती है। इन गर्मियों में आम के चलते हमें बचपन में फोड़े फुंसी आम के रस से चेहरे पर भी कई तरह के दाग निशान हो जाते थे,
1: हाँ, ये होठों के यहाँ पे।
0: और आम का पना भी बनता था,
1: हाँ,
0: और साथ में गांव में तो आम के आम को भून कर आग में उसका रस निकाल कर उससे बाल भी धोए जाते थे।
1: ओहो,
0: तो ये कितने तरह के आम के, कितने तरह के गुण, और आम के अचार की तो बात ही निराली है।
1: और आम की जो रोटी भी बनाते थे, वो आम का
0: हाँ,
1: रस बच गया तो उसको थाली में थोड़ा सा
0: आम
1: घी लगा
0: पापड़।
1: के, आम पापड़ उसमें डाल के और उसको सूखा दिया, वो साल भर खाते थे।
0: अमावट भी कहा
1: जी
0: जाता है
1: जी
0: जिसे। तो और बोलिए।
1: एक साथी ने लिखा है कि भाई आम जो है सब साथ में बैठकर खाते हैं, और आम बैगन फली खाएं, परिवार के साथ बैठकर खाएं, आम खाने का मज़ा ना अलग होता है। सब बैठकर आम के छिलकों को चूसने लगते हैं, आम की तारीफें कहना और क्या कहना, तुमने उसको ज़्यादा आम दे दिया, मुझे नहीं दिया, इसका तो मज़ा ही कुछ अलग होता था। आज भी आता है, आज आम का जो स्वाद होता है ना, मैं कहूँगी सारे दिन की थकान मिटाने में सक्षम होता है। इसलिए गर्मी में आम नहीं खाया तो क्या खाया, और वो भी परिवार के साथ कर बैठ कर खाया तो उसका आनंद दुगना हो गया।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की गर्मी की छुट्टियों की बात याद आती है तो सबसे पहले नानी का गांव याद आता है। नानी के गांव के उन देसी आमों की बात ही कुछ और थी। बाजार में मिलने वाले हाइब्रिड या बड़े बड़े आमों में वो स्वाद कहाँ जो उन छोटे रेशेदार आमों में होता था। तो अब क्या इरादा है,
1: आप एक गीत सुन ले।
0: सुनते हैं।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, हम उपस्थित हैं अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों को लेकर। अब आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम होंगे, पहले न्यूज़ हेडलाइंस।

0: साथी न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन, साथी DTH के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए नए अवसरों पर विचार किया। केंद्र सरकार ने आज वर्ष 2026 के लिए 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों की घोषणा की। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया कि ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को कुल 17 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें 10 स्वर्ण पुरस्कार, 6 रजत पुरस्कार तथा 1 ज्यूरी पुरस्कार शामिल है। मेरा युवा भारत को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। इस अभियान ने एक सप्ताह में ऑनलाइन क्विज में भाग लेने वाले सबसे अधिक उपयोगकर्ताओं का खिताब हासिल किया है। इसमें 3,90,000 से अधिक प्रतिभागियों ने क्विज को पूरा किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन की प्रतिभाशाली बेटी सुश्री दीक्षा की कला को वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिलने पर बधाई दी है। दीक्षा ने केवल 22 मिनट में 8 मिलीमीटर आकार की चने की दाल के 12 दानों पर ज्योतिर्लिंगों की पेंटिंग बनाकर असाधारण कला का प्रदर्शन कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। और राज्य शासन की स्थानांतरण नीति 2026-27 के तहत जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने स्थानांतरण आवेदनों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार स्वैच्छिक स्थानांतरण के आवेदन 3 जून से 8 जून तक EHRMS पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल, आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है, थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव डीटीएच का ऑडियो चैनल साथी न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी, आज के युवाणी आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

0: नमस्कार दोस्तों, आज की इस खूबसूरत शाम में हम लेकर आए हैं ढेर सारी बातें, मुस्कान और कुछ खास पल। आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम युववाणी, और मैं हूं आज का आपका रेडियो दोस्त अनमोल।
1: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अंकिता। उम्मीद है आप सभी का दिन अच्छा गुजरा होगा। अब वक्त है थोड़ी सी राहत का और कुछ प्यार भरी बातों का और शानदार संगीत का।
0: बिल्कुल, दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम का ये समय अपनेपन और सुकून का होता है, और हम चाहते हैं कि आपकी शाम और भी खूबसूरत बन जाए।
1: तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम को आज के दो प्रश्नों के साथ। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन है? और आज का दूसरा प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
0: साथियों, इनके जवाब हम आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत में, लेकिन उससे पहले इस शाम को और भी सुरीला बनाते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ, जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह और आशीष कौर ने, और जिसे लिया गया है फिल्म केसरी से।

0: वापस स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी। अंकिता, कभी कभी लगता है ना, पहले मौसम कितने अच्छे हुआ करते थे। पेड़ों की वो ठंडी ठंडी छाव, साफ हवा और बारिश की वो खुशबू।
1: लेकिन अब सब धीरे धीरे बदलता जा रहा है। हर जगह प्रदूषण, प्लास्टिक और कटते हुए पेड़ दिखाई देते हैं।
0: और सबसे हैरानी की बात ये है कि इंसान खुद ही प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है और फिर उसी खराब माहौल की शिकायत भी करता है।
1: हाँ, और क्या, हम खुद के स्वार्थ में भूल जाते हैं कि प्रकृति नहीं रहेगी तो जीवन भी मुश्किल हो जाएगा।
0: अब आज गर्मी हर साल बढ़ रही है, बारिश का मौसम भी बदलता जा रहा है। ये सब कहीं ना कहीं पर्यावरण के बिगड़ने का असर है।
1: पर पेड़ लगाकर, पानी बचाकर और प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करके हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बदलाव भी ला सकते हैं।
0: बिल्कुल, प्रकृति सिर्फ हमारी जरूरत नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है।
1: और दोस्तों, आज से हम सब मिलकर एक छोटी सी कोशिश जरूर करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी साफ और सुंदर वातावरण मिल सके।
0: साथियों, इसी वादे के साथ अब कार्यक्रम में जोड़ते हैं ये गीत, जिसे लिया गया है फिल्म मेट्रो इन दिनों से और जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह ने।

0: दोस्तों, प्रेरक व्यक्तित्व के अंतर्गत हम हर बार एक आइडियल पर्सनालिटी के बारे में आपसे बात करने आते हैं और उनके जीवन से जुड़े महान कार्यों को जानकर उससे प्रेरित होकर उनको याद करने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, और आज हम आपसे बात करने आए हैं राजकुमारी अमृत कौर के बारे में। आजादी की राह, सेवा की चाह, अमृत कौर की यही पहचान है।
0: इनका जन्म 2 फरवरी 1889 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता कपूरथला पंजाब के राजा थे और इनकी प्राथमिक से लेकर उच्च स्तरीय शिक्षा भी इंग्लैंड से पूरी हुई थी।
1: लेकिन संपन्न परिवार से होने के बाद भी अमृत कौर ने अपना जीवन सादगी से जीना चाहा। देश को स्वतंत्र कराने, सामाजिक विकास करने के लिए उन्होंने कई सारे कार्य किए।
0: वे बाल विवाह और पर्दा प्रथा के सख्त खिलाफ थी और उनका कहना था कि शिक्षा को भी निःशुल्क और अनिवार्य बनाना चाहिए।
1: महिलाओं की दयनीय स्थिति को देखकर ही उन्होंने 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की। उन्होंने ऑल इंडिया विमेन एजुकेशन फंड एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था।
0: इस तरह अपने राजनीतिक करियर के दौरान राजकुमारी अमृत कौर ने कई बड़े पदों पर काम किया। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया।
1: इतना ही नहीं, 1950 में उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्यक्ष भी बनाया गया। ये सम्मान हासिल करने वाली वे पहली एशियाई महिला थी और इस तरह सेवा, समानता और स्वास्थ्य ही अमृत कौर का संकल्प बन गया।
0: आज़ादी की राह पर उन्होंने 16 वर्षों तक गांधी जी के सचिव के रूप में भी काम किया। 1930 में दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें जेल भी जाना पड़ा और इस तरह लोगों को जागरूक करने और देश को स्वतंत्र कराने के लिए अमृत कौर जीवन पर्यंत प्रयास करती रही।
1: साथियों, 2 अक्टूबर 1964 का दिन भले ही अमृत कौर के जीवन का आखिरी दिन रहा हो, लेकिन उनके सराहनीय कार्य और उनके योगदान को आज भी उतना ही याद किया जाता है।
0: इन्हीं बातों के साथ आइए दोस्तों, अब सुनते हैं कार्यक्रम के अगले गीत को। उरी फिल्म से शांतनु सुदामे और शाश्वत सचदेव की आवाज में।

0: अंकिता, आज मैं बहुत खुश हूं,
1: क्यों?
0: क्योंकि आज मैंने अपनी लाइफ की फर्स्ट जॉब से फर्स्ट सैलरी जो ली है।
1: अरे वाह अनमोल, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आज तो तुम्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की फीलिंग आ रही होगी।
0: बिल्कुल सही कहा अंकिता, खुद की मदद करके किस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। छोटी छोटी जरूरतों से लेकर बड़ी बड़ी आवश्यकताओं तक, जब आप अपने परिवार पर निर्भर नहीं होते बल्कि दूसरों का सहारा बनते हैं, तब ये फीलिंग ही कुछ और होती है।
1: सही कहा अनमोल, आज के टाइम पर हर व्यक्ति एक्टिव है। वो अपने अधिकार, अपने कर्तव्य के लिए जागरूक भी है। किसी कार्य को करने से क्या फायदा, क्या नुकसान है, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं अस्तित्व में है और इससे जुड़कर किस तरह हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं और रोजगार भी किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी बातों का ध्यान आज हमारे देश का नागरिक रखता है।
0: आज वो खुद की सहायता के लिए पूरी तरह तैयार है। बिना किसी सहारे के स्वसहायता से व्यक्ति स्वावलंबन की ओर बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, आज की जागरूक होती महिलाएं भी घर के साथ साथ बाहर निकलकर अपने कौशल को बढ़ाना चाहती हैं।
1: और दोस्तों, इस राह में सरकार के कई प्रयास जैसे रोजगार योजना, कौशल विकास, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया जैसे कई सारे विकास के कार्य भी जारी हैं।
0: तो दोस्तों, अगर आप भी खुद की मदद करना चाहते हैं और अपने साथ दूसरों को जागरूक कर परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो स्वावलंबी बनने की ओर कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है।
1: और उम्मीद है आप सभी इस क्षेत्र में एक छोटा सा प्रयास जरूर करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आइए अब सुनते हैं आतिफ असलम की आवाज में बजरंगी भाईजान फिल्म से इस गीत को।

0: दोस्तों, बातें तो अभी और भी हो सकती थी, लेकिन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अलविदा कहने का समय हो चला है।
1: लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे गए प्रश्न के उत्तर को। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न था, भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है? इसका उत्तर है गंगा डॉल्फिन।
0: और साथियों, आज का हमारा दूसरा प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जिसका उत्तर है प्रशांत महासागर। साथियों, उम्मीद है आज की ये शाम, हमारी बातें और संगीत की ये पल आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान जरूर छोड़ गए होंगे।
1: जिंदगी की भागदौड़ में कभी कभी कुछ पल अपने लिए चुरा लेना भी जरूरी होता है, और हमें खुशी है कि आपने उन पलों में युववाणी को शामिल किया।

0: किया।
1: साथियों, हम फिर लौटेंगे नई शाम, नई धुन और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप सुन रहे थे आपकी रेडियो दोस्त अनमोल द्विवेदी
0: और आपकी रेडियो दोस्त अंकिता को।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युववाणी।
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
1: आई जाना मेरे लिए ना सही, पर अपने होने वाले बच्चे के लिए

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर का गाया ये गीत फिल्म गुलामी से। गुलजार के शब्द थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन।

सावन को आने दो। श्रोताओं, इस फिल्म के लिए आपने जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा और साथियों का गाया ये गीत सुना। इसे लिखा गौहर कानपुरी ने, संगीत तैयार किया था राजकमल ने। और अब अगला गीत हम आपको सुनवाएं, उससे पहले एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, आपके मैसेज हमारे गीत कार्यक्रम आपके लिए शुक्रवार रात 9:30 बजे से 10 बजे तक आपके अपने प्राइमरी चैनल पर। इस बार की 5 फिल्में जिनके लिए आपको व्हाट्सएप संदेश भेजना है, और ये व्हाट्सएप संदेश शुक्रवार शाम 4 बजे तक ही भेजे जा सकते हैं। इसके लिए हम आपको बता दें फिल्मों के नाम: मेरा साया, यादों की बारात, सागर, सलामी और आशिकी 2। हमारा मोबाइल नंबर है 9425149342। आपके संदेश हमें शुक्रवार शाम 4 बजे तक मिल जाने चाहिए। सूचना समाप्त हुई।

लव इन टोक्यो। इस फिल्म के लिए श्रोताओं आपने सुना मोहम्मद रफी का गाया ये गीत, गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का सुरीला सफरनामा फिल्म संगीत। और श्रोताओं, इससे पहले कि हम आपको अगला गीत सुनवाएं, लीजिए एक सूचना सुनिए। कार्यालय थाना प्रभारी रेल पुलिस गाडरवारा जिला नरसिंहपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार गाडरवारा के लिखित सूचना लोको पायलट द्वारा दी गई कि 12,539 डाउन यशवंतपुर

लखनऊ चारबाग एक्सप्रेस के लोको पायलट के मेमो के अनुसार करेली यार्ड में स्टेशन बिल्डिंग से थोड़ा पहले करीब एक आदमी अचानक गाड़ी के सामने आ गया। वो व्यक्ति रेलवे स्टेशन नरसिंहपुर तक इंजन में फंसा हुआ आया। मृत व्यक्ति की उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष के बीच। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का कायम किया जांच की जा रही है। मृतक का हुलिया बदन सामान्य रंग गेहुआ, चेहरा लंबा, बदन गहरा, लंबाई लगभग 5 फुट 4 इंच, पहनावा हल्के पीले रंग का कुर्ता जिसमें काली चौकड़ी और नीले रंग की चौकड़ी की लुंगी पहने हुए है। बाएं हाथ की कलाई में एक प्लास्टिक जैसा काला रंग का कड़ा है। मृतक की जानकारी लगने पर कोई भी यदि जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया जीआरपी थाना गाडरवारा के मोबाइल नंबर 7791254614 या फिर 7049151160 पर सूचना दी जा सकती है। सूचना समाप्त हुई।

फिल्म संगीत के आखिर में श्रोताओं आपने सुना स्वीकार किया मैंने। इस फिल्म के लिए लता मंगेशकर का गाया ये गीत निदा फाजली के बोल थे उषा खन्ना का संगीत निर्देशन। और इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त होता है।

मीडियम वे पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। शाम के 5:55 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6 बजे सुनिएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शाम 6:30 पर लोक संगीत में आज हम आपको सुनवाएंगे नेपाल सिंह राजपूत के गाए बुंदेली लोकगीत। शाम 6:45 पर सुगम संगीत में आप सुनेंगे मनीष चौधरी के गाए गीत और भजन। शाम 7:21 पर कृषि जगत में आज सुनिएगा बुंदेली कविता पाठ श्रीमती रेखा तिवारी से। रात्रि 8 बजे सुर्खियों में हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे। रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे। रात्रि 9:30 पर धारावाहिक हंसना मना है, इसका आज आप सुनेंगे भाग 4। आलेख हेमंत कुलकर्णी का और प्रस्तुति डॉक्टर बैजनाथ गौतम की। और रात्रि 10 बजे क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। और अब श्रोताओं, आइए आपको कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे दें।

कल प्रातः 5:55 पर हमारी पहली सभा आरंभ होगी। 6:05 पर भक्ति संगीत वंदना चिंतन का प्रसारण होगा। प्रातः 6:30 पर 6:35 पर श्री रामचरित मानस का गान होगा। 6:45 पर कृषि सामायिकी में सोयाबीन की आधुनिक खेती पर जानकारी दी जाएगी। सुबह 7:20 पर गुड मॉर्निंग जबलपुर फिल्म संगीत 8:30 पर लोक रसधार में सुबह 9:00

सुनिएगा मनीषा जैन के गाए बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर फिल्म संगीत, कल सुबह 10:05 पर वंदे मातरम गौरव गान की डेढ़ सदी। श्रोताओं, ये थे कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्य।

0: जो प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण विमान ईंधन ATF की कीमतों में आई असामान्य बढ़ोतरी का बोझ यात्रियों पर न पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता देने का फैसला किया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज स्वास्थ्य और आयुष विभाग को 19 जून के विश्व सिकल सेल दिवस के मद्देनजर उन्मूलन गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्क्रीनिंग, दवा वितरण और जनजागरूकता कार्यक्रमों की विशेष निगरानी जरूरी है। इंदौर में 6 जून को भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम 2026 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में होने वाले इस फोरम में लैटिन अमेरिका के 15 देशों के राजदूत और 350 से अधिक उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने प्रदेश के निमाड़ अंचल को बड़ी सौगात देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 347B के उन्नयन और चौड़ीकरण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 4,415 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इससे बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिलों में सड़क की स्थिति सुधरेगी। और प्री मानसून बारिश और आंधी तूफान को देखते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने सभी मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के ठीक 6 बजे हैं। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: संबंध
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
3: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
3: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को आज हम किस फूल की बात करेंगे।
3: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
3: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
3: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है
2: जी।
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाक

0: स्थान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुंचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
1: जी अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
0: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
1: जी,
0: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
1: जैसे
0: लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
1: जी,
0: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
1: जी, इसलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
0: जी,
1: अब विमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास, जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है।
0: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
1: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
0: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
1: हाँ, वो क्या?
0: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई, जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
1: ये घटना क्या थी?
0: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
1: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहाँ तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
0: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
1: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब बारी है श्रोताओ आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
1: जी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है। मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे।
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए।
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे।
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
1: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
3: मश्क।
2: होशियार,
3: समझदार।
2: पेंसिल तराश,
3: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
3: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
0: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
5: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
6: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। आपने बताया कि आप

0: रहे थे?
1: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
0: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
1: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं, उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
0: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
2: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
3: क्या बात है,
2: सुनकर ही जोश आ गया।
3: हाँ
2: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो, और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
3: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा, या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
4: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे, और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है, और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया, और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे, और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया, कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
5: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
4: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन 2, दिन 19 जून 1999। स्थान 0.5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे 2 हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल 1 रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
6: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
7: 1 घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
6: अरे देख लेंगे।
4: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3 बज

0: बजकर 24 मिनट हो गए थे। 4:30 बजे सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया। और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। पॉइंट 5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
1: कैप्टन विक्रम, पॉइंट 5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
2: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
3: क्या बात कही है?
1: ये दिल मांगे मोर। How nice. विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
2: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: और अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो
3: संभल कर।
1: अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
2: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
2: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
2: जी सर।
4: हमला करो। दुर्गा माता की जय। भारत माता की जय।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: सामजी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नारायण तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
5: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जा। मैं जा रहा हूं।
5: साहब जी, साहब जी।
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीरगति पाई। उस दिन

भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग मीडियम वेव पर। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत के आज के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए नेपाल सिंह राजपूत के गाए बुंदेली लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आपने सुना नेपाल सिंह राजपूत के गाए बुंदेली लोकगीत।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए मनीष चौधरी के स्वर में कुछ गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना मनीष चौधरी की गाई कुछ गजलें। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7 बजने वाले हैं श्रोताओं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 7:05 पर सुनिएगा अंग्रेजी में समाचार। प्रादेशिक समाचारों का वक्त शाम 7:10। समाचारों को हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए नए अवसरों पर विचार किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज ने कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्तीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत किया और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। साथ ही वह लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ स्थानीय संस्कृति को भी बढ़ावा दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार को दोगुना करने को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में यह दोगुने से भी अधिक है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात

पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने यह समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आज विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योगासन का खेलों में बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता योग को खेल की दुनिया में नई पहचान दिलाने का काम करेगी। श्री मोदी ने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी चैंपियन हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रादेशिक समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात कर ऊर्जा, व्यापार और निवेश पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल गुजरात और दमन दौरे पर 21,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विश्व सिकल सेल दिवस के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग को जनजातीय क्षेत्रों में उन्मूलन गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए और इंदौर में 6 जून को भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम का होगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक भंडार मौजूद है। इसके अलावा खनन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन क्षेत्र का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी शाम को दमन में करीब 3,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें स्वास्थ्य, पर्यटन और हवाई संपर्क से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण विमान ईंधन ATF की कीमतों में आई असामान्य बढ़ोतरी का बोझ यात्रियों पर न पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता देने का फैसला किया है। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी आश्वस्त किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है और कालाबाजारी रोकने के लिए निगरानी जारी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी।
1: I will request all the citizens.
2: मैं सभी नागरिकों से अपील करती हूं कि वे ऊर्जा की बचत करें और उसका सोच समझकर उपयोग करें। सरकार पेट्रोल, डीजल और LPG के पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, इसलिए घबराहट में इनकी जरूरत से अधिक खरीदारी या बुकिंग ना करें। साथ ही लोगों से अनुरोध है कि वे PNG, इंडक्शन स्टोव और इलेक्ट्रिक कुकटॉप जैसे वैकल्पिक ईंधनों और संसाधनों का भी उपयोग करें।
1: इंडक्शन

0: एंड इलेक्ट्रिक कुकटॉप्स।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत किया और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने वाली संस्था के रूप में कार्य कर रही है। सत्र में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नेता एक मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर के निर्माण के अपने संकल्प में एकजुट हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज स्वास्थ्य और आयुष विभाग को 19 जून के विश्व सिकलसेल दिवस के मद्देनजर उन्मूलन गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में स्क्रीनिंग, दवा वितरण और जागरूकता कार्यक्रमों की विशेष निगरानी जरूरी है। राज्यपाल ने प्रत्येक मंगलवार को आंगनवाड़ी केंद्रों में माताओं और बच्चों को सिकल सेल के कारण, लक्षण और उपचार की जानकारी देने के लिए भी कहा। इंदौर में 6 जून को भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम 2026 का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में होने वाले इस फोरम में लैटिन अमेरिका देशों के 15 देशों के राजदूत और 350 से अधिक उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे। फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और आईटी क्षेत्र में निवेश और व्यापार के अवसरों पर भी चर्चा होगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल कर लिया है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक पहली बार ईवी से यात्रा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के संदेश को अमल में लाते हुए वे अब भोपाल में नियमित रूप से इलेक्ट्रिक वाहन से ही चलेंगे। उन्होंने कहा कि ईवी से वायु प्रदूषण नहीं होता, रखरखाव सस्ता है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ भविष्य की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के निमाड़ अंचल को बड़ी सौगात देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 347B के उन्नयन और चौड़ीकरण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 4,415 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इससे बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिलों में सड़क की स्थिति सुधरेगी। खरगोन के लिए 16 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड बाईपास भी बनेगा। जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने स्थानांतरण नीति 2026-27 के तहत स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इच्छुक कर्मचारी 3 से 8 जून तक EHRMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अधिकतम 15 कार्यालयों का चयन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर बैतूल जिले की शुभ्रा खाड़े ने अपनी प्रेरक कहानी साझा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि
3: मैं 7 साल से आजीविका मिशन में जुड़ी हूँ। वर्तमान में मैं बैंक सखी का कार्य कर रही हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति खराब थी, अब आजीविका मिशन में जुड़ने के कारण मैंने जो जनरल स्टोर की दुकान खोली है उससे मुझे अच्छी इनकम हो जाती है, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक है।
1: मध्य प्रदेश में पहली बार नगरीय निकायों और पंचायतों की मतदाता सूची पुनरीक्षण में मतदाताओं को नाम जोड़ने, कटवाने और संशोधन के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि अब तक 8,317 आवेदकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची 18 जून को प्रकाशित की जाएगी। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के पंजीयन पर लगने वाली स्टैम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया है। 3,800 करोड़ रुपये का यह पूरा खर्च अब राज्य सरकार उठाएगी। प्रदेश में अब तक 68 लाख से अधिक अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं और लगभग 98% ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। उज्जैन की 12वीं कक्षा की छात्रा दीक्षा कुशवाहा ने मात्र 22 मिनट में चने की दाल के 12 दानों पर 12 ज्योतिर्लिंगों की पेंटिंग बनाकर वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पर अपना नाम दर्ज कराया है। 8 मिलीमीटर आकार की इन दालों पर सूक्ष्म कला का यह कमाल दीक्षा ने महज 1 साल की मेहनत से हासिल किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर दीक्षा को बधाई दी है। भोपाल के रविंद्र भवन में आज शाम मशहूर शायर और पद्मश्री प्राप्त बशीर बद्र को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के इस याद बशीर बद्र कार्यक्रम में कई बड़े शायर, गायक और फिल्म निर्माता बशीर बद्र की विरासत पर अपने विचार रख रहे हैं। थोड़ी देर में अखिल भारतीय मुशायरा शुरू होगा जिसमें देशभर के नामचीन शायर अपना कलाम पेश करेंगे। प्री मानसून बारिश और आंधी तूफान को देखते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने सभी मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। कंपनी के प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में उपभोक्ता कॉल सेंटर नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं। कंपनी ने उपभोक्ताओं को भी सावधान

किया है कि मानसून में हवा में नमी के कारण करंट लगने का खतरा बढ़ जाता है और घर में मजबूत अर्थिंग का होना जरूरी है। अब रुख करते हैं मौसम की खबर का। प्रदेश में मानसून से पहले ही प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। बीते 24 घंटों में 29 जिलों में आंधी बारिश और कुछ जगह ओले भी गिरे हैं। श्योपुर में सबसे अधिक 1.25 इंच बारिश दर्ज की गई और कई इलाकों में जलभराव हो गया। राजधानी भोपाल में रात भर बारिश का दौर चला है और सुबह भी बूंदाबांदी होती रही। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 20 जून के बाद प्रदेश में दाखिल होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने आज नीमच के ग्राम खेमला में निर्माणाधीन ग्रीनको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कार्यों का निरीक्षण किया। बैतूल में विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए संपर्क अभियान के तहत खंडारा में शिविर का आयोजन किया जाएगा। खंडवा शासकीय ITI में आयोजित युवा संगम रोजगार मेले में 265 युवाओं का विभिन्न कंपनियों के लिए चयन किया गया। नर्मदापुरम जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत पचमढ़ी के छावनी झील पर सफाई और जल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी के द्वारा आज किरण बाल गृह कटनी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगरमालवा जिले के सुसनेर में 5 से 21 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा और अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम के तहत राजगढ़ के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में BCOM इन बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड इंश्योरेंस में ऑनलाइन प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि जगत।

मोरे राम, इनको बचपन है अनमोल की अरे मोरे राम, मोड़ा मोड़ी सुंदर नन्हे फूल की अरे मोरे राम, इनके मन है साफ और सच्चे की अरे मोरे राम, गुस्सा से तुम इन्हें न देखो की अरे मोरे राम, इन नन्हो है तुम न डराओ की अरे मोरे राम, न करियो तुम मार कुटाई की अरे मोरे राम, प्यार से फेरो इन पे हाथ की अरे मोरे राम, चहकत इनसे हर घर आंगन की अरे मोरे राम, न करो डांट डपट और हिंसा की अरे मोरे राम, नफरत और हिंसा से इन्हें बचाओ की अरे मोरे राम,

0: है बहुत बड़ाई की, अरे मोरे राम, अरे मोरे राम, अरे मोरे राम की, अरे मोरे राम।
1: आज तो पार्टी चाहिए,
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी,
1: पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
4: हो गया? हाँ। तो भैया हरो, अब देखो आज है गुरुवार और गुरुवार के दिन अपन लेके आते हैं अपनो वसुदेवा कार्यक्रम। और आज वसुदेवा कार्यक्रम लेके आई हैं आपकी गुड्डन जिज्जी। तो देखो बातें तो अपनी बहुत सारी होती हैं, काहे कि गुरुवार में वसुदेवा को जो पिटारा रहते हो में इतनी मुद की सारी बातें रहती कि का बताएं। मनो अबे है दोई बिरिया को टैम, तो कोनो जिज्जी भौजी हरों ने तो दिया धर लो हुई है तुलसा में, कोनो धर रही हुई है और कहूँ कहूँ हो रही हुई है आरती। तो हम भी सोच रहे हैं कि काय ना चौपाल से अपन समूह स्वर में एक जो उमदा सो लोकगीत सुन लें तो और अच्छो लगे अपन को।

0: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
1: भैया हरो, देखो आज गुरुवार वसदेवा के कार्यक्रम में तो हमारे भैया, भौजी, जिज्जी, बिन्ना, नन्हे मुन्ने, मोड़ा मोड़ी सभी मतलब इतना इंतजार कर रहे थे कि कब गुरुवार आए और चौपाल से वसदेवा कार्यक्रम लेके जिज्जी बिन्ना हरे आए। तो जब हम चौपाल आते ना भैया हरो, तो कोनो जो कोई भी टकरा थे तो कहे थे आज कौन सो सुना रही हो लोकगीत, तो फिर आज कौन सो कविता पाठ सुने हो, कछु अच्छे अच्छे नए नए सुनाओ। सो हमने कही कि हाओ देखो, जौन को कविताएँ अच्छी लगती उन्हें कविताएँ सुनवे हैं, जौन लोकगीत

0: सुन वो चाहत उन्हें लोकगीत सुनवे हैं। मनो हमारे जौन चुन्नू मुन्नू हैं बे किस्सा कहानियाँ सुन वो ज़्यादा पसंद करत तो उन्हें हम वही सुने हैं। तो जब आज हमें जब सबई और मिली चौपाल आत में तो हमने कही लियो अब आज हमारी जौन जी श्रीमती रेखा तिवारी जिज्जी हैं इनकी बिल्कुल नई नई कविता आप औरों के सामने लेके आए हैं। तो अपन सुन लेते हैं बुंदेली कविता पाठ में श्रीमती रेखा तिवारी की जा उमदासी कविता।
1: भैया मैं बुंदेलू में कविता एक बोलना चाह रही हूँ, आप लोग सुनिए।

मैं अपनी बचपन की कुछ कविता, कुछ थोड़ी सी रचना सुना रही हूँ, आप लोग उसको सुनियो। आओ गुइया मिलजुल चलिए, आओ गुइया मिलजुल चलिए, बचपन के संसार में कढ़ गए बेदिन सखियन के संग, बैठते थे जब पार में, कढ़ गए बेदिन सखियन के संग बैठ

कड़ गए वे दिन सखियन के संग बैठते तेज बेपार में, कड़ गए वे दिन सखियन के संग बैठते।

कड़ गए वे दिन सखियन के संग बैठत ते जब पार में। कड़ गए वे दिन सखियन के संग बैठत।

के अचला ओढ़ूं प्यार में, ओली मोड़ धरूं अम्मा के अचला ओढ़ूं प्यार में। कहते ते बब्बा टुरिया होती, कहते ते बब्बा टुरिया होती, है तुलसी आंगन के कढ़ गए वे दिन सखियन के संग, बैठते ते जब पार में, कढ़ गए वे दिन सखियन के संग, बैठते

कड़ गए वे दिन सखियन के संग, बैठते थे जब पार में। आओ गुइया मिलजुल चलिए, आओ गुइया मिलजुल चलिए, बचपन के संसार में। कड़ गए वे दिन सखियन के संग, बैठते थे जब पार में। कड़ गए वे दिन सखियन के संग, बैठते थे जब पार में। चौकड़िया सुना रही हूँ, आप उसको सुनिए।

खइयो बाटे बिरोबर दइयो हिसा भाई कोने खइयो। भाई लोग एक और चौकड़ी में बोल रही हूँ। बाल में कहीं ने एक माने बाल में।

माने दुख तो सहले भी हम अपनों, दुख तो सहले भी हम

0: धन्यवाद भैया।
1: तो भैया देखो, आज तो अच्छो अपन ने उम्दा सो जो कविता पाठ सुनो श्रीमती रेखा तिवारी जी से। और देखो चुन्नू मुन्नू बिल्कुल बैठ गए हैं चौपाल में, तो देखो जम्हाई भी ले रहे हैं जी, और तो जम्हाई नहीं लेने काहे कि हम सुने हैं तो सिक्के सा, तो हुंका भरने हैं और ध्यान से सुनने हैं। और ध्यान से काहे सुनने, हर बेरा हम बतात हैं कि जब हमारे किस्सा सुनात हैं तो आखिर में एक ठैया प्रश्न पूछत हैं, और वो प्रश्न को उत्तर आप औरों को 15 दिना के भीतर लिख के भेजने पड़त है। तो चुन्नू मुन्नू बाको उत्तर जब ही लिख के भेजो, जब किस्सा अच्छे से सुनो, तो बिल्कुल ध्यान से सुनियो। तो अब अपन ज़्यादा बात ना करत भय, शुरू करत हैं अपनी आज की किस्सा।

मोरे राम। तो भैया यारो देखो, जा कहानी है चंपक की। चंपक जोन अपनी गरीबी से खूब ही तंग आ गओ थो, इतो ज़्यादा कि का बताएं। और जोन चंपक की पत्नी हती बा भी बिल्कुल कहने चाहिए कि अपनी खूब ही जोन उनकी रहीसन जोन पड़ोस ने हती उनसे अपनी खूब तुलना करे, खूब महंगे महंगे कपड़ों और गहनों की मांग करे अपने पति चंपक से, और अपनी मोड़ी और अपने फटे पुराने कपड़ा दिखा दिखा के चंपक ही खूब ताना मारे। अब चंपक इतो तंग आ गओ, इतो परेशान हो गओ कि हम का बताएं, वो तो बहुत ही हताश और निराश हो गओ। फिर एक दिना का भाव कि वो गांव में कछु सामान वामान ले अभी बाजार गओ, तो ते बा को एक पुरानो मित्र चंदू मिल गओ। चंदू जोन बचपन में बई के संगे पलो बढ़ो हतो, खेलत हो हैं, खाए पिए, खेले कूदें, स्कूल जाएं, तो वो चंदू मिल गओ। कछु साल से वो गांव में दिखा नहीं रहो थो। अब एक दिना जब वो टकरा गओ चंपक से और कहन लगो कि अरे चंपक, तुमने तो अपनो जो का हाल बना लो है, का बात है, तुम तो बड़े हैरान और परेशान से लग रहे हो। सो चंपक ने कही कि हाओ यार का बताएं, जा जोन गरीबी है ना, जा भी बड़ी बेकार होत है, सोच भी समझ भी तक की शक्ति खत्म हो जात है ना। अब कछु अपनो जोन है दिमागी काम नहीं करे, का कर लें। अब भैया ऐसो है कि गरीबी के दिन तो सभी जेई समझाते हैं कि भैया गरीबी जब आत है ना, तो कछु समझ में नहीं आए कि हम ऐसो का करें कि कछु चमत्कार हो जाए और हम आए जे गरीबी के दिन दूर चले जाएं। सो चंदू कहन लगो कि देखो चंपक, जई बात से परेशान हो के हमने भी गांव छोड़ो थो और हम काशी चले गए, और उतें हम पूजा पाठ पंडिताई को काम करन लगे, खूब अच्छी दान दक्षिणा मिलन लगी और हमने अच्छो खूब पैसा कमाओ, और हमारी मानो तो तुम भी अब हमारे संगे चलो काशी, काहे की पूजा पाठ कराबो तो मैं भी आत है, तो तुम भी जो ही काम कर सका तो होते, तो सभी लोग आत हैं घूमबे है ना, तो सब लोग पूजा पाठ करात हैं और उते पूरो वातावरण बिल्कुल वैसा ही है, तो तुम भी चलो और उते पे इतनी दान दक्षिणा मिल है, इतनी दान दक्षिणा मिल है कि तुम तो का अपनो पूरो गाँव कल्पना नहीं कर सकता है। अब चंदू की बातें सुन के जो चंपक हतु सो बाहे भी लगी कि

ई सही बात है, जब तक गांव के बाहर ना निकले हाथ पांव ने चले हैं तो कछु नहीं होन को। और बस चंपक ने चंदू के साथ काशी जावे को बिल्कुल पक्को निश्चय कर लो और अगले ही दिन वो काशी के लाने निकल पड़ो। अब भैया चंपक 2 बरस काशी में रहो, उते बाने अच्छी मेहनत करी, पंडिताई में बाहे खूब दान दक्षिणा मिली, बाहे लगत थू कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, और यही कारण वो दिन रात मेहनत करत थू, जहाँ पे जो कछु मिल जाए, जहाँ को लगे कि ते हमारी कमाई अच्छी हो सकत है उतई वो चल पड़त थू, चाहे कितई दूर हो, चाहे पैदल चलने पड़े, चाहे कितई मेहनत हो। बाने 2 बरस तक बिल्कुल चंपक ने खूब मेहनत करी और इतो धन बटोर लो जो उनकी बहने खुद भी कभू कल्पना नहीं करी हती। अब भैया रो देखो वो जो ही सोचे कि अब देखो जब अपने गांव वापस जाए हैं तो बाकी पत्नी कितनी खुश हुई है, खूब ही ज़्यादा खुश हुई है तो धन देख के। सो वो अपने गांव जावे की तैयारी करने लगो और फिर एक सुनार के पास जाके चंपक ने 2 सोने के हार बनवाए और जे जो हार बनवाए चंपक ने वे ओकी कहने चाहिए कि हार बनवावे में ओकी जितनी जमा पूंजी थी ज़्यादा से ज़्यादा यही में खर्चा हो गई, 2-2 हार बनवावे में, काहे कि एक उन्हें सोची मौड़ी के लाने बनवा दई हैं और एक तो अपनी पत्नी के लाने। अब जोन सुनार हतो तो वो देखवे में बड़ो बहुत भलो सो लगत थो, मनो वो थो बहुत चालाक, ग्राहकों से बहुत अच्छे शिष्टता से पेश आए, खूब अच्छे से बातचीत करत थो और उन्हें बार बार चक्कर भी नहीं लगवात थो, है ना। जब उनने कही कि कब दे हो बना के हार या कंगन कब दे हो, कि पहले ही बना के दे दे तो नियत समय के पहले, और चंपक के भी 2 ही हार बने बिल्कुल नियत समय के 1 दिन पहले ही बना दे और हार बिल्कुल ओसे ही बने जैसे कि चंपक चाहत थू। अब बराबर 100 लड़ियों के सही तौल, नगीनों की चमक ऐसी कि बिल्कुल ना पूछो, हार इतनो सुंदर बनो कि हम का बताएं। अब चंपक तो भारी खुश हतो, कहन लगो कि भैया देखो तुम तो बहुत ही भले आदमी हो और अबे तक हम जितने भी ऐसे दुकान वालों से मिले हैं सोना चांदी के दुकान वालों से, उनमें से तुम्हारी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता है। और खूब खुश होकर चंपक ने बाहे दाम के अलावा भी पुरस्कार के रूप में कछु और राशि दई और वो दुकान वालों भी चंपक को खूब आभार उन्हें मानो। अब जब चंपक अपने घरे पहुँचे तो इतने दिन बाद बाहे देख के चंपक की पत्नी और मौड़ी भी बहुत ही खुश भई। अब भैया देखो चमचमात भाई हार देख के तो दोइयों की प्रसन्नता 7वें आसमान में पहुंच गई। मौड़ी ने तो तुरंत ही अपनो हार पहनो और सखी सहेलियों ही दिखावे के लाने चल पड़ी। पत्नी ने भी हार पहरवे में देरी नहीं करी, मनो पड़ोस नो ही दिखावे जावे के बजाय बस चौका में जाके अपने पति चंपक के लाने खाना बनावे में जुट गई। अब चूल्हा के पास बैठ के भाने गले से अपनो हार खोलो और भाई हाथ में लेके ऐसी तोलन लगी, अंदाजा लगान लगी हार को सहलात भाई और उनको वजन को अंदाजा लगात भाई, भाई लगो कि कछु ना कछु तो गड़बड़ है ये हार में। फिर उन्हें सोची कि काय ना सोने की परख करी जाए, इमें हरज का है। सो उन्हें हार को 1 मन का तोड़ो और चूल्हा की आगे में डार दो। अब आगे में डार तई सीसी की आवाज आई और उनके संगे मन का से धुआं उठो और वो लाख के जैसे बिल्कुल जलन लगो। अब जो देख के तो चंपक की पत्नी सन्न रह गई और समझ गई कि बाकी भोले भाले पति चंपक ही चालाक दुकानदार ने बिल्कुल ठग लो है। अब अपने आप को संभालत भाई वह अपने पति के पास गई और बिल्कुल धीरज के साथ भाई उन्हें बताओ कि ओके संगे तो धोखा भाव है। जहाँ सुन के चंपक की तो जैसे होश उड़ गए कि भैया इतनी मेहनत से जो पैसा इकट्ठो करो तो वो चलोगा सबरो, और जहाँ सोच के बहुत ओखो गहरो सदमा लग गो, मेहनत की गाड़ी कमाई लाख के कछु मन को मैं गंवा दई बाने। अब तो भैया चंपक के वो दुकानदार के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगी और वो कहने लगो कि अब इन दुकानदारों पे भैया अब हम तो कभों भरोसा ना करें। अब 2-3 दिन बाद चंपक ने अपनी पत्नी से पूछी कि जा बताओ जब हम काशी गए हते तब तुम घर को खर्चा कैसे चलाती थी। सो पंडिताइन कहने लगी कि देखो मैंने एक अच्छी दुधारू भैंस ले ली मंदिर के पास, जो वो सोना चांदी की दुकान है उतई से खरीद ली है। अब तो चंपक से नहीं रहो गो, वो चिल्लाने लगो कि तुमने वो पुन्ना सरीके से भैंस खरीदी है, काई की इन पे तो भरोसा ही नहीं करने चाहिए। सो पंडिताइन कहने लगी वही सोना चांदी के दुकान वाले जो पुन्ना सरी थे उनसे हमने जब भैंस ली वह खूब दूध देते हैं और वो को जो घी है वो बेच के अपनो काम चल जाते है, सवेरे शाम 2-2 बाल्टी दूध देते है वह।
अब भैया चंपक कहन लगो कि तुम्हें हो का गाओ है, तुमने बाहर ध्यान से नहीं देखो का, बह असली भैंस नो ही जब भैंस लाख की बनी है। अब मतलब वो के मन में ना जा बैठ गई कि हमने जहाँ से गहना बनवाए हैं तुझे गहना सोना चांदी वाली जोन है बे सब रे ऐसा ही।

धोखा दे दिए थे। वो कि मन में जा बात बिल्कुल घर कर गई। अब जय कहने लगो कि देखो बा भैंस तो लाख ही की बनी है। अब पंडिताइन कहने लगी कैसी बात कर रहे हो, कछु भी कह रहे हो, लाख की भैंस भी कभी दूध दे सकत हैगा। तो चंपक जोन हतु अब को तो दिमाग बिल्कुल हो गो थो। तो वो कहने लगो कि तुम्हारी अकल पे तो पथरा पड़ गए हैं, ब दूध दे रही है तो का एको जो मतलब है कि ब लाख की जोन है ब लाख की नहीं है। तुम बिल्कुल हमसे बहस ना करो और जय जानो कि ब जोन भैंस है ब लाख की है। अब पंडितानी कहे कि भैया जी तो कैसी बातें कर रहे हैं। फिर वह कसम खान लगी, कहन लगी वह देख लो घास भी खाते है, जुगाली भी करत है, फिर वह लाख की कैसे हो सकत है। तो चंपक जय कहे कि तुम भाई तो नहीं जान रही हो इन लोगों की चालाकी। देख लो हमने सोने के हार बनवाए हते, सोने के ना बना के लाख के बना दे, तो तुम ऐसे कैसे कह सकती कि जब भैंस भी लाख की नहीं है। अब तो पंडिताइन जोन रही बहुत खींच गई, कहन लगी कि भैंस ने दो पड़ा भी तो जने हैं अपने घर ही में, चाहो तो चल के देख लो बाड़े में, बल्लाख की हो ही नहीं सकता है। अब तो चंपक जोन हतो वो खूब भड़क गओ, कहन लगो कि भगवान तुम्हारे दिमाग में तो बिल्कुल भूसा भरू है और जो पुन्ना सरों की चालें जोन है जा तुम नहीं जान सकता हो। तुम तो भोली भाली हो, यही से तुम्हें लगा था कि जब भैंस दूसरी भैंसों जैसी है, मनो सही में वास्तव में जा जोन भैंस है बनैया, और अब तुम चाहे कछु भी कहो हम तो मान ही नहीं सकें, जा लाख की बनी भई है ना। और खूब ज़्यादा दोइयों में ऐसे ही बहस होत रही। अब बेचारी जोन चंपक की पत्नी हती वह अपने पति चंपक की ज़्यादा सा देख के बिल्कुल तरस आ गो बाहे, और अब कहन लगी कि भैया अब तो चाहे कछु कर लो, जे तो बिल्कुल हमारे पति तो मान है नहीं कि जब भैंस लाख की बनी नहीं है। फिर भी बाने सोची कि काय ना एक आखिरी प्रयास और कर लो जाए और इन्हें जब बताओ जाए कि बस सच्ची की भैंस है बस लाख की नहीं है। सो बाड़े में से भैंस का को उठा ले के बा अंगना में लेके आई और भैंस के कान में हल्को सो चीरा लगाओ और अपने पति को दिखाओ कि देखो जी चीरा लगावे से देखो खून रिस रहो है जाके कान से। अब बताओ खून रिस रहो है तो जस सजीव है कि नहीं, जा जिंदा है कि नहीं, जा सच्ची में भैंस है कि नहीं। खूब बहू को भरोसा दिलाए मनोजोन चंपक। तो वो कहने लगो कि खून को लाल रंग देख के तुम हमसे बहस कर रही हो, तुम हो मूर्ख औरत, अपनी पत्नी से कहे। और वो बिल्कुल मान भी तैयार न, वो तो जय कहे कि जा जोन भैंस तुम लेके आई हो बा बिल्कुल असली नो ही बा लाख की है। अब बा बता जा रही है उनकी पत्नी की बा नहीं है लाख की, बस सांची की आए मगर भी नहीं। अब वो कहे थे कि का लाल रंग लाख को नहीं हो सकता है, हैं तो तुम जा हमें बिल्कुल बुद्धू ना बनाओ, काहे कि तुम तो बुद्धू बन ही चुकी हो और हम बिल्कुल अब धोखा ना खा हैं। माने उन्हें बिल्कुल गांठ बांध ली। अब जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे उनने भी खूब समझावे की कोशिश करी कि तुम्हारी भैंस सही की आए, असली है, सजीव है। मनो चंपक की धारणा टस से मस नहीं भाई, काहे कि मन में जब बात बैठ गई कि भैया देखो हमने इतनी मेहनत से पैसा कमाओ और चलोगे तो वो तो जय कहे कि जब भैंस तो सच्ची की हो ही नहीं सके, जब लाख की है। और भैया हरो फिर वो अपनी पत्नी से जय कहे कि तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो, जब दूध दे थे तो का भाव, जब घास चरा थे तो का भाव, वह पड़ा भी जन रही है तो का भाव। मनो तुम जे दुकान वालों की चाल नहीं समझ सकता हो, कछु भी कहो जा भैंस तो लाख की बनी है। तो भैया हरो जा कहानी कछु थोड़ी हास्यास्पद भी है थोड़ी, अब का बताएं ऐसो दिमाग उनको होगा कि भी सही की भैंस को माने नहीं रहे। तो जा थी आज की कहानी और चुन्नू मुन्नू अब लिख लो एक ठैया जो प्रश्न बन रहो है मैं। तो प्रश्न बन रहो है कि जे सुनार ने सोने के हार के बदले काय को हार बना के दाव हतो। एक बार प्रश्न फिर से सुन लियो कि सुनार ने सोने के हार के बदले काय को हार बना के दाव थो। तो ये प्रश्न को उत्तर आप औरों को 15 दिना के भीतर लिख के भेजने हैं और ये किलाने पता आप सब जानत हो, मनो फिर भी हम पता बताए दे रहे हैं। पता है कार्यक्रम कृषि जगत वसदेवा द्वारा केंद्र उपनिदेशक कटंगा आकाशवाणी पोस्ट बॉक्स नंबर 14 आकाशवाणी जबलपुर मध्य प्रदेश पिन 48201। तो पता आप और उन्हें यदि लिख लो है तो ठीक है, नहीं लिखो तो एक बार हम फिर से बोले दे रहे हैं। पहले प्रश्न सुनो कि सुनार ने सोने के हार के बदले काय को हार बना के दौ थो और पता है कार्यक्रम कृषि जगत
वसदेवा द्वारा केंद्र उपनिदेशक कटंगा आकाशवाणी पोस्ट बॉक्स नंबर 14 आकाशवाणी जबलपुर मध्य प्रदेश पिन 48200001। तो भैया हरो आज को कार्यक्रम आप औरों को वसदेवा कैसो लगो या जरूर चिट्ठियों में लिख के भेजने आप और प्रश्न को उत्तर सोई देने और चिट्ठियाँ डालत रहो तो बहुत अच्छो लगा थे। तो भैया देखो बात ही बात में हो गई।

है अब चलवे की बिरिया। तो हम वसुदेवा चल दे रे की अरे मोरे राम, सब रे भैया बहनन से गुड्डन जी जी की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत, मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजने वाले हैं श्रोताओं सुर्खियों में। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से हम रिले करेंगे।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, और लीजिए अब प्रस्तुत है समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा। ये कार्यक्रम
1: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग यू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर। पार्टिसिपेंट्स आर डॉक्टर वी के पॉल, फॉर्मर मेंबर नीति आयोग, एंड डॉक्टर एन के अरोड़ा, प्रेसिडेंट एम्स बिलासपुर। मॉडरेटर इज प्रियंका अरोड़ा।
3: स्वस्थ नागरिक किसी भी सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत ने पिछले 12 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन की एक नई गाथा लिखी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, गरीबों के लिए उपचार की बेहतर

0: व्यवस्था, आधुनिक अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों का विकास तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता दायरा, इन सभी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा और नई गति दी है। यही परिवर्तन आज करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति विषय पर आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: जी। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं, सबसे पहले डॉक्टर पॉल आपसे जानना चाहती हूँ कि पिछले 12 वर्ष में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आए सबसे बड़े संरचनात्मक बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं?
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विजनरी लीडरशिप में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनप्रेसिडेंटेड जो कभी नहीं हुए वो रिफॉर्म्स हुए और वो बदलाव आया है। इसके बहुत सारे डायमेंशन है, लेकिन मैं सर्वोपरि अगर उन डायमेंशन को देखूँ तो जो एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ी है
0: जी,
1: और जो हेल्थ केयर की वजह से जो बोझ पड़ता था नागरिक पे, खासकर जो गरीब परिवार है, इन दोनों में सुधार लाने के लिए, एक्सेस को बढ़ाने के लिए और जो आर्थिक बोझ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पड़ता था, उनमें जो कमी आई है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। इसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की नज़र से भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएँ मिले, और जब स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं तो व्यक्ति की और सिटीजन जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ये जब हुआ है वो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसी के साथ साथ उसी बजट स्पीच में 2018 के बजट के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब उनको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं
0: जी,
1: जो हमारी प्राइमरी केयर की व्यवस्था बनी और जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जो एक मैकेनिज्म बना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, मैं समझता हूं कि इन दोनों को जोड़ के देखूं तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जो सुधार और जो जन जन तक इसका फायदा हुआ है उसको मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ।
0: जी हाँ, यह भूतपूर्व पहल रही है और आज भी विश्व में सबसे बड़ी योजना के रूप में मानी जाती है। डॉक्टर अरोड़ा, अगर आपसे जानना चाहें तो जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछले 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं?
2: जैसे कि प्रोफेसर पॉल ने कहा कि एक आम व्यक्ति के जेब से आज से 12 वर्ष पहले अगर वो 100 रुपए डॉक्टर की इलाज पे या अपनी किसी बीमारी के इलाज पे खर्च करता था तो उस समय 60 रुपए उसकी जेब से जाते थे, आज ये घट करके 35-40 रुपए के बीच में आ गया है। ये एक आमूल परिवर्तन है। और दूसरी चीज जो डॉक्टर पॉल कह रहे थे, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनको इस स्ट्रैटेजिक तरीके से रणनीतिक तौर पर इनको बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं होती। यानी कि 2 किलोमीटर का जो दायरा है, रेडियस है, उस बीच में एक आयुष्मान मंदिर है
0: जी।
2: तो जिसको हम एक्सेस है या स्वास्थ्य सेवाओं की प्रति जो उसकी प्राप्ति के लिए उसकी जो सुविधा है वो उसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन किया गया है। दूसरा एक चीज और है, मेड इन इंडिया या भारत में निर्मित जो एक पूरा का पूरा अभियान चला है उसके अंतर्गत कई चीजें हुई हैं। और मैं यहाँ पर टीकाकरण क्षेत्र का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि अब इस देश में 100% जो टीके हैं वो भारतीय दिए जाते हैं
0: जी।
2: कोविड के दौरान जो 228 करोड़ टीके दिए गए वो पूरे के पूरे भारत में निर्मित थे, और उसकी वजह से जो देश में बचाव हुआ उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। एक और चीज करी गई है और जो मेड इन इंडिया की तरफ बहुत बड़ा कदम रहा है कि अनुसंधान में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे कि हमारी इलाज करने की तरीके, इलाज करने के लिए दवाइयां, इलाज करने के लिए वैक्सीन और किसी भी बीमारी के लिए अब भारत में सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें आशातीत वृद्धि हुई है। आज से 12 साल पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब किसी भी इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आए।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, और हम जब आयुष्मान भारत की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जाती है, तो ये किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुई है डॉक्टर पॉल?
1: हमारे देश में सुविधाओं

0: उदाहरण दिया कि जो बच्चा रह जाए, जिसको टीका नहीं मिला हो, उसको देने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जिनको टिटनेस का टीका नहीं मिला उनको भी देने का। लेकिन ये टीका खाली कहने भर से नहीं है, इस कार्यक्रम में जो नवाचार किया गया कि इस देश का हर बच्चा जो टीकाकरण के लिए उसका अधिकार था, उसको मैप आउट किया गया, उसकी पहचान की गई और उस तक पहुंचने का प्रयास किया गया। और यह जो प्रयास था, जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, ये हम सीखे खास तौर पे जब हम पोलियो उन्मूलन कर रहे थे। पूरे के पूरे टीकाकरण में हमारा अब हर बच्चा, हर महिला जो है हमारे एक तरीके से हाथ पे लिखा रहता है। और अब इसको आगे ले जा करके यूएन आईटी प्लेटफॉर्म है, जिससे कि हर एक एक हमारी रजिस्ट्री बन गई है, जिसमें बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है। लेकिन इसका मुख्य लाभ जो हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ता आई है, क्योंकि अब जब मैं बच्चों के तक पहुंचता हूं, गर्भवती महिलाओं तक पहुंचता हूं, तो खाली टीकाकरण नहीं है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बाकी जो समस्याएं हैं उनको भी वहां तक लेके जाने का प्रयास किया जा रहा। साथ ही साथ जो ये माइक्रो प्लान वाला सिस्टम है, इसका प्रभाव हमारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये खास तौर पे दो बड़ी बीमारियां हैं,
1: जी
0: ये भी अपने आसपास के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चारों तरफ लगभग 5,000 की पॉपुलेशन होती है, वहां तक पहुंचाने में भी इसी उपक्रम का प्रयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी नवाचार किया जा रहा है टीकाकरण में, उसका प्रभाव खाली बच्चों की और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ नहीं हुआ है, लेकिन बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो भारत का टीकाकरण कार्यक्रम है, वो हमारी सारी की सारी सरकारी जो जो भी हमारे कार्यक्रम है, अभियान है, उसमें सबसे ज्यादा कवरेज या पहुंच जो है टीकाकरण कार्यक्रम की है। इस देश के लगभग 97% जो टीकाकरण के अधिकारी हैं, उन तक कम से कम एक टीका लग चुका है। तो
1: जी
0: यही एक रास्ता है जिससे कि बाकी जो सेवाएं हैं उनको भी पहुंचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अभी डॉक्टर अरोड़ा ने आयुष आरोग्य मंदिरों की बात की और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिहाज से। और अभी देश में 1,70,000 से अधिक हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं। तो अगर बात करें आयुष्मान भारत, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि जो आयुर्वेद है और आयुष उपचारों को उसमें शामिल किया जा सके। तो सरकार कैसे आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा को एक साथ लेकर चल रही
2: मैंने
1: है?
2: आपके सवाल में दो हिस्से हैं।
1: जी
2: पहले मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो बात कही है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा।
1: जी
2: किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्राइमरी केयर होती है, प्राथमिक सेवाएं
1: जी
2: जो होती हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में प्राथमिक सेवाओं में जो सुदृढ़ता आई है, हमारे सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालों से काम निभा रहे थे, बिल्कुल लिमिटेड तरीके से, जितना भी कर पा रहे थे लिमिटेड था। 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको आज हम आयुष्मान आरोग्य मंत्र कहते हैं, उनकी संरचना, उनकी सोच लेके आए, जो एक लिमिटेड प्राथमिक सेवाएं होती थी, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ या संक्रमित बीमारियों की, इन्फेक्शस बीमारियां, कम्युनिकेबल डिजीज की, वो तो करना ही है, उसमें भी और डेप्थ और इंटेंसिटी लेके आए। लेकिन जो नहीं हो रहा था, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी इतनी प्रोमिनेंट है, कैंसर, अब ये सेवाएं प्राथमिक सेवाओं में आयुष्मान आरोग्य केंद्र में निहित हो गई कि हम इनको एक सीमित तरीके से, सीमित इन द सेंस कि पीरियोडिक,
1: जी
2: इतने साल के बाद हर व्यक्ति का एक चेकअप होगा, हर साल ब्लड प्रेशर चेक होगा, हर साल शुगर चेक होगी डायबिटीज़ के लिए, और कैंसर 3 साल में, 5 साल जैसा प्रोटोकॉल है, इस पर 3 कैंसर, मुँह का कैंसर, कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर लेडीज में, और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, इसकी सबकी स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को साथ में जोड़ा गया, आई आँख का इलाज, ENT कान का इलाज, नाक का इलाज, डेंटल हेल्थ, फिर एल्डरली केयर को भी जोड़ा गया इसमें। तो 12 पैकेजेस बने, शुरू के 5 पैकेजेस, 4 पैकेजेस के बजाय उसका आयाम बढ़ गया। अब और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 1,70,000 ये बने, उसमें दो तरह के हैं, एक सब सेंटर लेवल का होता है 6,000 पॉपुलेशन के लिए, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है लगभग 30,000 का, उसका दायरा होता है। कुल मिला के ये यूनिट बन जाता है।

0: है, एक पीएससी वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर और पांच या छह या चार या पांच सब सेंटर वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन जाए। अब बिल्कुल आश्चर्य भी होगा आपको, 1,20,000 नए मिड लेवल प्रोवाइडर्स, इनको करने के लिए टीम को बढ़ाया गया। हमारी पुरानी टीम थी आशा वर्कर थे
1: जी,
0: एक गांव में लगभग 1,000 की पॉपुलेशन पे, फिर हमारे पास एएनएम थे, कहीं कहीं मेल हेल्थ वर्कर होता था, लेकिन 1,20,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को लगाया गया है। इतनी रेवोल्यूशनरी बात है कि इतने संख्या में एक ह्यूमन रिसोर्स को प्राइमरी केयर के पीछे लगाया गया, और ये टिपिकली बीएससी पास हमारी नर्सेस होती हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और सब जगह पे टेलीमेडिसिन का प्रावधान हुआ
1: जी।
0: सब जगह पे 100 से ज़्यादा दवाइयाँ, सब सेंटर वाले में 105 दवाई और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 170 फ्री मेडिसिन, सब सेंटर वाले में 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्री और पीएचसी वाले में 42 से ज़्यादा फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रावधान किया गया है। तो सारे समाज को, सारे जितनी पॉपुलेशन है उसको एक सूत्र में बांध के कमिटमेंट है कि हम इनका चेकअप करेंगे, कमिटमेंट है कि हम उनको याद दिलाएंगे कि दवाई आपको फ्री मिल रही है, दवाई जब ख़त्म होती है तो अगली दवाई आप लीजिए, ज़रूरत होगी तो टेलीमेडिसिन के द्वारा जोड़ा जाएगा, और जो बाकी सेवाएं शुरू से हैं, इम्यूनाइजेशन है, मदर चाइल्ड हेल्थ है, टीबी कंट्रोल है, लेप्रसी, ये जो प्रोग्राम वो तो चलने ही हैं, उनमें भी ताकत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्लैनेट पर सबसे बड़ा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एक रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो आज हमारे देश में हो रहा है, और ये बहुत दूर तक हमें लेके जाएगा, क्योंकि क्रॉनिक बीमारियों को बचाने का तरीका सिर्फ यही होता है कि या तो वैसे ही हम अपने आप को, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, नहीं तो हम डिटेक्ट करें, और प्राइमरी हेल्थ के द्वारा डिटेक्शन भी हो, प्रिवेंशन भी हो, हेल्थ प्रमोशन भी हो, और ज़रूरत पड़े तो फिर ट्रीटमेंट भी हो, जिसमें फिर पीएमसी जुड़ जाता है।
1: बिल्कुल, देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है हमारे जैसे देश की, तो घर घर जाकर इस चीज़ की जांच करना और उनको बताना, रोकथाम के लिए उपाय बताना, तो ये बहुत बड़ी बात है।
0: दूसरी बात आपने कही कि हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ा गया, बहुत बड़ी बात है
1: जी।
0: ये हिस्टोरिक जब देखा जाएगा तो हिस्ट्री में ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में जो भारत का अपना सिस्टम थे, आयुर्वेद था हमारा, सिद्ध है हमारे पास, यूनानी है, ये सब हमारे भारत में पनपे हुए सिस्टम है, ये इन सब के जो योग है वो भी स्वास्थ्य के लिए भी और स्वास्थ्य से भी ऊपर का है, वो उन सब को एक मेन स्ट्रीम में लाना, उनको लिए बजट प्रदान करना, उनके सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और उनको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच में जोड़ना, और को जो बढ़ोतरी मिली है वो बहुत बड़ी बात है कि दोनों का समावेश हो, आधुनिक कार्यक्रम, आधुनिक पद्धति का भी हो
1: जी।
0: और ट्रेडिशनल का भी हो, ताकि दोनों मिलके एक व्यक्ति को, एक नागरिक को वो दे पाए जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा, स्वास्थ्य रहे, बीमारियां नहीं हो, मन भी अच्छा हो, तन भी अच्छा हो और आत्मा भी अच्छा हो, इन सब का जो जोड़ इंटीग्रेटिव अप्रोच में लेके आए हैं, ये भारत का मॉडल जो है ये दुनिया देखेगी। और आयुर्वेद का जो प्रचलन है वो बड़ा है, आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं, और बिल्कुल ये मेन स्ट्रीम में दोनों को ले जाने का जो माहौल बना है और जो ताकत आई है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है।
1: बिल्कुल, एक साथ ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अरोड़ा, हम जिसे बात कर रहे थे टीकाकरण की भी, तो इन दिनों सरकार जो कैंसर है उसकी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन पर, स्क्रीनिंग पर बहुत ध्यान दे रही है, और खासकर जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: वो HPV वाला टीकाकरण है, और इसके अलावा डॉक्टर पॉल ने 3 कैंसर्स के बारे में बताया, एक तो महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह वाला कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर है, उसी के लिए वैक्सीन है ये
1: जी,
2: उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और मुंह का कैंसर, और एक तीसरे कैंसर के लिए वैक्सीन ऑलरेडी दी जा रही है जो हेपेटाइटिस बी है, उसकी वजह से लिवर का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर की तरफ जो है, क्योंकि जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय में हम सब लोगों का ध्यान बहुत अधिक आकर्षित हुआ है कैंसर की बीमारी की तरफ, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, जल्दी पहचान के लिए, फिर इलाज के लिए, और इस दिशा में बहुत सारा काम किया गया है। तो एक तो स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और हुई है हमारे देश में इस पिछले 12-13 साल में, एम्स का संख्या 1 से बढ़कर के इस समय 23 एम्स हो गए, जो अपने आप में एक गजब की चीज है। कि और ये एम्स बड़े शहरों में नहीं करे गए, फॉर एग्जाम्पल झारखंड में देवघर करके एक जगह

0: है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता, मतलब
1: जी
0: ऐसी जगह किया है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन या पिछड़े इलाकों में किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में है, इसी तरीके से JNK में दो हैं, और बाकी पूरे कंट्री में इस तरीके से करे गए, और खास तौर पे ऐसे क्षेत्रों में किया गया है एम्स को स्टैब्लिश, जहां से ज्यादा लोगों के पास टर्शरी केयर, जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा
1: जी
0: उपलब्ध हो, और इनमें कैंसर के इलाज के लिए बिल्कुल आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध हैं इन सारे में। ये सब नए इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद कैंसर की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ अनुसंधान इस तरीके से किया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याएं हैं, और उसमें हमारे कुछ कैंसर स्थानीय तौर पे बहुत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो लेरिंजियल कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है, और सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज्यादा है। तो उन क्षेत्रों में उन पे विशेष तौर पे ध्यान दे करके उसकी स्क्रीनिंग है, उसके बचाव के लिए क्या तरीका किया जाए, उसके इलाज के लिए क्या किया जाए। और अब ये जो HPV वैक्सीन के बारे में आपने कहा, ये हमारी बच्चियों के लिए, 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए है, और ये वैक्सीन इतनी सुरक्षित है, और वैक्सीन मिलने के बाद कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह का कैंसर प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। इनफैक्ट WHO की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि ये वैक्सीन के साथ साथ अगर हम स्क्रीनिंग और इलाज करते हैं तो अगले 15-20 साल में इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कैंसर की तरफ जो है बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। कुछ बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बाकी सरकार जिनको सहायता कर रही है, जैसे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, इनके चारों तरफ पूरे देश में शाखाएं बनाई जा रही हैं, और कुल मिलाकर हर एक प्रदेश में कैंसर का एक रीजनल सेंटर बनाया गया है,
1: जी
0: जिससे कि लोगों को दूर दराज चल करके जाने की जरूरत ना पड़े और घर के पास ही ये सुविधाएं उपलब्ध हो।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर हम आज देखें, आज भारत डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और जो स्वास्थ्य ID जैसी पहल है, वो आम नागरिक के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से सरल और प्रभावी बना रही है?
2: भारत का जो डिजिटल हेल्थ की तरक्की हुई है वो दुनिया में बिल्कुल अलग और शायद सबसे आगे की तरक्की की तरह मानना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया और उसके जो डिफरेंट स्वरूप हैं उसमें एक है कि हमारे पास हर नागरिक का इवेंचुअली एक डिजिटल आइडेंटिटी होगा, उसको हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कहते हैं, आभा। तो आपको हैरानी होगी, 87 करोड़ व्यक्तियों का, नागरिकों का आभा आइडेंटिटी आज हमारे पास अवेलेबल है, 87 करोड़, 140, 145 करोड़ में से। इसका क्या फायदा है कि इस सिस्टम के द्वारा, इस आइडेंटिटी के द्वारा जो मेरे हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं वो उसके ऊपर लोड हो सकते हैं, वो पुराने नए अगले सब जुड़ सकते हैं, और जब किसी ने इसको देखना है और प्रस्तुत करना है और रिकॉर्ड की तरह भी है तो वो डॉक्टर साहब उसको देख के फैसला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हमारे और से और लोड होते जाएंगे, ये एक इनोवेशन का भी जरिया बनेगा, और इसमें बहुत सेवा की ईज जो है, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ, वो अचीव होगी। इसमें फिर जो टेली मेडिसिन में जो तरक्की हुई है, जैसे मैंने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टेली मेडिसिन हो गया है, हमारे पास ई संजीवनी एक टेली मेडिसिन है, रोज हजारों कंसल्टेशन उसके ऊपर होती हैं, हजारों, और उसमें इतने डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। उसके अलावा प्राइवेट स्पेस में टेली मेडिसिन हो रही है, इंस्टीट्यूशंस में एक रेवोल्यूशन आ गई है टेली मेडिसिन। उसके और डायमेंशंस भी हैं कि हॉस्पिटल की रजिस्ट्री बनेगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्री बनेगी, वो सब काम हो रहा है। लेकिन जो डिजिटल हेल्थ है वो एक हिस्सा बन चुका है हमारे देश में हेल्थ सिस्टम का। हम डिजिटल हेल्थ को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स को लागू करते हैं, हम बेनिफिशरीज को चिन्हित करते हैं, हम बेनिफिशरीज को फायदे के साथ जोड़ते हैं, उनको ट्रैक करते हैं। सो डिजिटल हेल्थ में जो इतना इतना बदलाव आया है और जो उसकी वजह से हेल्थ की एक्सेस बढ़ी है, एक्यूरेसी बढ़ी है, और जो इसका फ्यूचर पोटेंशियल है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और इसके आगे चलते हुए जब इस टेक्नोलॉजी को हम AI के साथ लिंक करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के और सॉल्यूशंस होंगे, तो मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल अग्रणी देशों में होगा इस काम में।
1: डॉक्टर अरोड़ा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इशू। व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 इयर्स?
0: वी हैव जस्ट सीन लास्ट 2 डेज सम ऑफ द रीसेंट डेटा। one of the key issues which has been bothering all of us was stunting in children. And stunting has been traditionally recognized as the

0: quality of health services. And during last, between NFHS 5 and 6, I think the stunting has decreased by 12 or 14 percent points. Now, this is remarkable because this is जिसको कहते हैं बिल्कुल फंसी हुई चीज थी, जिसको ठीक करने में बहुत ही मेहनत लग रहा था. और ये देश भर में पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उनके पोषण पे विशेष ध्यान देना, उस दिशा में जो काम हुआ है. तो अब हमने देखा है कि बच्चों में जो स्टंटिंग, हमारे यहाँ लगभग 50% बच्चे अपनी पूरी ऊंचाई को प्राप्त और लंबाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो अब आ गए हैं 29% पे लगभग. लेकिन अभी काम करने की जरूरत है, वो है अनीमिया, खून की कमी है. अब वो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी किशोरी बिटिया लोग हैं और बाकी बच्चों में ये अनीमिया की समस्या ऐसी है. इसकी तरफ जो है अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम आरंभ किया गया है और उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं. लेकिन वो विकास में और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि देश के डिफरेंट हिस्सों में अनीमिया के कारण अलग अलग हो सकते हैं और खाने में खासतौर पे उस चीजों का विशेष ध्यान रखना है. तो कुल मिलाकर के, और एक तीसरी चीज जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे रहा है, कि एक समय था जब हमारे यहाँ केवल 27% महिलाएं अपना प्रसव जो है एक संस्था में करती, चाहे
1: जी
0: सरकारी चाहे प्राइवेट में. आज वो बढ़ करके लगभग 95% हो गया है. ये भी एक अभूतपूर्व उपलब्धि है और इसकी वजह से नवजात शिशुओं की मृत्यु, असमय मृत्यु से उसको कम किया गया है. और साथ ही साथ जो हमारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, मैटरनल मोर्टैलिटी, वो एकदम नीचे आ गई है. तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि जो हमारी माताएं हैं और बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य में जो प्रोत्तर विकास हुआ है, उस विकास में एक तेजी आई है, मृत्यु दर में कमी हुई है, चाहे वो माँ हो चाहे नवजात शिशु हो. और इसमें भी हम लोग पूरी कोशिश की जा रही है कि 2030 तक, उससे पहले ही जो हमारे SDG गोल्स हैं, उनको
1: जी
0: हम प्राप्त कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन चीजों की उपलब्धि प्राप्त कर सकें जिसमें ज्यादातर देश प्राप्त नहीं कर पाए हमारी तरफ.
1: बिल्कुल। अगर डॉक्टर पॉल आपसे बात करूं, कोरोना के टाइम की जब कभी याद आती है तो अब भी जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस समय जो भारत की रणनीति थी उसको पूरे विश्व में सराहा गया, दो इट वॉज अ मेजर चैलेंज फॉर अस। सो व्हाट मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस द COVID-19 पेंडेमिक?
2: उसके बाद में हमने अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया. एक वन हेल्थ मिशन देश में लॉन्च किया गया. उसका तात्पर्य यह है कि जो महामारियां हम अभी देख रहे हैं पिछले दशकों में, और कोविड की महामारी को भी देखा और आगे देखते हैं, तो ये लगता है कि महामारी का जो ओरिजिन है, जो वायरस है, वो एनिमल किंगडम से आता है. बैट से, चमगादड़ से आता है, या बर्ड से आता है, चिकन से आता है. अब इन सब चीजों को समझते हुए क्लियर हो गया है कि हम एनिमल किंगडम से अलग नहीं है, हम वाइल्ड लाइफ के सिस्टम से अलग नहीं है, हम जो हमारा लाइफ स्टॉक है, घरेलू जानवर है, उनसे अलग नहीं है, हम एनवायरनमेंट, जंगल, इन सब से सभी जुड़े हुए. तो वन हेल्थ के अप्रोच के द्वारा इन सब सेक्टर्स को और इन सब डायमेंशंस को जोड़ के एक जो मिशन बनाया गया है, उनके अंतर्गत जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है कि कहाँ पे क्या बीमारी हो रही है, पशु में भी क्या हो रही है, ह्यूमन में भी क्या हो रही है, उसको जीनोमिक लेवल तक जाके समझना और उसके बारे में देखना कि वो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसको कंटेन कैसे करना है. तो ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम वन हेल्थ के अंतर्गत बनाया गया है. हमारे सर्वेलेंस की पद्धतियों को स्ट्रांग किया गया है. हमारे जो इंडस्ट्री है और साइंस एकेडमिया का सिस्टम है, उनको अलर्ट करके उनकी अप्रोच करा गया है कि जो वायरसेस महामारी का रूप दे सकते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं, उनके लिए अपनी रिसर्च को बढ़ाओ, उनके लिए तैयार रहो कि पहले से ही वैक्सीन की रिसर्च हमारी बहुत आगे तक हो, ताकि अगर मुसीबत आती है तो हम जल्दी से जल्दी 100 दिन के भीतर वैक्सीन को पैदा करने की ताकत रखें. इसके अलावा जो रिस्पांस है ग्राउंड से, जो रिस्पांस है हमारा, जो एक IDSP का सिस्टम है, 2 लाख से भी ज्यादा जगह से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, उसको सशक्त किया गया है. सिंड्रोमिक अप्रोच ICMR ने डिटेक्ट करने का सिस्टम को सशक्त किया गया. वेस्ट वाटर सर्विलेंस भी करा जाए कि सुएज में क्या वायरसेस आ रहे. काफी बड़े तौर पे इन सारे को, पिछले लेसन्स को लेकर और आज की साइंस को जोड़ते हुए हमने अपनी व्यवस्थाओं को बहुत स्ट्रांग किया है. और ये जो फ्यूचर के लिए हमारी बायोसिक्योरिटी

0: है, फ्यूचर के लिए हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है उसके लिए स्टेप जो है पूरे तरीके से लिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर बात करें आम आदमी को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, आवास मिल जाए और अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो और किफायती दाम पर जब आपको दवाएं मिलती हैं तो उससे बड़ी बहुत ही सुखद एहसास नहीं हो सकता एक आम आदमी के लिए। तो जन औषधि केंद्र ऐसे में कितने महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं?
0: जन औषधि केंद्रों के द्वारा हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो गुणवत्ता में पूरी उतरती है उनको उपलब्ध किया जाता है। देश में 19,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों का जाल बिछा हुआ है और बहुत तेजी से इसको 25,000 तक लगाने की प्लान है। इसमें हर रोज 10 लाख से ज्यादा व्यक्ति अपनी दवाइयां खरीदते हैं
1: जी।
0: किफायती दाम पे मिलती हैं। मार्केट में जो रेट होता है उससे आधी और कई दवाइयां तो सिर्फ 10% तक भी नीचे उनको उसका प्राइस से मिलता है। बहुत फायदा होता है। अगर हम देखें जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बचत भारत के नागरिक समाज को इस कार्यक्रम की वजह से उपलब्ध हुई है। और ये कार्यक्रम के द्वारा जो जन औषधि केंद्र हैं ये सब जगह, सब प्रदेशों में, सब जिलों में इसका डायमेंशन दिखाई देती है, इनकी प्रेजेंस दिखाई देती है। और दवाइयों के अलावा जो मेंस्ट्रुएशन के लिए पैड्स की भी उपलब्धि की गई है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, और जब से ये वाला कार्यक्रम शुरू हुआ है 105 करोड़ से ज्यादा सुविधा नैपकिन जो है मेंस्ट्रुअल नैपकिन दिए गए जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है। तो ये दो काम कर रहा है, एक तो गुणवत्ता की दवाइयां मिल रही हैं, दूसरा व्यक्ति को बचत हो रही है और तीसरा इसकी वजह से एक्सेस बढ़ती है, व्यक्ति सेवाएं ले पाता है, इस्तेमाल करता है तो बीमारी रुकती है और उसका जो जायजा है वो हम रुपयों में नहीं ले सकते। इतना बड़े भले का ये कार्यक्रम है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, नए भारत की जो स्वास्थ्य क्रांति की यात्रा है केवल नीतियों और आंकड़ों की कहानी नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन की गवाही भी है। डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आप दोनों का धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants were Dr. V.K. Paul, former member Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, president, AIIMS Bilaspur. Moderator was Priyanka Arora. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
5: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

0: तुम बता दो।
1: बता दूं? वो यहीं पर
0: है।
1: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

अजनबी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार का गाया। आनंद बख्शी के बोल थे, आरडी बर्मन का संगीत निर्देशन। अगला गीत मौसम फिल्म से, स्वर लता मंगेशकर का, गुलजार के शब्द मदन मोहन का संगीत।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में समाचार संध्या हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
2: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ इंजिन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
4: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
3: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की। दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप

0: hotmail.com or WhatsApp on 9289094044.
1: Spotlight.

मीडियम वे पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है धारावाहिक हंसना मना है। इसका आज आप सुनेंगे 4th भाग। आलेख हेमंत कुलकर्णी का, परिकल्पना विमलकांत येंडे की और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर बैजनाथ गौतम।

0: हंसना मना है, हंसना मना है, हंसना मना है, हंसना मना है।
1: काय कैसे आए?
2: कैसे आए मतलब?
1: हाँ?
2: हम
1: हाँ,
2: असल में हम कोई चीज समझने आए थे तुम्हारे पास।
1: हमारे पास समझ में आए थे?
2: हाँ, कछु समझ में आई। शहर में क्या हो रहा हो?
1: क्या हो रहा हो शहर में?
2: अरे
1: वही दंगा वंगा हो रहा होंगे हमेशा की तरह, और क्या।
2: नहीं नहीं,
1: हमें तो मालूम है।
2: नहीं नहीं, हमें दंगा वंगा से मतलब नहीं है।
1: हाँ।
2: वो तो भागवत कथा हो रही ना।
1: हाँ,
2: वो ये पूछ रहे हम तुमसे।
1: हाँ हाँ, हो तो नहीं
2: तो जो दंगा अंगा कहाँ से ले आए?
1: अरे अब जब भागवत हो रही तो महाभारत हो ही करेगी।
2: है?
1: और क्या? नहीं तो फिर
2: नहीं।
1: हाँ।
2: अच्छा, महाभारत भी हो रही है?
1: महाभारत, अरे मतलब कहने का, रोज ही तो कुछ ना कुछ हो ही रहा तुम्हारे यहाँ।
2: एक तो घंटा भर यार इतनी दूर से बैठो, तुम्हें मालूम नहीं है कि हमें सुनाई नहीं दे? जरा जोर से बोलो। नहीं।
1: हाँ
2: हाँ,
1: तो बोल रहे ना।
2: को बोल रहा हो?
1: अरे
2: को बोल रहा हो?
1: नहीं
2: हाँ?
1: तुम बोल रहे ना।
2: कौन को? हमने कहा बोली है? कोई हमने कछु नहीं कही।
1: अरे नहीं, तुम बोल रहे ना, जोर से बोलो तो हमें सुनाई पड़े ऐसा।
2: हाँ मतलब हमें सुनाई पड़ना चाहिए ना।
1: तो वही तो हम बोल रहे हैं ना, तो हम बोल तो रहे जोर से।
2: अच्छा बोल रहे हो तुम?
1: हाँ
2: हाँ बोलो।
1: हम जे करे यहाँ शहर में हम जब से आए, देखो जब तक हम गाँव में थे
2: हाँ?
1: खूब शांति रही।
2: अच्छा,
1: अपने बढ़िया सब लोग रहते, काम हो तो।
2: हाँ,
1: यहाँ शहर में लड़का को नौकरी लग गई ना।
2: अच्छा अच्छा।
1: हाँ,
2: पढ़ लिख गया मतलब लड़का?
1: हाँ।
2: अच्छा,
1: अरे वकील होगा
2: क्या? बता रहे
1: हो?
2: ताल ठोक रहे तुम, वकील होगा?
1: सही में वकील होगा?
2: अरे तो हमारा भी लड़का तो है वकील। कौन सी कोई खाब ऐसी बता रहे यार तुम?
1: नहीं तो जे हो रहे तो वकील माने, हमने उसे कही वकील मत बनो, डॉक्टर बन जाओ तो कुछ काम आए।
2: अरे एक देखो, तुम्हारे हमारे कहवे से नहीं होए।
1: हाँ।
2: भाई लड़कों बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कौन तरफी मन लग रहा हो, कौन तरफी नहीं लग रहा हो?
1: हाँ।
2: ये भी देखने पड़ा था ना।
1: अरे गजब कर रहे, आज ऐसा टाइम नहीं रहा।
2: अच्छा,
1: कि ये सब देखो कि लड़कों का मन कौन सी पढ़ाई में लग रहा।
2: अच्छा,
1: पढ़ाई नहीं हो रही तो मन लगे कहाँ से यार?
2: क्या बात कर रहे? नहीं, हमारे तो जो स्कूल है
1: उसमें
2: हाँ? तो अच्छी पढ़ाई हो रही।
1: काय की पढ़ाई हो रही?
2: अरे काय हाँ? की अंग्रेजी में पढ़ाई जा रही है, अंग्रेजी में।
1: तो वही तो हम कह रहे हैं ना, तुम समझा तो अंग्रेजी
2: को
1: तू।
2: नहीं, अपने टाइम तो हिंदी में पढ़ाई होती ना, वही पंचायत है।
1: हाँ।
2: अब हमारा वो नाती
1: हाँ?
2: वो भी अड़गाव।
1: हाँ।
2: अब वो हमारा लड़का
1: हाँ?
2: जो उनको वो लड़का है वो बहू। अब लड़का बहू भी पढ़े लिखे हैं।
1: हाँ,
2: अब भी और भी जिद पे अड़ गए हैं।
1: हाँ,
2: पढ़े हैं तो अंग्रेजी, पढ़े हैं तो अंग्रेजी स्कूल में डाल रहे हैं।
1: वो का कहा? केजी केजी।
2: हाँ हाँ, केजी
1: क्विंटल।
2: हाँ?
1: क्विंटल?
2: अरे नहीं यार, केजी बात अलग है, क्विंटल बात अलग। क्विंटल बांट में होते यार तुम। हाँ? हमें और बेहकर है बात में।
1: अरे तो मतलब केजी से क्विंटल की पढ़ाई होत ना?
2: क्विंटल उतने नहीं आए यार।
1: अच्छा,
2: अब तुम्हारे मारे हम भी कहो आधी आधी में रह जाए।

0: नहीं केजी कहती है, वो बात तो ठीक है, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा है बोले।
1: अच्छा
0: अब जिद में आ गए,
1: अंग्रेजी पढ़ेगो मोरो बबुआ, अंग्रेजी पढ़ेगो मोरो बबुआ।
0: वाह वाह वाह,
1: दद्दा मद्दा कचून के है फादर के है मोरो बबुआ।
0: वाह, एक काम करो, तुम आ गए हो है नहीं, हम कहो तुम्हें ले चले वही वाले स्कूल में।
1: कई गलन,
0: अरे छोटे छोटे बच्चा है पर तुमसे जे सारी बातें सुने है ना, मजा आ जाए।
1: अरे नहीं,
0: हमें जाए हो,
1: जे तो समाज का
0: भाव, अब हमारा लड़का
1: हो
0: वो भी वकील होगा।
1: अजा
0: अब तुम जो कह रहे हैं ना डॉक्टर डॉक्टर होने चाहिए, अब लड़का की जैसी बात रही वो आगे चल के कहना।
1: डॉक्टर देखो काम धाम करे थे कछु तो समाज को काम हो, जो वकील अब ये सारी खाल खेचे जबरदस्त।
0: बात करो तो तरीके से करो भाई, देखो जैसे तुम्हें लगत है कि डॉक्टर काम करत है तो क्या वकील काम नहीं करे का?
1: कहे
0: अरे बल्कि वकीलों में जो वकील ऐसो बड़ो वकील उसे बड़े वकील।
1: अरे मतलब वो तो कोई बड़े रहे तो सब बिल्कुल खेचे जा रहे,
0: खेचे जा रहे मतलब वो ही तो वकालत है।
1: अच्छा
0: वकील की आदत का होता है
1: हाँ।
0: सामने वाले को कोई बात पूछो कैसे कि उनके मन से असली बात निकलवाना है ना।
1: अच्छा
0: तो कोई आदमी अब जैसे हम ही तुमसे पूछे
1: हाँ।
0: क्या यार जो फलानी बात है ऐसा हाँ। क्या हो गया तुम्हारे यहाँ
1: हाँ।
0: तुम का बताओगे? तो हमें अगर तुम्हारे मन की बात निकलवा लेना है
1: हाँ।
0: सही बात जानना है
1: हाँ।
0: तो हमें तो एक ही बात को ध्यान रखना जरूरी है। तुमने कोई चीज बोली ओई के बात की आधार पे दूसरी बात हमने बोली
1: हाँ।
0: फिर कोई ना कोई बात निकल है तुम्हारे मन से
1: हो।
0: जे जो अच्छे से कर ले वो ही तो वकील है।
1: इसमें मगर वकीलों की पंचायत हो जाए कब कभी से मालूम
0: काय की पंचायत,
1: छिलका हो ना हो छिलक जाओ
0: कैसे
1: फंस जाते
0: हैं, का फंस जाते हैं। सुनो वकील फसन लगे,
1: हमारे गाँव में साहू जी रहे।
0: अच्छा
1: उनने एक वकील को अच्छी पटकनी दे दी।
0: हाँ हाँ मतलब बिल्कुल आखिर
1: आखिर में मकान है
0: बस्ती के बिल्कुल
1: हाँ।
0: जहाँ एक बार अपन गए थे
1: हो
0: वो बड़ो सो पेड़ लगो है उतनी की बता रहे
1: उतनी की तो बता रहे
0: हाँ है ना साहू को मकान है
1: हो, तो अच्छा, हो,
0: हाँ।
1: अब उनके यहाँ तो कोल्हू चलता है
0: हो।
1: अरे भाई कितने नामी आदमी है वे।
0: अरे साहू है मतलब
1: फिर
0: तीसरी पीढ़ी का है
1: हो। अब जब वकील आ गए पटेल का लड़का
0: हाँ हाँ हाँ
1: आज गांव में सबको जय राम जी करते हुए चले जा रहे थे।
0: चलो जे एक बात मतलब तुम्हारी मुंह से जे बात सुन के अच्छो लगो
1: हाँ।
0: मतलब जे नए जमाने के लड़का हैं
1: हाँ।
0: मनो गांव की संस्कृति तो कायम कहाई
1: हाँ।
0: पटेल को लड़का घूम बे गाँव
1: हाँ।
0: वो वकील
1: हाँ।
0: पर उन्हें सबसे जय राम जी की वगैरह करी बहुत अच्छी बात है अच्छी।
1: अरे हम लोग उसके जय राम जी बोलते वो तो खाली हाथ उठा के कहा दादा हाय
0: हाँ।
1: जो कुछ हम लोग उसको जयराम जी
0: नहीं, नहीं तो कोई हकाल थोड़ी रहो यार हाँ, तुम्हें हाँ, दादा तुम्हें। है मतलब तुम कोई ढोर जानवर तो है नहीं
1: नहीं का
0: शहर हाँ। में देखो यार जे मुड़ा मुड़ी अब पढ़ लिख गए हैं नौ जमाना आ गया
1: तो कोई बोला ही नहीं
0: है नहीं बोलो जात हाय
1: हाँ, बोलो
0: हम रहे हैं ना छह साल रहे हम बम्बई में हाय हाय हाय बोलते हाय लग गई मतलब
1: हमारे तो ऐसा ही हाय हाय कर ही रहे
0: हाँ हाँ तो वो ही आए
1: अब चलो सबसे मिलत जुलत
0: हाँ।
1: आज सब उनके साहू जी के घर के पास पहुंचो अब साहू जी देखो बाहर बैठे थे बढ़िया आराम से अपने नाश्ता पानी कर रहे थे।
0: अच्छा
1: जो कहे हाय साहू जी
0: हाँ।
1: साहू जी कहने खाओ अच्छी खुशी भाई आप वकील बन गए बड़ी मजा आ गई। जो कहने लगो नहीं आप फुर्सत में बैठे कोई काम धाम नहीं अब उन्होंने कही नहीं काम है ना कोल्हू चल रहा है तेल निकला मसाला डला है हम बैठे।
0: अब देखो अब तुम अब ये बात तुम हमें मिर्च मसाला से सुना रहे यार कुल मिला के हम समझ गए। देखो तुम जो हंसी आ रही तुम्हें कि साहू ने वो वकील ने उसे पूछी आराम से बैठे हो सो साहू कह लो कि नहीं काम चल रहा हो पर देखो वकील यानी वकील हम तो फिर पूरे नंबर दे हैं वो वकालत
1: हाँ,
0: हाँ। पास करके आओ है वो,
1: हाँ, वो
0: देखो बात पकड़ ली कि नहीं
1: हाँ,
0: मतलब हम जो कह रहे थे कि सही वकील तो वो है कि सामने वाले की कोई बात है वो पकड़ के और दूसरी बात
1: खेचो चाहे कछु हो जाए ना हो।
0: अरे यार तुम अपनी चला रहे बीच में
1: अरे हो तो हो भैया
0: वो वकील रहो तो बिल्कुल सही दिमाग से बात पूछी
1: बिल्कुल
0: भैया जब तुम इतने बैठे हो तुम हमें का जवाब दे रहे कि काम

0: रहा हूँ।
1: हाँ, तो कोल्हू ने क्या बताया उन्हें?
0: अरे तो काम तो आदमी कर रहे हैं।
1: अरे कोल्हू बोल है का कि हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं।
0: मत
1: साहू जी बोलेंगे ना।
0: हाँ तो साहू ने कछु बोली हुए ना?
1: बोला ना।
0: क्या बोली?
1: कि काम चल रहा, हम बैठे हैं।
0: काम कैसो काम चल रहा? वो जब बाहर बैठो है तो काम कैसो है?
1: यही तो वकील वही में घुस गाओ। कहना नहीं तुम बाहर बैठे फिर काम कैसे चल रहा?
0: हाँ बिल्कुल सही।
1: तो उन्होंने कहा अरे आप समझते नहीं हो भैया, उसमें मसाला डला है, बेल लगा हुआ है, बेल घूम रहा है, तेल निकल रहा है, हम अपने बैठे हैं।
0: अच्छा साहू बोले?
1: साहू बोले।
0: अच्छा
1: जो वकील फिर भी वही घुस गाओ। कहना नहीं मगर तुम्हें कैसे मालूम बैल घूम रहा हो कि नहीं?
0: बिल्कुल ठीक यार, कुछ भी कहो मतलब सही वकील है वो।
1: हाँ बिल्कुल।
0: हाँ पूछ ले ना
1: उन्हें। तुम्हें कैसे मालूम बैल घूम रहा है?
0: हाँ।
1: तो साहू कहने लगे यार गजब कर रहे भैया, तुम जरा से मोड़ा समझते हो नहीं, बैल के गले में घंटी लगी
0: है,
1: बैल घूम रहा
0: है,
1: घंटी बज रही
0: है,
1: हमें मालूम है कि तेल निकल रहा, काम चल रहा, हम बैठे।
0: हाँ ठीक है।
1: अब वो वकील फिर से नहीं मगर मान लो तुम्हारा बैल एक ही जगह खड़ा हो जाए और गर्दन हिलाता रहे, घंटी बजेगी, तुम समझोगे बैल घूम रहा, तेल निकला है।
0: बिल्कुल ठीक, पूरे के पूरे नंबर ले लाए पटेल के लड़का ने।
1: हाँ।
0: और सही वकील कहा वो।
1: हाँ।
0: बैठे बैठे हमारे भी दिमाग में यही बात आ रही थी।
1: अच्छा
0: कि अगर तुम जे ना बताते तो हम तो कहते कि वकील को चाहिए कि वो फट से घुमा के पूछ ले।
1: हाँ।
0: कि तुम्हारा बैल एक ही जगह खड़े होकर गर्दन हिलाए, घंटी
1: हाँ।
0: बजेगी।
1: हाँ।
0: तुम बाहर बैठ के यही समझ रहे कि कोल्हू चल रहा हो, तेल निकल रहा हो।
1: यही तो पटक नहीं देता साहू जी ने।
0: काय की पटक?
1: साहू ने फट से बोला कि वकील साहब हमारा बैल बैल ही है, वकील नहीं है।
2: हंसना मना है,
3: हंसना मना है,
2: हंसना मना है,
3: हंसना मना है,
2: कोशिश कोई ला करे, कहता रहे कि हंसना मना है मगर लोग हंसेंगे खिलखिलाएंगे। एक बात तो आपसे खास तौर पे कहना हम भूल गए कि इस कार्यक्रम का नाम है हंसना मना है।
0: हाँ जे बात जम गई यार। अच्छा ऐसे है तुम कह रहे कि वकील ऐसी होते
1: हैं? हम शहर में जब से आए ना
0: है?
1: हम यही से परेशान हो गए।
0: अरे
1: यहाँ काम धाम में मन नहीं लगे। गांव में जब हम कितना काम करते थे, समाज सेवा करते थे, किसी बात
0: तुमने अच्छी बात बताई। सुनो ना, समाज सेवक तो हो तुम
1: हो,
0: गांव में तो बड़ी पड़ी रहती तुम्हें
1: नेताजी
0: की। हमने देखो है ना, हमने देखो है नहीं, गांव में चाहे जो का है बड़ा को पेड़ है, चलो एक ठो चबूतरा बनवाने तुम्हारी नेतागिरी चालू। हमने तो देखो है बचपन से देखो है, कहूँ जो मंदिर बनने नेतागिरी चालू, कहूँ जो फलानो काम करने है, तो मतलब सामाजिक काम तुम करवो जाना था।
1: बिल्कुल जानते हैं भैया।
0: तो अब जी जी चुनाव उनाव आ रहे हैं, तुम चुनाव लड़के समाज सेवा में काहे नहीं लग जाए?
1: तुम तो मजाक कर रहे यार हमारे।
0: अरे मजाक काहे को, अरे सही बात है भाई, तुम्हें समाज को काम करवे की रुचि है ना, समाज में रहने भी है, लोग बाग तुम्हें नेताजी भी कहे जे भी चाह रहे, और तुम्हें जे अच्छी मोटर में घूमने भी है, तो यही से हम कह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है, चुनाव लड़ जाओ।
1: नहीं
0: है नहीं काय,
1: हम जब नौकरी करत रहे
0: हैं
1: तब हम जो चुनाव का चक्कर देख चुके।
0: कैसे?
1: हम परेशान हो गए रहे।
0: अच्छा।
1: और तब से हमने तय कर लो भैया चुनाव उनाव हमको नहीं लड़ने, जबरदस्ती से
0: काय हो का गाँव मतलब।
1: अरे भैया तुम समझते हो नहीं क्यों बात को?
0: अरे समझते,
1: हम तो नौकरी किए है ना, हमें मालूम है, हम बहुत परेशानी में रहे।
0: अरे का पर, या तो परेशानी बताओ तब तो हमारी समझ में आ।
1: अरे भाई अब तुम्हें क्या बताए हम, अने हम उस समय आज देखो वो बात टूटे हम की है जब हमारी नई नई शादी हुई रही।
0: अच्छा।
1: हाँ वो टाइम हम नौकरी भी करत रहे।
0: अच्छा। हाँ
1: नौकरी करत रहे ना।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: रेलवे में रहे।
0: हाँ, मालूम है।
1: झंडी बताउते।
0: हाँ, हाँ,
1: जब भाई गाड़ी निकलती।
0: हाँ, हाँ,
1: हाँ, फिर
0: नहीं अब काफी बड़ी जगह पे काम करो तुमने।
1: अरे कई जगह
0: कैसे, जो लोग तुम झंडी ना बताते हो गाड़ी नहीं निकलत,
1: नहीं निकल है बिल्कुल से।
0: साहब रहे का तुम?
1: नहीं तो
0: पोर्टर
1: रहे, पोर्टर।
0: अच्छा अच्छा।
1: पोर्टर रहे।
0: अच्छा
1: तो झंडी तो भी झंडी बताने वाला।
0: अच्छा
1: फिर।
0: हाँ,
1: आज जंगल में गाड़ी जा रही।
0: हाँ,
1: झंडी को बदे।
0: हाँ,
1: पोस्टर बताओ।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ फिर
0: तो जंगल में रहने पड़ा।
1: अरे फिर ये जो है ना अपने गांव के पास रेल लाइन डली है ना।
0: हाँ, हाँ।
1: जे रेल लाइन जब डली रही।
0: हाँ,
1: जब हम नौकरी में रहे।
0: रेल लाइन डली रही।
1: हाँ?
0: तब तुम नौकरी में रहे।
1: हाँ,

0: मतलब रेल लाइन डाली जब नौकरी में रहे ना, रेल लाइन कब डाली अपने थे?
1: नहीं जी तो हमें भी नहीं मालूम।
0: अरे गजब कर ले, तुम तो रहे उसमें, मुन्ना के लड़की की शादी हुई रही ना, तब ये रेल लाइन नहीं डली थी यहाँ पर?
1: अच्छा
0: मुन्ना
1: हाँ।
0: की लड़की हाँ। मजली वाली
1: अच्छा।
0: बड़ी तो मर गई रही जो मजली वाली हुई रही।
1: अच्छा हाँ, हाँ, हाँ।
0: मजली वाली की शादी होने जो उनमें बारात लुट गई थी।
1: कौन की बारात?
0: मुन्ना के लड़की की बारात आ रही थी।
1: कौन मुन्ना?
0: हाँ
1: मुन्ना।
0: अरे जो अपने वो मकान है ना पीपल वालों,
1: हाँ हाँ
0: ऊंची अटरिया बनी है जो।
1: हाँ बस बिल्कुल स्कूल के बाजू से जहाँ है।
0: स्कूल के बाजू से नहीं
1: हाँ।
0: इधर नल के बाजू से।
1: अच्छा अच्छा हाँ वो हाँ ठीक है, वो नल लगो है
0: हाँ,
1: वही के बाजू से सड़क जा रही जहाँ।
0: हाँ हाँ
1: उतना की कह तो रहे हैं ना,
0: ऊंची अटरिया का मकान है ना।
1: हाँ हाँ
0: वहाँ पर वो मुन्ना का मकान है।
1: अच्छा
0: तो मुन्ना की मंझली लड़की बड़ी लड़की तो मर गई थी।
1: हाँ
0: है जब हरो बड़ी लड़की को।
1: अरे तो वो रेल लाइन को
0: करिया लड़की रही भैया।
1: हाँ
0: माने वो लड़की को तुमको हम बताए भैया, खूब गजब की लड़की।
1: अच्छा
0: और ऐसी लड़की माने अरे हर काम में तेज।
1: अच्छा
0: हाँ।
1: कैसे?
0: शादी भाई दूसरे दिन घरे वापस।
1: हर काम में तेज,
0: तेज।
1: अच्छा
0: हाँ।
1: शादी हो गई तो दूसरे दिन घरे आ गई हो तुम हमें बता रहे
0: हाँ। ओके बाद तो मर गई।
1: अच्छा अच्छा
0: तो ओके छोटे बहन की शादी होने वाली रही, ओके बारात लुट गई रही। टेम जल्ले अंडली रही तो
1: अच्छा,
0: हम वहाँ रहे
1: है तुम्हारा के मतलब कुल मिला के तुम जे या बता रहे रेल लाइन कब डली थी।
0: हाँ।
1: है तुम्हारो की हमें तो वो बात बताओ यार, तुम बोल रहे ना झंडी दिखाते तुम
0: जाओ
1: तो क्या भाव?
0: फिर कहो, हमें तो समाज सेवा शुरू से करने की आदत
1: है,
0: सब समाज सेवा भी करते रहे नौकरी भी करते रहे।
1: अच्छा
0: उस समय ये
1: पर, नहीं पर हमने सुनी है नौकरी समाज सेवा ऐसे दो ही काम इकट्ठे नहीं कर सके।
0: तो हम दो काम इकट्ठे करते ही नहीं थे।
1: अच्छा
0: अगर नौकरी में गए
1: हाँ।
0: तो समाज सेवा बन,
1: ओह वाह,
0: और अगर समाज सेवा कर रहे
1: तो नौकरी पे नहीं,
0: नौकरी बन।
1: ये उमदा है।
0: अरे हमारी पहुंच रही भाई
1: हाँ।
0: बड़े बड़े साहब लोगों से
1: हाँ, हाँ।
0: उनके घर में आवे जावे हम बिल्कुल
1: एक
0: भीतर
1: एक, तुम हमें का बिल्कुल बेवकूफ समझ रहे का?
0: नहीं तो
1: नहीं तुम क्या, अरे नहीं तुम नहीं हंसबे की बात नहीं है।
0: अरे नहीं हंस नहीं,
1: गलत बात है। तुम हमें बता रहे हो जंगल में तुम पोर्टर रहे, हरी झंडी बताते हैं, तो फिर बड़ी पहुँच कहाँ हो गई?
0: अरे ले गजब कर,
1: जंगल में आदमी रहते हैं कि जानवर वगैरह रहते?
0: अरे तो हमार ड्यूटी जंगल में रही।
1: हाँ
0: करते थोड़ी रहे।
1: अच्छा अच्छा
0: समाज सेवा करत रहे ना।
1: हाँ बराबर। अच्छा फिर हाँ फिर
0: अभी साहब लोगों से पड़ जाए उनके घर तक भीतर को जाते हम।
1: अच्छा
0: हाँ हाँ फिर सत्ता से चुनाव हो रहे
1: हाँ,
0: तो वो समय हम फटका खा गए।
1: कैसो फटका बताओ तो, हम नहीं रहे हम सुने तो यार जरा हाँ। नहीं नहीं तो हमारी तो बिल्कुल दिली इच्छा है, आ गए हो चुनाव पास में है, तुम्हें समाज सेवा की मतलब चाह भी है, करत रहत हो
0: हाँ।
1: चुनाव लड़ जाओ हम तो क्या
0: है? सब मालूम है, सब भाई बोलते हैं मालूम। हाँ।
1: मैं तो कब पटक नहीं खा गए
0: और का नहीं था
1: का हो का गाँव यार
0: का
1: हाँ।
0: एक बार हमारे गांव में
1: हाँ।
0: चुनाव होने वाले।
1: अच्छा
0: म्युनिसिपैलिटी के
1: हाँ।
0: अब म्युनिसिपैलिटी के चुनाव होने वाले।
1: अच्छा
0: जैसे डोड़ी बजवाई गई चुनाव होने वाले चुनाव होने वाले, तो गांव भर में चुनाव की धूम मच गई।
1: वो तो है,
0: छोटे से लेके बड़े तक
1: हाँ।
0: मंझले से लेके बूढ़े तक
1: हाँ।
0: सबके सब ताल ठोक के खड़े हो गए
1: हाँ।
0: हम भी चुनाव लड़ेंगे हम भी चुनाव लड़ेंगे जो देखो वही सफेद कुर्ता ले आओ, सफेद पजामा ले आओ, पहन लो, नेता बन गए, चलो चुनाव लड़े
1: हाँ।
0: आ रहा है गांव के लड़का हमको खूब चाहते।
1: अच्छा
0: कक्का खेत थे बचपन से हमको।
1: अच्छा अच्छा
0: हमको बचपन से कक्का खेत थे।
1: नहीं क्या भाव अबे कोई आओ अपने गांव से
0: हाँ।
1: वो शायद तुम्हारे बारे में फिर बात कर रहा हुए
0: कर रहा हूँ
1: कक्का ने जयराम बोली है कक्का ने
0: हाँ।
1: अच्छा अपने बीच में कब हम कक्का का जे बात तो
0: अरे शहर में काय को कक्का और काय को बक्का
1: हाँ।
0: शहर वाले कहाँ जा रहे हैं
1: हक्का बक्का है वो तो
0: वो तो
1: अच्छा फिर
0: हाँ उन्होंने कही कक्का कह था हमको गांव के लड़का
1: समझ गए ना
0: चुनाव की जोड़ी बढ़ गई
1: हाँ।
0: आम चुनाव में सब बढ़ गए ओ को पोस्टर टांग रहे ओ को झंडा टांग रहे

0: चार पांच लड़का हमारे पास आ गया, कहले कक्का तुम तो बहुत बढ़िया हो, बिल्कुल समाज सेवा कर रहे हो, समाज सेवक हो, चुनाव खाने लड़ जाते,
1: बिल्कुल ठीक,
0: मोटर तुम्हारे दरवाजे में रहेगी।
1: हाँ बढ़िया बढ़िया।
0: और ये थोड़ी देर तो अपनी भी आत्मा गिल्ल हो गई।
1: नहीं सवाल नहीं, और तुम्हारे जैसे आदमी को आने चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल, तो हमने तय कर लिया ना।
1: हाँ।
0: मैंने कहा छुट्टी के हम लड़ लेंगे चुनाव,
1: बिल्कुल।
0: तो हमने कहा एक काम करो यार, तुमने अच्छी खबर लाई, हम चुनाव लड़ेंगे, जरा हम अपने लुगाई को बता रहे।
1: अच्छा,
0: हमारी शादी हो गई थी वो टाइम, हमारी शादी हो गई, माने शादी हो गई हमारी वही टाइम,
1: ओके बाद चुनाव आए।
0: हाँ हाँ, ओके बाद चुनाव आए,
1: है ना।
0: अच्छा अब भाई पहले चुनाव तो वही भाव, शादी को बड़ी मुश्किल में लड़की चुनी होने।
1: अच्छा वैसो चुनाव।
0: हाँ, हाँ,
1: हम का समझे कि पहले भी चुनाव भाव तो
0: नहीं, नहीं।
1: हाँ चुनाव भाव। हाँ
0: हमने लड़की चुन, अरे हमारे बाप हमको ले गए।
1: अच्छा,
0: पांच दस लड़की दिखाई।
1: हाँ,
0: हाँ। तो में एक लड़की हमने छांट लाई।
1: अच्छा हाँ, तो चुनाव होगा। बिल्कुल ठीक।
0: उसके बाद शादी हो गई। आज ये लड़का शादी कहने लगे तुम चुनाव लड़ जाओ। तो मैंने कहा भाई लड़ सोचे, नौकरी लगी हमको सरकारी, लफड़ा ना हो जाए, हम अपने लुगाई को बता दे। तो मैं झट्टे भीतर गाओ और मैंने लुगाई से कही कि सुनो हम चुनाव लड़ने जा रहे। अरे हमने बताई खुश होना तो दूर, वो यहाँ से पेपर गई, हमसे तो जीत नहीं पाए और बाहर लड़ने जा रहे हो।
1: ये भी कूद रही है पर।
0: मैंने कहा यार ये ऐसी लड़ाई नहीं है, ये वोट वाली लड़ाई है, अगर हम जीत जाएंगे म्युनिसिपैलिटी के मेंबर बन जाएंगे तो मोटे दरवाजे में खड़ी रहेगी।
1: ये तो है।
0: अब हमारी लुगाई कहने लगी सुनो, बड़ी मुश्किल में लोगों को जैसे आजादी मिली है वैसे तुमको सरकारी नौकरी मिली।
1: हाँ ये बात तो सही है।
0: एक काम करो, अगर चुनाव में हार गए तो मोटर भी गई और नौकरी भी।
1: बिल्कुल।
0: एक काम करो, तुम्हारी इच्छा है मोटे दरवाजे में खड़ी होना चाहिए ना, तो तुम हमको लड़वा, हमारी लुगाई कहने लगी।
1: अच्छा।
0: हमको चुनाव लड़वा।
1: अरे वाह।
0: हम तो फुर्सत में। मैंने कही बहुत बढ़िया बात यार, हिंग लगे ना फिर करे रंग चौखा।
1: मतलब पढ़ी लिखी है क्या?
0: थोड़ी बहुत।
1: अच्छा।
0: थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं।
1: हाँ
0: जैसे उन्हें कही तो मैंने कही बिल्कुल मैं बाहर आओ। हाँ। और फट दो लड़कों से बोली सुनो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारी लुगाई चुनाव लड़ेंगे।
1: मतलब काकी
0: काकी चुनाव। अरे लड़का बच्चा खुश, उछला नगर बल्ली के कक्का चिंता न करो, काकी को काम हम करें, काकी को काम हम करें। लड़का बोला
1: अच्छा।
0: और गांव भर में चुनाव के वे झंडा रहे ना टांग रहे कपड़ा पे लिख के, काकी को बोल दो, काकी को बोल दो।
1: बराबर।
0: फिर मैंने अपनी लुगाई से कही सुनो चुनाव में फार्म भरना पड़ता है, तुम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो तो ऐसा करेंगे हम तुम्हारा फार्म भर देंगे, चिंता मत करना। फिर एक दिन का भाव हम लुगाई को लेके कलेक्टर पहुंच गए।
1: हाँ उते तो जाना ही पड़ा था, फार्म तो
0: फार्म वही बोले।
1: हाँ।
0: अरे हम तो सब जानते थे।
1: हाँ।
0: समाज सेवा।
1: अरे पुराने
0: झट फार्म ले आए।
1: अच्छा।
0: उससे में हमारे दफ्तर को टेम हो, तो मैंने लुगाई से कही सुनो जो फार्म रख रहे हो हम अपने दफ्तर होके आ रहे, फिर फार्म भर दे।
1: हाँ, बाद में भर दे।
0: मैं चलो दफ्तर।
1: अच्छा मतलब वो तो पास ही में रहोगे।
0: पास ही में, माने जे इनका दफ्तर है।
1: हाँ।
0: अब वो हमारा दफ्तर है।
1: नहीं और एक बात जरूर है।
0: हाँ।
1: जे अब तुम बता रहे सो है, अपन तो दोस्त कहा है। हाँ। सरकारी नौकरी के मामले में।
0: हाँ।
1: बाकी दिन भर तुम उते बैठ के काम करो चाहे ना करो, दस्तखत बिल्कुल समय पे करने पड़ा।
0: बिल्कुल भाई, बहुत जरूरी। तो हम गए अपने दफ्तर में काम करो थोड़ा बहुत, और साहब से कही के हम आप तैयार है।
1: अच्छा
0: आ मैं आओ। आज जैसे ही आओ तो लुगाई से कही कि चलो जल्दी से फार्म भर दे। तो लुगाई कहने लगे बड़बड़ा मत बड़बड़ा मत, हल्ला नहीं करो हमने फार्म भर दू। अरे मैं तो सोटो होगा बार।
1: हाँ, हाँ।
0: दस निकल गए पांच बजे।
1: पढ़ी लिखी तो है नहीं।
0: हाँ मैंने कही तुम तो पढ़ी लिखी नहीं हो। फिर हमारी लुगाई बड़ी होशियार झट से मारो, अरे खंकार के कलेक्टर को डर नहीं आओ।
1: अच्छा
0: हमारे लुगाई खकार के कैद, ज्यादा हल्ला न करो बड़बड़ा मत हमने फार्म भर दो। मैंने कहा कैसे भर दो।
1: हाँ, कैसे भर दो।
0: कहने लगे जी हमारी सहेली आई रही।
1: हाँ।
0: इनने भरो तो मैंने भी
1: कैसे, वो में तो बहुत सारी जानकारी होते
0: है,
1: कहाँ पैदा भाई कब पैदा भाई वो फलानो
0: ढेर वही तो मतलब भैया।
1: अच्छा फिर
0: आओ लुगाई कहने लगी हमारी सहेली ने भरो।
1: हाँ।
0: उनको देख के मैंने भरो।
1: अच्छा।

0: कि बता।
1: हाँ जी
0: मैंने फॉर्म देखो।
1: हाँ
0: अब हम तुमको क्या होता है, हम जो झटका खा गए रहे हमारे मन।
1: अरे अरे अरे का नहीं
0: बहुत खराब लगे।
1: नहीं क्या बात भाई, क्या होगा?
0: अरे भाई हम क्या बताएं।
1: हाँ
0: उनकी सहेली थी विधवा।
1: अच्छा
0: तो इनने भी अपने फार्म में विधवा लग जाओ। मैंने कि बताओ ये तुमने क्या बड़ा विधवा लिख दिया। तो वो कहने लगे हक्का होते, उनने भी तो लिखा है। अरे मैंने कहा जाओ कर ले, वो तो विधवा है ही।
1: हाँ।
0: हम जिंदा खड़े हो तुमने विधवा लिख दाओ। तो कहने लगे अच्छा जो मतलब हो थे
1: बताओ।
0: मैंने कहा हो के बताए।
1: अच्छा फिर नहीं अरे पर चुनाव को फार्म है वो तो गड़बड़ी हो गई। मतलब
0: गड़बड़ी हो गई।
1: अच्छा फिर
0: मैंने बताओ सब सत्यानाश कर दो।
1: और नहीं तो क्या?
0: तो कहने काय को चिल्ला रहे
1: हैं,
0: तुम तो बोल रहे थे कि कलेक्टर समाज दोस्त से।
1: अच्छा
0: जाओ। अब दोस्त माने हमारे साहब को दोस्त है तो हम उनके दोस्त का है। जो मतलब है
1: नहीं बिल्कुल ठीक।
0: तो मैं कलेक्टर के बाद गया। मैंने कहा देखो यार ऐसी गलती हो गई, हमारे लोग आई ने धोखे से
1: होगा
0: इसको अगल कर देगा। तो कहना देखो भाई तुम्हारी हमारी दोस्ती ठीक है और कानून में हमारे हाथ भर ले।
1: कलेक्टर
0: यही तो पटक नहीं खा गया हूँ।
1: कैसे हम नहीं समझे?
0: वो कहना कानून में हमारे हाथ भर ले। मैंने कहा कहने भाई जब तुम्हारा उम्मीदवार अपने आप को विधवा कह रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते।
1: अरे
0: हम जिंदा खड़े हो कोई मतलब नहीं।
1: हाँ कैसे कागज पे तो लिख गए
0: और कहो आदेश निकाल देते तो लोग हमको फूंक देते।
1: फिर
0: मैंने कहा नहीं भाई पैसा बर्बाद हो जाएगा काम।
1: बिल्कुल
0: कहने कोई अर्जा नहीं दूसरा फार्म भर दो। मैंने कहा बढ़िया मैं आ तो मैंने लुगाई से कही कि सुनो कलेक्टर बड़ा अच्छा आदमी कहना कोई बात नहीं गलती हो गई तो दूसरा फार्म भर दू। चलो अपन दूसरा फार्म भर दू।
1: और क्या
0: हमारी लुगाई तुम तो जाना खूंखार। फिर खखार के कहना तुम्हारी अकल में तो पसरा भरे। मैंने कहा गजा कले हमारी अकल में काय तो पसरा
1: भरे।
0: मैं भी चिड़का भाई
1: भाई वो कलेक्टर कह रहा है बिल्कुल ठीक।
0: मैंने कहा कैसे पसरा भरे? कहने तुम्हें अकल नहीं है चलासी भी। अब बता हमारी अकल कलेक्टर के भीतर हमारी अकल निकाल यार। हम सरकारी नौकर हमारी अकल निकाल ले।
1: अच्छा
0: मैंने कहा कैसी बात कर रही कलेक्टर बोल रहा है दूसरा फार्म भर। वो कहने तुम्हें अकल नहीं है। मैंने कहा काय की अकल नहीं है? कहने के देखो अरे तुम्हें क्या मतलब है मोटे दरवाजे में खड़ी करना है तो तुम काय को परेशान हो रहे। जब कलेक्टर तुमको मरो मान रहो है तो चुनाव तक तुम मरे रहो तो हर्जा क्या है?
1: अरे वाह
0: बताओ ठीक नहीं मजे की बात। अरे मैंने की कैसी बात करती हो? वो कहने की तुम समझे नहीं। अगर तुम चुनाव तक मरे रहो तो हिंग लगे ना फिट करी रंग चौखा।
1: कैसे?
0: कहने लगे रुपया की चिंता नहीं मोटे दरवाजे में ठाड़ी।
1: अरे
0: की कैसे
1: खर्चा
0: देखो अब कलेक्टर तुमको मरो मान रहा हूँ।
1: बिल्कुल
0: हम कलेक्टर के पास जाके तुम्हारे मरे को सर्टिफिकेट ले आओ और तुम्हारे दफ्तर में जाके जमा कर दे थे और तुम्हारे सबरो फंड निकाल के चुनाव में लगाए दे। अगर चुनाव जीत गए तो मोटू दरवाजे में ठाड़ी और अगर नहीं जीते तो तुम मरे हो तुम्हारी जगह पे हम नौकरी कर ले।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक हंसना मना है। इसका आज आपने चौथा भाग सुना। आलेख हेमंत कुलकर्णी, परिकल्पना विमलकांत येंडे और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर बैजनाथ गौतम। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे, बस थोड़ी ही देर में।

0: अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए विशेष पहचान प्राप्त है। आपके संगीत में मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है, साथ ही उसमें आधुनिक श्रोताओं को आकर्षित करने वाली नवीनता भी विद्यमान है। सौम्या मिश्रा देश भर के अनेक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोहों और मंचीय कार्यक्रमों में अपनी मधुर एवं भावपूर्ण गायकी से श्रोताओं का मन मोहती रहती हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा की स्वरबद्ध प्रस्तुति में मनमोहक मैथिली लोकगीत। आज के कार्यक्रम में संगत करता है तबले पर हरिभूषण झा, ऑक्टोपैड पर ललित, ढोलक पर अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर शशिभूषण झा। सौम्या मिश्रा अपने कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर्रे से।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। वी प्रेजेंट मैथिली फोक सॉन्ग बाय सौम्या मिश्रा एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। Soumya Mishra hails from Madhubani, Bihar. She is a gifted folk vocalist, acclaimed for her soulful renditions in Maithili, Hindi and Bhojpuri. Her music reflects a deep connection to the cultural traditions of Mithila, while carrying a freshness that appeals to contemporary audiences. Soumya Mishra has performed at numerous prestigious cultural festivals and stage programs across the country, enchanting listeners with her melodious voice and heartfelt expression. In today's program, the accompanists are Haribhushan Jha on tabla, Lalit Kumar on octopad, Aman Krishan on dholak, and Shashibhushan Jha on keyboard. She begins her rendition with a composition titled Chanan Bhel.

0: अभी आप सुन रहे थे सौम्या मिश्रा से महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे। आइए अब सुनते हैं एक लगनी गीत जिसके बोल हैं एकता हम बारी कुमारी।
1: वी जस्ट हर्ड अ कॉम्पोजिशन टाइटल्ड चानन भेल। कॉन्टिन्यूइंग दिस प्रोग्राम शी नाउ प्रेजेंट्स अ कॉम्पोजिशन टाइटल्ड एकता हम बारी कुमारी।

0: आप सुन रहे हैं सौम्या मिश्रा द्वारा प्रस्तुत मैथिली लोकगीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक चैती जिसके बोल है कुहके बारी कोयलिया हो रामा।
1: That was a Maithili composition performed by Soumya Mishra. We will now listen a composition titled Kuhke Bari Koyaliya Ho Rama.

0: अभी आप सुन रहे थे चैती गीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक पूर्वी जिसके बोल हैं, बाट हेरी दिन काटी नूर बहैया।
1: दैट वॉज अ मैथिली कॉम्पोजिशन परफॉर्म्ड बाय सौम्या मिश्रा। शी कंक्लूड्स हर रेंडिशन विद अ कॉम्पोजिशन टाइटल्ड बाटे हेरी दिन काटी नोर बहैया।

0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में मैथिली लोकगीत की ये प्रस्तुति अब यहीं संपन्न होती है। इस कार्यक्रम में तबले पर संगत की हरिभूषण झा ने, ऑक्टोपैड पर थे ललित कुमार, ढोलक पर थे अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर साथ दिया था शशि भूषण झा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर ओडिशा की प्रस्तुति।
1: विद दैट शी कंक्लूड्स हर रेंडिशन ऑफ मैथिली फोक कॉम्पोजिशंस। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड इन द स्टूडियो ऑफ आकाशवाणी दिल्ली। कॉन्टिन्यूइंग द ब्रॉडकास्ट फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली, नाउ वी विल लिसन टू द प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी जयपुर ओडिशा।

क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। मैं अमीना हुसैन, नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं ओडिशा प्रदेश के

एक कुछ मधुर और मन मोह लेने वाले आधुनिक गीत जिनको प्रस्तुत किया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा। इन गानों को सुरों में सजाकर आप तक पहुंचाया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा के सुप्रसिद्ध टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर श्री विजय कुमार सामंतराय। श्री विजय कुमार सामंतराय माता श्रीमती स्नेहलता सामंतराय और पिता श्री चंद्रशेखर सामंतराय के सुपुत्र हैं। आपने गुरु श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी के तत्वावधान में बचपन से ही बैला यानी कि वायोलिन की शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। सन 1994 में आपने आकाशवाणी जयपुर केंद्र में स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर योगदान दिया। उसके बाद से आपने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सीढ़ियों को पार करते हुए सन 2023 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन की तरफ से टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर का मान्यता हासिल किया। आपने सन 2015 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में बैला वादक के तौर पर संगत भी किया है। आपने आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रम में संगीत देकर 20 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल एनुअल अवार्ड भी प्राप्त किया है। तो लीजिए, आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजय कुमार सामंतराय के बनाए हुए सुरों से सजे कुछ आधुनिक ओडिया गीत। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे हैं तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर हैं राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपैड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर हैं उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय। स्पेशियल इफेक्ट दिया है गुप्तेश्वर पाणिग्राही। तो प्रस्तुत है पहला गाना जिसका बोल है मन हृदय जेते सबू कथा तम आगे प्रिय कही देली। मतलब है अपने दिल की हर बात लो आज कह दिया हमने आपके सामने। ये बोल लिखा है गीतकार रंजन कुमार बेहरा और मधुर आवाज है प्रीति पंडा की।

अभी सुनते हैं जिंदगी की कुछ भूल भुलैया अनजान राहों की बात। ये बोल लिखा है गीतकार बसंत कुमार दास, आवाज है सनातन पुरोहित दास की। पांथ शाड़ार रातिटीए पाई घड़िए पड़ुछी उणा, हेले मधुशाला अजणा कोणरे सरुना ही बिका किणा, जीवन हेउ केते बाट बणा, हेउ केते बाट बणा।

अभी सुनते हैं गीतकार किशोर चंद्र नंद के लिखे हुए गीत आवेगरे के ही कही थी बा कथा मनो तुली ने किया अंके। इस गाने को आवाज दिया है प्रीति पंडा। किसी ने जो दिल से कह दिया कुछ बातें, आज ये मन उन्हें ही क्यों ढूंढे।

कार्यक्रम के अगले गाने को अपने मन मोह लेने वाले आवाज से प्रस्तुत कर रहे हैं सनातन पुरोहित दास। गीतकार हैं गौर पटनायक। बोल है नाटकर मिछ अभिनय छड़ा आउ किछि जाने नाही। मतलब है जीवन के रंगमंच में मैं हूं एक अभिनेता, झूठा अभिनय के सिवाय और कुछ भी तो नहीं आता।

अंत में प्रस्तुत है एक युगल गीत, गीतकार रंजन कुमार बेहरा, आवाज है सनातन पुरोहित दास और प्रीति पंडा की। बोल है, प्रथम देखारे तुम्हें मनकल चोरी, अल्प कथारे आहा लागिगला टोरी, पहली ही मुलाकात में मन चुरा लिया, थोड़े ही बातों में हाय दिल लगा लिया।

अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ ओगिया आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया था आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा में और प्रसारण किया गया आकाशवाणी दिल्ली से। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे थे तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण सतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह और गान पर के संतोष कुमार राव, सेक्सोफोन पर थे राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपेड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय, स्पेशियल इफेक्ट दिया था गुप्तेश्वर पाणिग्राही। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग में सहायता किया था रंजन कुमार बेहरा, यांत्रिक सहायता किए थे शरद कुमार पाढ़ी और एन योगेंद्र। इसी के साथ क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विदा चाहती हूँ मैं अमीना हुसैन, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंध

0: बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चम्फाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on the expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries.